कि जहां पे भी मैं जाता था आई ऑलवेज यूज टू टॉक एंड यस यस काफी लोग मुझे मिले हैं इस बीच, उन्होंने भी मुझे पूछा था, उन्होंने ये पूछा भाई तुमने हमको छोड़ दिया क्या? मैंने कहा नहीं भाई हमको मैंने नहीं छोड़ा है, थोड़ा सा ब्रेक लिया है मैंने बस और कुछ नहीं। बट ऑफ कोर्स अगर वो अभी सुन रहे हैं तो उनको जवाब मिल ही गया होगा, बट यस आई हैवंट लेफ्ट द हब, आई एम स्टिल हियर एंड ये कैसे छोड़ सकता हूँ यार, मतलब मजा आता है, एक तो परिवार हो चुका है, आप परिवार बन चुके हैं मेरा, तो परिवार को थोड़ी सा छोड़ा जाता है। नमस्ते आप गुड मॉर्निंग तो नहीं अभी गुड आफ्टरनून के मैसेजेस मुझे भेज सकते हैं इफ यू वुड लाइक टू। कैसे हैं आप, कैसा गया आपका ये दो हफ्ता, ये हर चीज आप मुझे बता सकते हैं। होम सिक रेमेडीज से शुरुआत करेंगे हम जैसा कि मैं करता था, तो आप मुझे उसके बारे में जो बातें हैं वो मुझे भेजेंगे टेक्स्ट करके, कॉल भी कर सकते हैं 0800 00 4866। वाह यार नंबर भी याद है, देखो इसको बोलते हैं परिवार को नहीं भूला जाता है। सो यस आप थोड़ी देर में कॉल करिए लेकिन एंजॉय करिए बहुत ही प्यारा गाना। बचाओ क्या

0: Welcome back. दिल से वेलकम बैक यार, ये शब्द कहे हुए मुझे कितना टाइम हो चुका है, एंड आई एक्चुअली मीन इट. यस, मैं पता नहीं कभी कभी ना, जैसे अभी इस बीच आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड मी परफॉर्मिंग लाइव, तो वहाँ पे जब शो करता हूँ पता नहीं करते करते रेडियो जैसे मैं करने लग जाता हूँ. फिर याद आता भाई रेडियो में नहीं हूँ अभी मैं अलग स्टेज पे हूँ. सो दैट इज़ क्वाइट गुड यार. बट ये दो हफ्ते काफ़ी अच्छे गए यार, मतलब बहुत ही मज़ा आया. ऑफकोर्स आई डिड मिस रेडियो और आप सभी को, बट ऑन अदर साइड मेरे मॉम डैड यहाँ पे आए हुए हैं, उनको भी ऑलमोस्ट सेम टाइम कोइंसिडेंट था कि मैं ब्रेक ही तब ले रहा था व्हेन यू नो मॉम डैड वॉज कमिंग. सो या आई हैड अ वेरी गुड टाइम. काफ़ी टाइम तो नहीं एक्चुअली, लास्ट ईयर अक्टूबर में था, बट खुशबू काफ़ी टाइम बाद मिली है एंड वो पहली बार अपने पोते से मिले हैं. सो एक अलग ही फीलिंग थी दोनों तरफ से. ऑफकोर्स इहान को अभी इतना ज़्यादा कनेक्शन है नहीं, बिकॉज ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लर्न हु इज़ हु. बट पहले दिन तो पापा को देख के इतना रोया मैंने कहा यार ये बहुत क्यूट मोमेंट. फिर रिकॉर्ड किया, लाइक यू नो, क्योंकि वो अपनी दादी के साथ पास तो आराम से चला गया था, खेलने भी लग गया था, दादा को देख के भी दादा. बढ़िया. ऐसे आपके भी मूवमेंट हुए होंगे कभी, अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ डू सो. कुछ मैसेजेस आए हैं वो पढ़ लेते हैं. रिया पापा टोटो से हमें कहती हैं वेलकम बैक केतन, आई हैव मिस्ड लिसनिंग ड्यूरिंग लंच टाइम. अरे वाह क्या बात है, थैंक यू रिया सो मच. आई हैव ऑल्सो बीन मिसिंग माई मम्स होम मेड डोसा लेटली. ये उनका मैसेज आया. आप कोई हैं यहाँ पे जो रिकमेंड करना चाहेगा कहाँ पे उनको ट्राई करना चाहिए, जहाँ पे आपको पर्सनली फील होता है दैट दिस डोसा, ये जो शॉप है, जो रेस्टोरेंट है, या फिर जो भी यू नो, दे प्रिपेयर अमेजिंग डोसा, एकदम घर जैसा टेस्ट, तो आप मुझे बताइए. मतलब मैं इतना ट्राई नहीं किया डोसा, सो आई ओनली नो वन प्लेस विच इज़ इन सिटी, बट आई एम प्रीटी श्योर वो अकेली जगह नहीं है जहाँ पे ये चीज़ें, उससे हो सकता है बेटर भी हो. विशाल कहते हैं गुड टू हैव यू बैक केतन, आई वॉज इन फिची रिसेंटली एंड नाउ आई एम रियली मिसिंग द फैमिली गैदरिंग्स एंड संडे लंचेस. ये होता है जब आप फ्रेशली आते हो कहीं से, यू लीव बिहाइंड ऑल योर फेवरेट पीपल, तो थोड़ा बहुत तो मिसिंग होती है वही. एक मैं तो ये सजेस्ट करूँगा दैट यू कीप देम ऑन कॉल्स, जितना हो सके आप बात करिए. हो सकता है टाइम का आगे पीछे का होगा, लेकिन थोड़ा बात करिए. फिर धीरे धीरे वंस यू बिकम बिजी ओवर हियर, आपको थोड़ी यहाँ की भी आदत हो जाएगी. इट डज टेक टाइम बट इट विल बी फाइन. मीना कहती है वेलकम बैक, आई हैव बीन क्रेविंग प्रॉपर इंडियन स्ट्रीट फूड लेटली. आई फाइनली मेड पानी पूरी एट होम बट स्टिल इट्स नॉट द सेम. मेरा एक दोस्त है वो बनाता है पानी पूरी. मेरा बैंड मेम्बर ही है, वो बढ़िया बनाता है. अगर आपको चाहिए तो आई कैन पास यू हिज नंबर और आप उससे पूछ सकते हो कि कैसे बना सकते हैं. मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, और एक्चुअली मुझे ना मतलब बताना नहीं चाहिए बट उसको आता ही वही है. होपफुली वो सुन नहीं रहा मुझे अभी. बट यस, बहुत ही बढ़िया पानी पूरी बताओ, काफ़ी मीठी होती है, लाइक आई लव इट पर्सनली. आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं अर्जुन भाई का, कहते हैं गुड टू हियर यू अगेन केतन, आई हैव बीन मिसिंग माई कजिन इन इंडिया, वी यूज टू प्ले क्रिकेट टुगेदर एवरी वीकेंड. वेल अभी समर आने वाला है बहुत ही जल्द, अभी नहीं एकदम से नहीं, बट वहाँ पे फिर से क्रिकेट सीजन शुरू हो जाएगा, तो आप उसमें यू नो जस्ट फाइंड आउट कि कैसे किसी भी टीम का पार्ट हो सकते हैं और वहाँ से आप क्रिकेट खेल सकते हैं.
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का. हम
3: वी गॉट टू गो, आर यू रेडी, कम एंड टेक अ ट्रिप विद मी.
4: Attention please, we are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 pending money. Vacation.
5: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
6: Let's go.
5: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
6: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
7: It's McHappy season. Get your McHappy cookies from Macca's. Just $3.50. All proceeds go towards keeping families together at Ronald McDonald House Charities. T's and C's apply.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
9: अच्छा
8: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
9: मिसेस सिंह
10: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
11: Mike here from Novus Glass. When this happens,
12: Novus.
11: Just contact your local Novus branch direct. We make it easy with the latest equipment, tested products and trained technicians. We'll even handle your insurance claim. Novus Glass also make it easy on the environment. We're proud to be pioneering windscreen recycling in New Zealand. Plus for every repair or replacement, we make a donation towards planting native trees. Notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
13: Show us your crack.
14: Ah, Novus!
15: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi, $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
1: Non-stop Bollywood.
16: Jo bhi karte shiddat ke saath karte
1: hain. Hum playing Bollywood's biggest hits.
5: Lunchbox with Ketan.
17: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse bade ladka nahi milega tujhe.
5: Hum. Office shout out.
0: Welcome back. Office shout out ke segment mein aapka swagat hai. So ऑल यू नो दैट ये सेगमेंट में हम क्या करते हैं बेसिकली आपको मौका देते हैं कि आप हमें कॉल करिए मैसेजेस भी भेज सकते हैं जहाँ पे आप हमें बता सकते हैं दैट अभी आप एग्जैक्टली क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हो ये सारी चीज़ें बहुत सारी बातें करेंगे यस वैसे एक मैसेज आया है एक्चुअली उनको शायद पता होगा दैट दिस इज़ वॉट तो उन्होंने पहले ही भेज दिया था मुझे ऑफिस टुडे बॉट चिकन कत्सू एंड राइस फॉर लंच माई फेवरेट कुजीन इज जैपनीज ओह आई लव जैपनीज फूड बट यस आप बने रही और भी मैसेज भेजिए मुझे बट एक प्रॉपर मैसेज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है जब जिंदगी मुश्किल आपको लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ एडिक्शन गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विस को है उसे प्रोवाइड कर रहे हैं और इनकी जो एक्सपीरियंस टीम है आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके अब शुरू हो रही है रीच इन रीच आउट एक नेशनल कैंपेन इसका मकसद है कि मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है जो इस एडिक्शन में यू नो मेंटल हेल्थ या फिर एडिक्शन गैम्बलिंग या इन सारी चीज़ों में यू नो जूझ रहा है तो डेफिनेटली आप इन्हें कॉल कर सकते हैं एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए आप उन्हें कॉल करिए या फिर asianfamilyservices.nz पर आप विजिट भी कर सकते हैं जी हाँ एक और मैसेज आया है रिगार्डिंग ऑफिस शाउट आउट वर्किंग फ्रॉम होम टुडे मॉम मेड वेजिटेबल बिरयानी दिस मॉर्निंग माय फेवरेट कुजीन इज हैदराबादी बिरयानी, ओ हो हो हो हो, माय फेवरेट टू. मैंने कभी खाई नहीं है यार, लेकिन सुना मैंने काफ़ी है. यहाँ पे है लाइक जो एक्चुअल टेस्ट दे सकता है हैदराबादी बिरयानी, या फिर एनीवन वुड लाइक टू यू नो इनवाइट, आई वुड लव टू ट्राई यार, आई वुड लव टू ट्राई. बहुत ही प्यारा लगता है. लाइक यू नो आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट, मुझे बिरयानी डेफिनेटली बहुत पसंद है. यहाँ पे ऑकलैंड में कुछ कुछ जगह हैं जहाँ से मैं खाता हूँ हमेशा, बट स्टिल सम ऑफ देम दे से कि यहाँ की बिरयानी अगर खाओगे, बेसिकली हैदराबादी बिरयानी, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कोई और की बिरयानी पसंद आएगी. तो ऑनेस्टली मैं ट्राई करना चाहूँगा. कोई है यहाँ पे जो मुझे रिकमेंड करेगा कि यहाँ पे जाओ, गोना बी सो गुड, आप मुझे मैसेज भेजिए 0800 00, सॉरी वो तो नंबर हो गया, 5599 पे आप मुझे टेक्स्ट भेजिए और बताइए कि हैदराबादी बिरयानी मुझे कहाँ पे ट्राई करनी चाहिए आपके नाम के साथ.
1: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Streaming on Rover.
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
2: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927 88 600.
3: Hi, Kevin Eater here, Trade Staff. Everyone knows that trade staff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. Trade staff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz.
4: Trade staff. Industrial employment solutions.
5: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट. नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा क्यूज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ. हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
6: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
7: Sorry about that.
6: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
0: Lunchbox with Kathan.
8: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
9: हम चटनी शॉट्स.
0: दिल से दिल तक. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना। Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: वेलकम बैक। चलिए हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। बहुत कुछ बात करनी है एक्चुअली आपके लिए, काफ़ी कुछ ऑफर्स हैं हमारे पास। बहुत ही अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स आ रहे हैं यहाँ पे। अभी अभी आपने इंडिपेंडेंस डे मनाया है इंडिया और पाकिस्तान का, और उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया तरीके से सेलिब्रेशन हुई है हमारे शहर में। और अभी रक्षाबंधन भी आने वाली है, फिर उसके बाद गरबा शुरू हो जाएगा, दशहरा, दिवाली एंड

Many more things, Janmashtami and so many celebration gonna come up on the way. So, बहुत सादा आपके लिए तरह तरह की चीजें हम लिखे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमें सुनना ही है non-stop. आप सुनते रहिए, because कहीं भी कभी भी हम आपको किसी भी वक्त कुछ ऑफर दे सकते हैं और आपको उस ऑफर्स को अवेल करना है, पार्ट लेना है. और यू नेवर नो यार, क्या पता ऑफर लेते ही आज आपका दिन हो और आप वो जीत जाए. राइट, कुछ सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, उनके बारे में बात होगी. पर यस, हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड में बात कर लेते हैं. 24 अगस्त आज के दिन 1878 की जब बात 1878 की बात है, जब वेलिंगटन में स्टीम ट्रैम सर्विस ऑफिशियली जो है वो ओपन हुई थी. ये सदर्न हेमिस्फीयर की फर्स्ट ट्रेन सर्विस में से एक थी. सर्विस 21 अगस्त से चल रही थी और लैम्पटन खुए से कूबा विवियन स्ट्रीट होते हुए किंग स्ट्रीट तक जाती थी. लेकिन स्टीम ट्रेम्स नॉइजी, डर्टी और हॉर्सेस को डराने वाली थी, इसलिए 1882 में हॉर्स ड्रॉन ट्रैम्स वापस आ गए. बाद में 1904 में इलेक्ट्रिक ट्रैम्स इंट्रोड्यूस हुए जो 1964 तक चली. वाह, दैट्स सो गुड यार, दैट्स सो गुड.

0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. एक यू नो कोशिश है मेरी यहाँ पे, एक आपको डायलॉग दूंगा यहाँ पे मूवी का, एक बहुत ही बढ़िया मूवी, मतलब देखी तो नहीं मैंने बट काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को, तो उसका मैं डायलॉग चलाने वाला हूँ। आपका काम ये रहेगा कि आपको वो मूवी गेस करनी है। गेस बोले तो ऑफकोर्स डायलॉग सुनते ही आपको बताना है कि ये मूवी कौन सी है और किस एक्टर की आवाज़ में आपने ये डायलॉग सुना। तो यस, 5599 इज द नंबर जहां पे आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं। यू गाइस आर रेडी? लेट मी जस्ट पुट दिस ऑन सो दैट यू कैन हियर इट लाउड एंड क्लियर।
1: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहां लेकर आए थे, कहां लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
0: वेल, ये था डायलॉग मूवी का, और एक बार एक फिर से चला लेता हूं जस्ट इन केस, यू नो, अगर आपने मिस आउट नहीं किया तो।
1: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहां लेकर आए थे, कहां लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
0: वेल, बहुत ही मूवी का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन एक्टर जो है मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट वन, नहीं एक्चुअली मेरे को मतलब कोई भी मूवी मैंने मिस नहीं की, ये पता नहीं मैंने कैसे मिस कर दिया, होता नहीं है बट हुआ है। क्या करें। बट यस, आपका काम अभी फोन उठाइए और बताइए ये कौन सी फिल्म का गाना था और ये डायलॉग कौन जनाब बोल रहे हैं, कौन है मेरे फेवरेट एक्टर। आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पे काफी लोग हैं इनके चहेते होंगे। सो यस, 5599 इज द नंबर जहाँ पे आप मुझे भेज सकते हैं।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: मुझे पसंद है लड़का।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर क्या हाल चाल। 17 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाला है, 9 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर आने वाला है। ओवरऑल दिन बहुत ही खूबसूरत है और सनसेट होगा 5:55 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: आपका स्वागत है। लंच बॉक्स लेके आ चुका हूँ मैं हम के रेडियो पे। जी हाँ, बस यस, आप मुझे सुन रहे हैं 104.2 FM के जरिए। अगर आप सिटी से सुन रहे हैं तो 87.7 FM के जरिए भी सुन सकते हैं। वेबसाइट भी हमारी है, बोले तो hum.roa.nz टाइप कीजिए और डायरेक्टली आप मुझे सुन सकते हैं। रोआ ऐप के जरिए तो आप बहुत कुछ सुन सकते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत कुछ इनाम भी जीत सकते हैं। सो यस, रोआ ऐप आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे। बट यस, CSR में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ मौके मैंने दिए हैं थोड़ी देर पहले, उसको भी मैं यहाँ पे बरकरार रखूंगा। और एक मौका मैं ये आपको देने वाला हूँ, दैट फादर्स डे इज कमिंग, तो उसके लिए कुछ खास सारे पापाओं के लिए। बट डजेंट मीन कि आप पापा हो तो पापा ही पार्ट ले सकते, ऐसा नहीं है। यू कैन ऑल्सो टेक पार्ट ऑफ इट, पार्ट इन इट। सो यस, आप बस ट्यून इन रहिए, सुनते रहिए मुझे आज के इस लंच बॉक्स शो में। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस कंपटीशन में और कैसे जीत सकते हैं ढेरों इनाम।
0: बचाओ

0: वेलकम बैक। वैसे थोड़ी देर में आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा कंपटीशन लेके आने वाला हूँ जो फादर्स डे के लिए है। बट यस, उससे पहले आपको ये भी याद दिला दूं कि अभी लंच टाइम रेंट लाइन की बातें होने वाली थोड़ी देर में, तो उसके लिए भी आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं 5599 पे। आपके लिए दो काम है, नहीं दो नहीं, एक्चुअली तीन काम है। पहला काम, थोड़ी देर में आपके लिए फादर्स डे के लिए कॉम्पिटिशन लेके आने वाला हूँ, तो आप बस सुनते रहिए। दूसरा काम, लंच टाइम रेंट लाइन के लिए आप मुझे टेक्स्ट भेजिए, आसपास आपके जो भी इन दो हफ्तों में कुछ हुआ हो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जो सचमुच आपको इरिटेट किया हो या फिर आपको परेशान किया हो आप मुझे भेज सकते हैं टेक्स्ट 5599 पे। और साथ में तीसरा, बस सुनते रहिए हम लंच बॉक्स शो आज का अंडर थ्री, एक्चुअली थ्री नहीं, मैं चार बजे तक हूँ यहाँ पे, कॉफ़ी के टाइम भी कॉफ़ी की चूस कर लेते हुए हम आपसे बात करेंगे। तो बस कनेक्टेड रहिए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो ओनली ऑन हम।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम। अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
3: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
3: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
4: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
5: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है, सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
4: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए, मेरे दोस्त ने भी की थी। अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
4: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI।

0: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
1: When your car starts making a funny noise, bringing it into Midas stops your mind spinning. With thoughts like, should you just ignore it? Pray? Ask your sister's husband's mate's cousin Greg to look at it? Hang around Henderson with a hood up, hoping a friendly bogan will offer advice? Or hope your local mechanic doesn't find extra stuff to fix? Which brings us back to praying. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prizes. Midas, for peace of mind motoring.
0: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. Five-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story. Starts here.
2: Lunchbox with Ketan.
3: Mujhe pasand hai ladka.
2: Hum. Lunchtime Rant Line.
4: लंचटाइम सेगमेंट में आपका स्वागत है. लंचटाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में ये रहा मैसेज जिसे मैंने पिक किया है. बट पिक करने से पहले एक मैंने डायलॉग मैंने यहाँ पे प्ले किया था थोड़ी देर पहले. चलिए वो एक बार सुना देता हूँ आपको एंड देन आपको जवाब भी देता हूँ ये कौन सी फिल्म का है.
5: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे. लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे. मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे.
4: वेल गेस, ये जो गाना नहीं, एक्चुअली डायलॉग जो सुना है आपने, ये फिल्म है वेधा, विक्रम वेधा. काफी लोगों ने सुपर 30 बोला है. जवाब एकदम सही है, ऋतिक रोशन, दैट इज कंप्लीटली ट्रू. एक ने लिखा है देशमुख, रितेश देशमुख. नहीं, वो नहीं है. बट यस, ऋतिक रोशन इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर और उनकी आवाज, उन्होंने डायलॉग ये डिलीवर किया है फॉर द फिल्म विक्रम वेधा. कंग्रेचुलेशन जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उनके लिए, बिकॉज अभी जल्द आपके लिए विनिंग प्राइज जो है वो होगी अनाउंस. यानी कि थोड़ी देर में आपके लिए एक और मौका लाने वाला हूं, लेकिन वहां पे आपको प्रॉपर गिफ्ट मिलने का चांस है. जी हाँ, वहां पे डेफिनेटली आपको मिलेगा. बट ये रही बात जो मैं कह रहा था थोड़ी देर में, एक मैंने मैसेज जो है वो शॉर्टलिस्ट किया है रिगार्डिंग द लंच टाइम रेंट लाइन. राकेश भाई वो कहते हैं, हैंडरसन सेज आज ऑफिस में लंच के बाद उसने सिंक में 6 to 7 डर्टी प्लेट्स और कप्स देखे. सब लोग अपना लंच जो है फिनिश करके क्वाइटली चले गए और बट नोबडी वांटेड टू वॉश देयर डिशेस. राकेश ने पहले इग्नोर किया, फिर सोचा चलो मैं ही कर देता हूं. लेकिन नेक्स्ट डे सेम सीन, सो दिस टाइम ही पुट अ स्मॉल नोट नियर द सिंक सेइंग योर मदर डजंट वर्क हियर. ओ ओ ओ ओ, प्लीज वॉश योर ओन डिशेस. अरे भाई साहब, ये तो आपने एकदम मतलब तहलका मचाया ये शब्द बोल के. बट रूड, बट आई नो आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी हो रही होगी, भाई क्या है, रोज रोज का है ये. आई वोंट रिकमेंड एनीवन टू राइट दैट काइंड ऑफ नोट. बट मतलब हिम्मत होगी यार, मतलब मैं इनकी साइड भी सोच रहा हूँ. राकेश भाई भी शायद काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे कि भाई क्या है, कभी तो साफ कर लिया करो ये सब. बट यस, सरप्राइजिंगली आफ्टर दैट राकेश भाई कह रहे हैं कि इट हैज़ स्टार्टेड बिकमिंग क्लीन. वाओ, सो व्हाट ही मीन इज मे बी इनका कहने का मतलब, इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर को नहीं किया होगा, बट यू नो जिसको भी फील हुआ होगा वो डेफिनेटली उसे सबसे ज़्यादा फील हुआ होगा जो ये करता होगा गंदा. सो केतन, कभी कभी ऑफिस में पोलाइट रहने से ज़्यादा इफेक्टिव एक सिंपल साइन होता है. सिंपल साइन तो मैं नहीं कहूँगा इसे, बट एट द एंड द थिंग वर्क्स आउट, सो दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ ग्रेट. तो थैंक यू सो मच यार मैसेज के लिए. आप बस कनेक्टेड रहिए, कुछ बहुत सारी बातें लेके आनी है. अभी थोड़ी देर में आपके लिए फादर्स डे का भी अनाउंसमेंट मैं करूँगा.
2: लंच के मंच पे Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits.
2: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, अभी की लेटेस्ट खबर ये पता है क्या है? न्यूजीलैंड लेबर पार्टी ने अपने 2026 इलेक्शंस कैंपेन का एक नया स्लोगन रिवील किया है. लेबर लीडर क्रिस हिपकिंस ने कैंपेन लॉन्च करते हुए कहा है कि अपकमिंग इलेक्शन सिर्फ एक गवर्नमेंट चूज करने का मौका नहीं देगी, बल्कि न्यूजीलैंड को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए उसका भी डिसीजन होगा. लेबर का फोकस वोटर्स को ये मैसेज देने पर है कि कंट्री के फ्यूचर्स के लिए उनके पास एक इम्पॉर्टेंट चॉइस है. इलेक्शन कैंपेन अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है और लेबर अपनी पॉलिसीज और विजन्स के साथ वोटर्स तक पहुँचने की तैयारी में है. वेल यस, अब देखना है, इंटरेस्टिंग होगा कि लेबर का ये कैंपेन मैसेज वोटर्स के बीच कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है और 2026 इलेक्शंस में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है. क्या लगता है आपको?

0: saving money.
1: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
2: 102 गेटवे जीतना है 102 गेटवे अगर जीतना है तो आप दो रिटर्न टिकट्स जीत सकते हैं टू 102 और विद सोलोमन एयरलाइंस जी डेफिनेटली $1,000 से ज्यादा की स्पेंडिंग मनी है उसमें कैसे एंट्री कर सकते हैं हमारा ऑफकोर्स यहाँ पे अलग अलग स्लॉट है वहाँ पे आप कभी भी सुनेंगे बोर्डिंग कॉल जो एस आर का बज चुका है जस्ट टू लेट यू नो जैसे ही आपने अगर सुना होगा कब बजाए वो तो आपके पास 60 सेकंड थे एंड योर टाइम हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड सिंस दैट ऑडियो जो है वो प्ले हुआ है सो यस यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम जल्दी से जाइए आप बोर्ड नाउ टाइप करो और सबमिट करके सबमिट क्लिक करो जी हाँ 5599 पे BC लिखकर आप टेक्स्ट कर सकते हैं वेल यस कॉम्पिटिशन में अगर पार्ट लेना तो BC लिखिए और 5599 पे आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए तो ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो जाएं लेकिन ऑब्वियसली आपको तभी करना था जब करना था तो अब यू नेवर नो कब वो चला है क्या नहीं है विनर्स को मिलेगा एक अल्टीमेट वनुआतू आइलैंड एस्केप जी हाँ जो कि मैंने बताया था कि 1,000 से ज़्यादा की स्पेंडिंग वाला टिकट है ये और दो रिटर्न टिकट मिलेंगे जी हाँ वेल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस टर्म्स एंड कंडीशन टू अप्लाई
3: लंच बॉक्स विद केतन
4: हीरा लड़का है टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे
3: अटेंशन एवरीवन हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर
5: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं

0: लिंक को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love, and Malabar Golden Diamonds, Botany Town Center.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
4: It's the truth. You know it. Your girl group do everything together. There's even a name for it. Dogetherness. Aw, cute. So why don't you do something new? Something that really matters. Something like giving blood or plasma together. This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and one donation could save lots of lives. Get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Oh, and coffee is included. Give blood, give plasma, save lives.
5: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
6: Join the Tribe!
5: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe. Your destination for sport. Download the app now and
6: join the tribe!
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
8: अच्छा
7: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह,
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.in.
11: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल 8.6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
12: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं, तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
13: Lunchbox with Ketan.
14: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
13: इसके पीछे
15: हम
13: लंच के मंच पे
16: आपको बॉलीवुड की खबर आप थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन यस, एक कॉम्पिटिशन आपके लिए।

0: मौका मिलना चाहिए. सो यस, हियर इट इज. सो डैड मुझे कॉल करिए 800-00486 पे और बताइए ROFL की फुल फॉर्म क्या है. 800-00486 पे आप मुझे कॉल करिए, ROFL की फुल फॉर्म क्या है. जल्दी से फोन उठाइए, मुझे कॉल कर दीजिए, बिकॉज आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे. एक ही नाम लूंगा मैं आज. सो यस, इट कुड बी यू और इट कुड बी समवन एल्स. वो तो मेरे ऊपर है, बट यस, जो भी मुझे पहले फोन करेगा मैं कोशिश करूंगा उन्हें ही ड्रॉ में शामिल करने का. सो यस, मुझे फोन करिए 800-00486 पे और जल्दी से बताइए मुझे ROFL, जी हाँ, ROFL की फुल फॉर्म क्या है. यार मेरे को लगा यार डैड अपग्रेड हो चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं. ये समथिंग रिलेटेड टू हंसना, ROFL. इससे ज्यादा तो क्या हिंट दूं यार, अब तो आपको पता होना चाहिए. जल्दी से मुझे कॉल करिए 800-00486 पे. किड्स, आपको पता है इसका जवाब, राइट? तो आप डैड को बताइए और डैड को बोलो, भाई डैड डैड टाइम इज रनिंग, प्लीज कॉल केतन, केतन भैया क्विकली, और वो आपको ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे अगर आपने जब सही जवाब दिया तो. सो 800-00486 पे आप मुझे कॉल करिए और बताइए सही आंसर. अरे टैक्स नहीं भेजना है, टैक्स का मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, टैक्स का मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ. अरे वाह, एक साथ 3, 4, 5, 6 कॉल्स, क्या बात है, किसका उठाऊं मैं? देखते हैं कौन है वो लकी पर्सन जिसका मैं नाम उठाने वाला हूँ. हेलो,
1: हेलो केतन भाई, कैसे हो?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? किससे बात हो रही है?
1: विशाल बोल रहा हूँ.
0: विशाल भाई कैसा जा रहा है दिन आज? विशाल है आपका?
1: सही जा रहा है, बढ़िया जा रहा है.
0: नाइस, बताइए जवाब, बताइए.
1: ROFL का मतलब होता है रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग.
0: अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, दैट इज सो कूल, दैट इज सो कूल. थैंक यू सो मच विशाल भाई, आपका नाम होगा ड्रॉ में दर्ज. थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे.
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू,
0: बाय. चलिए एक काम करता हूँ, एक और फोन उठा ही लेता हूँ. लेट मी पिक अनदर कॉल, लेट्स सी कौन होगा वो. हेलो,
2: हेलो, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, थैंक यू. और कैसा चल रहा है आपका दिन?
0: मेरा दिन तो अभी शुरू हुआ है, एक तरह से शो इतने दो हफ्तों के बाद आए हूँ तो प्रीटी मच वेरी एक्साइटिंग. आपका बताइए, आपका कैसा जा रहा है दिन?
2: बस बहुत अच्छा जा रहा है, हम अभी बिटियांगा से वापस जा रहे हैं, हॉलीडे पे गए थे.
0: कहाँ जा रहे हो?
2: बिटियांगा से वापस ऑफलाइन जा रहे हैं, तो आपका शो सुन रहे थे.
0: अरे वाह क्या बात है, चलो अच्छा, नेटवर्क टूटे उससे पहले जल्दी से जवाब दे दीजिए.
2: उसका फुल फॉर्म है रोलिंग ऑन फ्लोर लाफिंग.
0: हाँ वैसे लाउड भी बोलते तो भी चल जाता, बट कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच, आपका नाम भी आज मैं बड़ा खुश हूँ, दो नाम जाएंगे आज. थैंक यू. आपने क्या नाम बताया अपना?
2: मेरा नाम विदुर.
0: विदुर, हैव अ लवली डे विदुर एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.
3: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: 800 रचना इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ। वो तो मैं गाना चलाया था, गाना इतना प्यारा है, मैं खुद गुनगुनाता हूँ इसको। इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ। वेल, आप भी चाहते हैं मेरा लाइव शो सुनना, देखना, मुझे मैं जब एंटरटेन करता हूँ तो आप आना चाहते हैं तो आप बस मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ कहाँ मेरी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है। पर यस, एक चीज़ जो मैं नहीं भूला हूँ वो यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो जिन डैड्स ने मुझे कॉल किया है, जो कर रहे थे लग नहीं पाई किस्मत, या फिर जो घबराहट से नहीं कर पाए, डोंट वरी, उनके बच्चों को मैं कहूँगा कि अगर आप भी इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहते हैं, फादर्स डे स्पेशल बनाना चाहते हैं इस बार का, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारे फेसबुक पे। सबसे पहले तो आप AI जनरेटेड डैड को सुपर हीरो बना दो, कोई भी फोटो लो मस्त वाला। वैसे आई नो योर डैड्स आर ऑलरेडी सुपर हीरो, बट एक फोटो लेके उनको और स्पेशल, यू नो, जैसे भी आपकी ड्रेसेस चाहिए पापा को पहनाना है वो करवा दो, रेडी करवा लो, और फिर उसको हमारे पेज पे, हमारे फेसबुक पेज पे जाइए हम 104.2 FM के जरिए, और वहां पे कमेंट सेक्शन में जाके आप वो फोटो डाल दीजिए। साथ में ऑफकोर्स अपने डैड को भी टैग करना भूलना मत उस पोस्ट में। एंड यस, उसी के साथ आप कॉम्पिटिशन में भी जुड़ जाओगे जिसका ड्रॉ होगा 4th of September को। टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई, बट यस, $300 कैश जीतने का मौका है यहां पे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फादर्स डे के लिए हम $800 दे रहे हैं। $500 का तो ऑलरेडी आपके फादर्स ने कॉल किया है, एंड यस, दिस इज योर चांस नाउ।

0: नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। कुछ चीजें रह गई थी लास्ट आवर में, बतानी चाहिए थी लेकिन नहीं बता पाया, बिकॉज ऑफ कोर्स इतने सारे ऑफर्स हैं हमारे पास जो आपको हम बताते रहते हैं उस वजह से। लेकिन यस, वो बातें यहाँ पे शेयर होने वाली है। आपको क्या करना है, आपको बस बने रहिए, सुनते रहिए, बिकॉज इस आवर में आपके लिए बॉलीवुड स्पोर्ट्स लेटेस्ट खबर और एक और कॉम्पिटिशन। एनी गेसेस, कौन सा कॉम्पिटिशन नहीं, कौन सा फेस्टिवल और आ रहा है इस महीने? एनी गेसेस That is भाई और बहनों का त्योहार रक्षाबंधन। उसे हम सेलिब्रेट करेंगे by starting with one beautiful competition। वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे, बस बने रहिए, सुनते रहिए। आपने देखो पापा को तो खुश कर दिया है, अभी बात है एक दूसरे को, यानी कि भाई बहन, यानी कि आपके सिबलिंग्स जो है उनको खुश करने की, तो बस उसके लिए सुनते रहिए। और डैड को, मॉम को कहिए भाई कुछ भी हो जाए चेंज ना करिए, ये ट्यून इन रही है इसी शो में, बिकॉज यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे आप जीत सकते हैं एक बहुत ही सुनहरा मौका प्राइज जीतने का और रक्षाबंधन।
1: बचाओ क्या,

0: वला के अल्बर्ट टाउन में सैटरडे इवनिंग एक लार्ज वेजिटेशन फायर ने काफ़ी पैनिक क्रिएट कर दिए थी। फायर लगून एवेन्यू के पास रेजिडेंशियल एरिया के पीछे हुई और करीब 1 किलोमीटर तक ट्रीज और स्क्रब में स्प्रेड हो गई। फ्लेम्स इतनी बड़ी थी कि नियर बाय 22 हाउसहोल्ड्स को इवैक्यूएट भी करना पड़ा। पुलिस ने रेसिडेंट्स को सेफली इवैक्यूएट भी करवाया और ट्रैफिक कंट्रोल्स भी किए। फायर फाइटर्स ने ब्लेज को कंट्रोल कर दिया और रेसिडेंट्स रात 10 बजे के बाद घर वापस लौट सके। अब फायर और इमरजेंसी न्यूजीलैंड इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि फायर एग्जैक्टली कैसे और कहां से स्टार्ट हुई थी। अथॉरिटीज ने कहा है कि अभी ये कहना जल्दी होगा कि फायर सस्पिशियस थी या नहीं। वैसे यस, अगर किसी के आसपास 7:15 से लेके 7:45 के बीच की फोटोज या वीडियोज हो उस दिन की, तो इन्वेस्टिगेटर्स उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करके अपनी अपील कर सकते हैं जस्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड इट विल ऑब्वियसली गोना हेल्प देम टू फाइंड आउट इवन क्विकर।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेंगे ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
4: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
5: Let's go.
4: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
6: For a limited time, ventilate 3 or more rooms in your home and you'll get one vent for free. That's right, one vent for free when you purchase a DVS home ventilation system. T's and C's apply.
7: Spot might save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn, Party Curtains and Blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full-price products. Excludes clearance. See website for details.
8: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से Asian Family Services New Zealand में Asian communities को उनकी भाषा में mental health, addiction, gambling और social support provide करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है Reach In, Reach Out, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
4: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
10: अच्छा
9: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
12: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the winter sparkle celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन। प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए। हरी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर ऑकलैंड।

0: पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई है।
1: इसके पीछे हम स्किप या रीप्ले।
2: वेल गेस, बॉलीवुड से खबर लेके आया हूँ। सिंगर शान ने अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से स्टेप बैक करने का जो डिसीजन है उस पर बात की है और ये कहा है कि इंटरेस्टिंग पर्सनल स्टोरी भी शेयर की है। शान ने बताया कि एक टाइम पर उन्होंने भी प्लेबैक सिंगिंग जो है उसे छोड़ दी थी जब अराउंड 33 से 34 साल के थे। तब वो ऑलमोस्ट हर टाइप की फिल्म के लिए गाना गा रहे थे और ए ग्रेड से लेकर बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्म तक भी वो कर चुके थे रिकॉर्ड। उनकी कंटेम्परेनियस सोनू निगम और लेट के उन्हें एडवाइस देते थे कि हर तरह के गाने मत गाओ और अपना स्टैंडर्ड जो है उसे मेंटेन करो। लेकिन शान का कहना था कि अगर कोई प्यार से गाना गाने के लिए बुलाता है तो वो मना नहीं कर पाते। अरिजीत के बारे में शान ने कहा है कि उन्होंने काफ़ी सेलेक्टिव वर्क किया और पीक पर पहुंचने के बाद टॉप सॉन्ग्स पर फोकस की है। शान को लगता है कि अरिजीत का प्लेबैक से ब्रेक शायद परमानेंट भी ना हो क्योंकि उनके कुछ रिकॉर्डेड सॉन्ग्स अभी रिलीज होने बाकी हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको, अरिजीत सिंह फिर से आएंगे या गुड बाय कह चुके हैं वो? व्हाट डू यू थिंक? अभी जैसे एक नया गाना आया आवर अपन का, इतना प्यारा है न।

वेलकम बैक। वेल गेस मैच हुए हैं, मैच चल रहा है अभी इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच और काफी धमाकेदार मैच चल रहा है। पहला दिन हो चुका है, पहला जो मैच है वो तो जीत चुकी है, ये दूसरा मैच चल रहा है जिसमें पहला दिन इंडिया के फेवर में कहूँगा मैं, 300 रन बनाए हैं 5 विकेट खोकर 85 ओवर में और सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इंडिया की तरफ से देवदत्त पडिक्कल ने, जिन्होंने शतक मारा है, 117 रन बनाए हैं, 193 बॉलें जो है उन्होंने फेस की है। एक्चुअली इंडिया वॉज लुकिंग फॉर समवन जो सचमुच पेशेंस रख के रन बनाए, ना कि T20 IPL की तरह धाम धीम करके यू नो टू गिव द परफॉर्मेंस। बट यस, अभी हाल फिलहाल बहुत ही बड़े चल रहा है, शुभमन गिल जो कप्तान है उन्होंने 50 बनाए हैं और अभी हाल फिलहाल ध्रुव जुरेल जो कि 7 रन पे खेल रहे हैं और शारांश जैन जो कि 4 रन पे खेल रहे हैं। श्रीलंका की तरफ से भी श्रीलंका ने अभी तक ऑब्वियसली खेली नहीं है, अभी तो फर्स्ट इनिंग ही चल रही है, तो जब वो खेलेगी तब आपसे बात होगी। बट यस, क्या लगता है आपको, क्या स्कोर बनाएगा टोटल इंडिया आज के दिन? बट यस, उसके साथ आप कुछ दिनों बाद इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में भी मैचेस है, उसे देख सकते हैं, वो शुरू होने वाला है, थर्ड टेस्ट होने वाला है ये, सो यस आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट और भी मैचेस हैं यहाँ पे जो आप एंजॉय कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया टर्न फोकस टू साउथ अफ्रीका आफ्टर बांग्लादेश रूट, जी हाँ ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप कुछ और भी फटाफट क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं तो आज के दिन, वैसे आज नहीं एक्चुअली, हाँ आज है चाइना वर्सेस इंडोनेशिया जो कि इंडोनेशिया वुमेन एंड ओमान वुमेन टूर ऑफ चाइना, ये आप देख सकते हैं, आज फाइनल है तो इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। वैसे यस बने रहिए बिकॉज रक्षाबंधन के लिए मैं फ़ोन लाइन शुरू करने वाला हूँ, आपको कॉल करना है, मैं रीज़न बताऊँगा और उसी टाइम आप मुझे कॉल करके अपने आप को फिर से कॉम्पिटिशन का पार्ट बना सकते हैं।

रक्षाबंधन बहुत ही जल्द आपके बीच ये फेस्टिवल आने वाला है, बट कॉम्पिटिशन हमारे यहाँ पे प्री सेलिब्रेशन होता है। जी हाँ, वेल आपको क्या करना है, आपको अब जल्दी से फोन उठाना है 0800-004-866 पे मुझे कॉल करना है। मैं आपसे बेसिकली रिव्यू लेने वाला हूँ आपके सिबलिंग के बारे में। जी हाँ, रक्षाबंधन स्पेशल जो है ये कॉम्पिटिशन चल रहा है जहाँ पे सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू होने वाला है। आपको मुझे कॉल करना है 0800-004-866 पे, बिकॉज ये कॉम्पिटिशन में अगर आपने रिव्यू दे दिया जो मैं सवाल करने वाला हूँ आपसे, तो आप ड्रॉ में शामिल हो जाओगे और एक नहीं दो को मौका मिलेगा टू गेट इन टू ड्रॉ एंड टू विन $250। वाओ, ईच, नॉट शेयरिंग, ईच मतलब $500 का यहाँ पे मेरे पास नहीं, वो तो सिक्के होते हैं, कैश है नहीं मेरे पास, कार्ड है, बट यस आप तो डेफिनेटली लेके जाओगे कैश। यस, विनर जो है वो 28 तारीख को ड्रॉ पे अनाउंस होगा। और उसके अलावा एक और कॉम्पिटिशन, लेकिन जल्दी से मुझे फ़ोन करिए यार 0800-004-866 पे। यहाँ पे बेसिकली मैं सवाल करूँ आपको, सिर्फ रिव्यू देना है। ऑब्वियसली जैसे एक फिल्म होती है, फिल्म देखने जाते हैं, आपके डायरेक्शन कैसा था, आप बोलोगे अच्छा ना अच्छा या फिर रेटिंग दोगे, राइट। उसके बाद बिकॉज ये कॉम्पिटिशन में अगर आपने रिव्यू दे दिया जो मैं सवाल करने वाला हूँ आपसे, तो आप ड्रॉ में शामिल हो जाओगे और एक नहीं दो को मौका मिलेगा टू गेट इन टू ड्रॉ एंड टू विन $250। वाओ, ईच, नॉट शेयरिंग, ईच मतलब $500 का यहाँ पे मेरे पास नहीं, वो तो सिक्के होते हैं, सेम चीज आपको करनी है आपके सिबलिंग के बारे में। सो यस, 0800-004-866 पे आप मुझे कॉल करिए और जल्दी से इस ड्रॉ में शामिल हो जाइए। मीनवाइल एक और जो कंपटीशन है वो हम रन कर रहे हैं, जो रिलेशन है बिटवीन भाई बहन या फिर बहन बहन या फिर भाई भाई, तो वो ऑब्वियसली सिर्फ एक कहते ना कि माँ बाप से दिया वो रिश्ता ही नहीं है, बट एक्चुअली इट इज़ मोर देन दैट, बियॉन्ड। जैसे कि कुछ कैसेट्स हो गए, कुछ आपने जो चीज़ें शेयर की हैं, कुछ चीज़ें चुराई हैं, कुछ छुपा छुपी पहनी है, ये सारी चीज़ें आप

0: ऑब्वियसली याद तो करते होंगे। वेल, उस कॉम्पिटिशन में क्या करना है आपको, हमारे फेसबुक पेज पे जाना है और वहां जाके उस मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट का फोटो लेके वहां पे डाल देना है, अपलोड कर देना है और 2-3 सेंटेंस की एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी शेयर करनी है। टैग करना है अपने सिबलिंग को भी जिसके साथ आप ये करते थे। ऑब्वियसली यू कैन, हो सकता है आपके पास कुछ इश्यू। हाय इश्यू, क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सवाल जो आपसे मैं पूछूंगा और आपको ऑब्वियसली रिव्यू ही देना है उनके बारे में, राइट? गुड टू गो, परफेक्ट। तो बताइए, आपकी जो सिबलिंग है वो बेस्ट है या वर्स्ट, बताइए। सॉरी, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। बेस्ट है, नाइस। ये ऐसा तो नहीं बगल में बैठी है कान में कुछ लगा के बुलवा रही है? नो वॉइस,
1: नहीं नहीं नहीं।
0: Borrowing your stuff without asking, ऐसा कभी हुआ है?
1: हाँ, दो बार ही हुआ है।
0: क्या क्या?
1: हुडी बोरो के लिए।
0: किस चीज के लिए?
1: हुडी बोरो की थी।
0: अरे नाइस नाइस। एंड वापस मिला नहीं मिला?
1: अभी तक तो नहीं मिली।
0: चलो बढ़िया। एंड क्या वो आपको हमेशा ट्रबल करते थे?
1: नहीं।
0: हाँ नहीं, ये कैसा जवाब हुआ?
1: नहीं, ट्रबल नहीं करती थी, वो बचाती थी।
0: ओ, तो मतलब आप उनके लिए हो ये ट्रबल मेकर।
1: हमेशा।
0: नाइस। एंड ऑफ कोर्स आई अज्यूम कि शी वुड बी द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर यू, राइट?
1: आई एम।
0: ओह, यू आर, ओके। तो कोई, बिफोर वी हैंग अप, एनी मैसेज यू वांट टू टेल हर?
1: शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी। एंड I don't know, like we didn't even talk that much anymore.
0: It's okay. सुन तो सकते हैं?
1: Yeah, but वो रेडियो सुनती नहीं है।
0: रिकॉर्डिंग मुझसे रिक्वेस्ट कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, फिर आप आगे उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं।
1: नहीं, अभी तो मैरिज हो गया, अभी क्या मैसेज दूँ?
0: अच्छा, चलो कोई बात नहीं। But thank you so much, bro. Issue, right? थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए। एंड यू हैव अ लवली डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस फॉर योर सिबलिंग्स।
1: थैंक यू, बाय। लंच बॉक्स विद केतन। मुझे पसंद है लड़का। हम ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी। ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
2: ये गलत बोल दिया यार।
1: और पहनता भी नहीं है उसको।
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो।
2: अभी ब्रांड हो गया ना,
1: रुस्बे के बाल लगे उस। The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
5: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28

0: 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: चलिए इट्स टाइम टू हैव अ कॉफी सो यस मैं बाहर जाता हूँ फटाफट से कॉफी लेके आता हूँ और आपसे मुलाकात करता हूँ कॉफी ब्रेक में तब ये एंजॉय करें बिकॉज ऑफ कोर्स आई मिस यू ऑल मैंने दोस्ती मिस की है आप सभी का साथ मिस किया है तो ये गाना आप सभी के लिए आप सभी दोस्त के लिए यारो दोस्ती

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This
4: record,
3: is my fancy
4: say.
3: English. That's a very.
4: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18.
5: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
6: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
7: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा.
8: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI.
9: Zero
10: with an X.
11: You started your business for a reason, remember? Then all of a sudden, invoices and bills and payroll started getting in the way. And that is where Xero comes in. Connect your invoicing, bank feeds, bills and payments in one place. Real-time cash flow without all the added chaos. Xero takes care of the numbers so you can get back to doing what you love. Search X-E-R-O today.
12: Hi, Kevin Eater here, TradeStaff. Everyone knows that TradeStaff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. TradeStaff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz.
13: TradeStaff, industrial employment solutions. TradeStaff.
1: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. Labor has unveiled its campaign slogan for the upcoming election, Better Starts Now. Leader Chris Hipkins says it's a call and a promise to take action.
15: It conveys the message that we're sending to all New Zealanders. Better is possible and better starts as soon as there is a change of government.
14: One person is in custody after an assault in Hastings that's left a victim critically injured. The incident happened in Flaxmere this morning. Police say charges are being considered. Rotorua's mayor is disappointed to learn National won't be campaigning for an accommodation levy for visitors. Tanya Tapsell told RNZ a bed tax was an opportunity to have a user pays model for tourism.
16: We're definitely sad to hear that because there's been so much hard work behind the scenes. But what I think the door has still been left open for is using existing taxes, existing rates.
14: A person has been seriously injured in a Dunedin house fire. A group was reportedly rescued from inside the burning building on Melville Street last night. The cause is now being investigated. And fire investigators are seeking the public's help as they probe Saturday night's vegetation blaze near Wanaka. They say it's too soon to say if it was suspicious. They'd like to see any photos or videos of the fire's early stages, particularly from the lagoon end of the reserve south of Lagoon Ave. To sport, AB's coach Dave Rennie thinks Richie Mo'unga has returned from Japan a better player. The veteran number 10 will play against the Lions in Johannesburg on Wednesday morning. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. Kiwi golfer Stephen Alker has won the Rogers Charity Classic in Calgary on the PGA Tour Champions, winning the first playoff hole. And former Kiwi star Joey Manu has signed with the Papua New Guinea Chiefs.
0: Sports News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Draw Skill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: वेदर के हालचाल 17 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है 9 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है ओवरऑल दिन बहुत ही खूबसूरत है 0% चांस है बारिश के लेकिन आज का सनसेट होगा 5:55 में
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड
10: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है
1: कॉफी ब्रेक विद सैंडी
9: किरण नमस्ते सत श्री अकाल आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के लंच बॉक्स शो में नहीं बल्कि कॉफी ब्रेक में वेल यस मैं जस्ट बाहर जाके कॉफी ब्रेक में कॉफी लेके आया हूं और आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा मैं आप भी इफ यू वांट टू हैव इट थोड़ा ब्रेक ले लीजिए आई नो आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे बाहर थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और एक चाय या फिर कॉफी जो आपको मिले वहां पे जस्ट हैव से और मे बी एनी कोल्ड ड्रिंक ऑल्सो इफ यू वांट टू हैव इट यू कैन डेफिनेटली और मेरे साथ एंजॉय करिए 4 बजे तक का शो जी हाँ उसके बाद रुस्बे एंड सैंडी विल कंटिन्यू इन द ड्राइव शो बट तब तक के लिए बस सुनते रहिए एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना बारी बारी अरमान मलिक की आवाज में

0: मतलब एक लेटेस्ट खबर यह है कि साउथ आइलैंड में मिडवीक से एक सिग्निफिकेंट विंटर स्टॉर्म आने वाला है और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट वेस्ट कोस्ट और सदर्न एल्प्स पर देखने को मिल सकता है। वेडनेसडे से प्रोलॉन्ग्ड हैवी रेन एक्सपेक्टेड है जो वेस्ट कोस्ट के रिवर्स को स्वेल कर सकती है और फ्लडिंग का रिस्क भी बढ़ सकता है। रेन थर्सडे तक कंटिन्यू रहेंगी और उसके बाद थर्सडे से वेदर और कोल्डर हो जाएगी और इनलैंड एरियाज में हैवी स्नोफॉल हो सकती है। मैकेंजी बेसिन और साउथ कैंटबरी में कुछ हाईवेज पर 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा स्नो का फोरकास्ट दिख रहा है जबकि स्टेट हाईवे 73 पर 20 सेंटीमीटर तक स्नो हो सकती है। अथॉरिटीज वार्न कर रहे हैं कि हैवी स्नो की वजह से कुछ रोड्स क्लोज या रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं। मीनवाइल नॉर्थ आइलैंड को स्टॉर्म को वर्स्ट इंपैक्ट नहीं मिलेगा और वीक के फर्स्ट हाफ में वेदर रिलेटिवली सेटल रहेगा। कॉफी ब्रेक विद सैंडी।
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
4: Put a smile on Dad's face with a gift from Bunnings.
5: When Dad's come in here, it's like a kid in a toy shop.
6: Dad loves to shop at Bunnings. You know, there really is something for every dad. A new water blaster, a new drill, a new barbecue.
4: At Bunnings, you'll find gifts built for Dad.
7: A Zito 18-volt drill driver and speaker kit, $99.98. Stanley 16-inch open-mouth tool bag, $41.98. Tradie fitted trunks pack of six, $40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
8: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
9: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more? To bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
10: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
11: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
10: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
12: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।

0: चलिए पता करते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स को आप एंजॉय कर सकते हैं। काफी बढ़िया तरीके से कुछ इवेंट्स जो है वो उनका आगाज हुआ था और वो अब खत्म भी हो चुके हैं, कुछ हैं जो अभी भी चल रहे हैं। ले वोल्टा रोड साइकिलिंग ये चल रही है, आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद सिलेसिया डायमंड लीग ये भी आप एंजॉय कर सकते हैं। US ओपन टेनिस ये शुरू हो चुका है, इसे आप एंजॉय कर सकते हैं, 13 सितंबर तक चलने वाला है न्यूयॉर्क सिटी में। उसके बाद वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप उसे भी आप देख सकते हैं, एम्स्टर्डम में हो रहा है। ICF कनॉय स्प्रिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कल से शुरू होने वाली है, तो ये इससे बहुत अमेजिंग सा है। मैंने स्पोर्ट्स के बारे में तो क्रिकेट के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, फुटबॉल में देखते हैं अगर फुटबॉल में अगर कुछ अमेजिंग सा कुछ इवेंट हो रहा है तो उसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी रखेंगे। बट आई डोंट थिंक, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ, नहीं कुछ है नहीं फुटबॉल में अभी हाल फिलहाल।
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

देखिए लेटेस्ट एक इंटरव्यू रिलीज हुआ है शान का और काफी बातें की उन्होंने। ये भी बताया है कि किस तरह के गाने गाने चाहिए, किस तरह के नहीं गाने चाहिए, ये सलाह दी थी लेट के और सोनू निगम से। बट यस अगेन यू नो इंटरव्यू काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे यस अभी हाल फिलहाल शान ने रिसेंटली अपनी एक्टिंग जर्नी को लेकर भी एक काफी फनी इंसिडेंट शेयर किया है। शान ने बताया कि जब वो 2001 की फिल्म दामन में एक्टिंग कर रहे थे तब उनकी वाइफ राधिका उनकी फियांसे थी और शान को लगा था कि फिल्म की डबिंग के बाद राधिका उनसे और इंप्रेस होगी, सिंगर के बाद अब वो हीरो भी बने। लेकिन राधिका का रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट था। उन्होंने शान से कहा कि लिख कर दो कि तुम दोबारा कभी एक्टिंग नहीं करोगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग शान जो है बहुत ही बैड एक्टर थे, घटिया एक्टर थे, ऐसा उनकी वाइफ ने कहा है। पर शान ने कहा कि राधिका ने वॉर्न भी किया था कि सिंगिंग में लोग उन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं लेकिन अगर एक्टिंग की तो दाल रोटी के वांदे पड़ सकते हैं। ओ दैट इज सो ट्रू यार, दैट इज सो ट्रू। इसके बाद शान ने एक्टिंग ऑलमोस्ट छोड़ दी थी लेकिन अब वो कहते हैं कि शायद एक्टिंग करियर रिवाइव करना चाहिए। व्हाट डू थिंक, क्या लगता है आपको, अगर शान बड़े पर्दे पर दिखते हैं या फिर टीवी सीरियल्स में भी अगर दिखते हैं आपको क्या लगता है, विल ही मेक अ डिफरेंस? क्या पब्लिक उतना ही प्यार देगी उन्हें जितना उन्हें गायकी को लेके दिया है? बट ऑनेस्टली बताओ ना, तो शान इज वन ऑफ देम, जैसे शान हो गए, केके हो गए, जिनके कोई हेटर्स नहीं है। मार्क माई वर्ड, लाइक लिटरली यू नो आई हैव नेवर केम अक्रॉस विथ एनी काइंड ऑफ न्यूज़ जहाँ पे उनका किसी से पंगा हुआ या ऐसा कुछ। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो गर्मा गर्मी होती है, सबकी होती है, बट स्टिल कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो बोलेगा कि आई डोंट लाइक शान की सिंगिंग या के की सिंगिंग या आई डोंट लाइक दैट पर्सन एट ऑल।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं यहाँ कहानियाँ होती है रॉ इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट
4: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है वी आर ऑकलैंड्स वन स्टॉप फ्यूनरल सर्विस प्रोवाइडर वेयर रिस्पॉन्सिबल ऑप्शंस एंड प्राइसेस आर ऑफर्ड एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रेमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस बीरी कॉल 24/7 ऑन 0927886000
5: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
6: At Spotlight, save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn, Party Curtains and Blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full-price products. Excludes clearance. See website for details.
5: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. Five-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
7: Score more Smig with Smig bonus stickers at New World North Island. Get Nature's Fresh Muffin Splits 6-pack, $3.99 each. Or Cadbury and More Chocolate Blocks, $6.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
8: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
9: Join the Tribe!
8: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport.

0: ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Hum, accurate traffic.
2: BuddyMortgages.co.nz.
3: Clear overnight for Auckland with a low of 9 on the northern to Constellation Drive, 25 minutes. It's a bit heavy heading north through Albany. The northwestern slow from Waterview to Rosebank. On the southern to Manukau from town, 33 minutes. Drury, 51. Just heavy heading north from Mount Wellington to Green Lane. Southwestern slow from Whitty to the southern and heading north from Massey Road to Mangere Bridge.
2: Buddy Mortgages, expert mortgage brokers, helping everyday New Zealanders get the best deals.
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
5: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ एडिक्शन गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट
6: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
8: डॉक्टर ने क्या बोला
9: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए
8: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए वरना पता भी नहीं चलता
10: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक हाय आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अश्योर वन माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड
11: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA दैट्स HIRA और विजिट ashure1.co.nz Northernville Advisory Limited Trading as Ashore One is a licensed financial advice provider
0: Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
12: Good evening, I'm Bridget Hastie with the latest at 5. A social media ban for under-16s is a step closer with an online safety bill introduced. It puts greater responsibilities on tech companies to protect children. Education Minister Erica Stanford says, as a mum herself, it's personal.
13: Parents all over New Zealand want to protect their children and make the right decisions for them. That's our job. But too often we feel completely and utterly powerless.
12: Prime Minister Christopher Luxon acknowledges a ban won't keep all kids off.
14: But it will make a big difference for many, and it will shift what we accept as normal, and it will help protect the generations of children who come after. Because our kids don't get a second shot at a childhood, and for me, that makes this worth the fight.
12: Both ACT and New Zealand First remain concerned by the bill and say they'll vote against it. Three helicopters are dealing with a vegetation fire in the Hiranui district. Fens was alerted just before one this afternoon. A spokesperson says the choppers are dampening down two active fronts of the 50-hectare blaze. Heartbreaking news for those who were heading to the Alex Warren concert in Auckland tonight. The singer is unwell and the show has had to be cancelled. Frontier Touring says Alex is devastated and sincerely thanks fans for their understanding. Ticket holders will receive an automatic refund to their original payment method within 14 to 21 days. To sport, the Cape Town forecast is for wind and rain for Sunday morning's second test between the All Blacks and Springboks. Coach Dave Rennie says he isn't going to change much. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. And the Warriors and Panthers look set to battle it out for the NRL Minor Premiership. Two rounds to go. The Warriors finish with home games against the Knights and the Sea Eagles. The Panthers also have home games against the Bulldogs and the Tigers.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
16: वेदर का हाल आज काफी कमाल साउथ वेस्ट लीज का साथ रहेगा 5:55 को होने वाला है सनसेट फील्स लाइक 14 राइट नाउ ओवरनाइट टेम्परेचर गोइंग टू बी एज लो एज 9 डिग्रीज कल की सुबह बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है आफ्टरनून आते आते कल थोड़ा बहुत क्लाउड कवर आप एक्सपीरियंस करेंगे
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusby.
17: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
16: आज 24 अगस्त गुड इवनिंग आपका स्वागत है ड्राइव शो में पावर ड्राइव एट 5 आपके लिए यहाँ पे शुरू हो गया है 5:03 मेरा नाम है रुस्बे और आपके साथ मैं हूँ यहाँ पे 7 तक आज सैंडी नहीं है क्योंकि वो है बीमार और वो अकेली नहीं है बीमार शायद ऐसे लग रहा है क्योंकि न्यूज आया है कि जो फ्लू है ये इतना ज़्यादा फैल चुका है अभी काफ़ी हॉस्पिटल्स में दिक्कत हो रही है काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे जीपी के देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस हैपनिंग एंड स्कूल्स आर गेटिंग अफेक्टेड एज वेल क्योंकि फ्लू के कारण काफ़ी स्कूल्स को अपने जो क्लासेस हैं उनको कंबाइन करना पड़ रहा है बिकॉज सिर्फ स्टूडेंट्स ही बीमार नहीं लेकिन स्टाफ भी काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं एंड हॉस्पिटल्स को फिर से लाइक कोविड स्टाइल वार्ड्स लॉन्च करने पड़ रहे हैं जैसे कोविड के टाइम पे उन्होंने लॉन्च किए थे तो फ्लू जो है ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है एंड आई थिंक इट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम देन वी एक्चुअली थिंक इट इज़ मेरे को एक्चुअली मैं ऐसे ही जानना है पोल करना है अभी एंड ऑन एयर पोल करना है आपके साथ अगर आप साथ दिए तो 0800 004866 आपको क्विक कॉल करना है और सिर्फ बोलना है कि हाँ आपको भी फ्लू हुआ था इस बार या एक्चुअली मैं आप कॉल करके बताइए अगर आपको फ्लू नहीं हुआ ये बार यार बिकॉज मुझे खुद को यहाँ पे आई थिंक इस विंटर में इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द फ्लू जैब मुझे 3 हुआ है अब वो फ्लू हुआ है या क्या हुआ है लेकिन मैं 3 बीमार पड़ा हूँ इस विंटर लाइक दैट मीन्स फ्रॉम जून मे एंड जून अनटिल नाउ 3 आई फॉलन सिक दैट इज़ इन स्पैन ऑफ 3 या ऑलमोस्ट जस्ट लेस देन 3 आपसे मेरे को जानना है कि आप इस विंटर यानी कि जून से लेकर अभी तक क्या आप एक भी बार बीमार पड़े हैं या नहीं 0800 004866 लेट्स सी हाउ मेनी पीपल गिव अस अ कॉल सेइंग दे वो बीमार पड़े हैं और कितने लोग एक्चुअली मैं कॉल करके आई एम इंटरेस्टेड टू नो कितने लोग कॉल करके बोल रहे हैं कि हम अभी तक बीमार नहीं हुए हैं विच इज़ गुड मतलब आई डोंट वांट टू जिंक्स इट सो या नॉट जिंक्सिंग इट वी डोंट वॉन्ट यू टू फॉल सिक बट वी वुड नॉट लाइक टू नो हाई
18: Hi, this is Smriti.
16: Hi, Smriti. कैसे हो आप?
18: मैं ठीक हूँ and definitely मेरी family में सब sick हुए हैं.
16: आप हुए कि नहीं हुए अब तक? Hello, Smriti चली गई यार. स्मृति आपकी फैमिली में सब सिक हुए हैं मैं ऐसे में अज्यूम कर रहा हूँ कि आप भी शायद सिक हुए हो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ओवर यार आई थिंक वी हैव लॉस्ट यू वेल आप भी यहाँ पे कॉल कर सकते हो 0800 004866 इज द नंबर गिव अस अ कॉल एक तो यहाँ पे कॉल आ गया ऑलरेडी कि ये भी सिक हुए हैं आप भी बताइएगा हाय
18: Hi, sorry, the call got disconnected.
16: कोई बात नहीं यार हम लोग का यहाँ पे नेटवर्क का ऐसे भी इशू चलता ही है
18: Unfortunately, it's me too.
16: आप भी सिक हो गए अच्छा कितनी बार
18: I remember two times definitely because मेरी daughter daycare जाती है और she got influenza last week.
16: Oh no.
18: तो पूरा पूरा week horrible गया.
16: ओह गॉड यार, आई नो इट्स टेरिबल. मैं अभी न्यूज़ में भी देख रहा हूँ काफी लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है, अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिल रहे, गोलियां नहीं मिल रही है.
18: डेफिनेटली जस्ट वी वेंट टू काउंटीज संडे और स्टार्ट इट विल स्टार्ट विद शिवरिंग. प्लीज डोंट टेक इट लाइटली. पेमोल देते रहिए एवरी 6 or 4 hours जो आपको जनरली प्रिस्क्राइब होता है, बिकॉज इसमें फीवर इज द वन विच विल ड्रेन आउट योर बॉडी. तो डेफिनेटली बी प्लीज बी केयरफुल और मेक श्योर मास्क डाल लें. कफिंग हो रही है, कोल्ड हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है बिकॉज इट्स इन द एयर.
16: और घर पे रहिए अगर आप बीमार हो तो, बाहर मत घूमिए कि अरे आज बीमार हो सिक लीव पे हो चलो मॉल जाके विंडो शॉपिंग कर लेते हूँ बिकॉज दैट इज माई थेरेपी. नहीं,
18: वेल टू बी ऑनेस्ट यू विल नॉट हैव दैट मच स्ट्रेंथ इन दिस केस. बट यस, डोंट गो आउट एट ऑल बिकॉज मेरी डॉटर को मैंने जस्ट हाफ डे के लिए डे केयर भेजा था, आई गॉट अ कॉल उसका फीवर नीचे नहीं आता. बाय द टाइम यू विल नो उसका फीवर नीचे आ गया एंड शी इज ओके, वो स्पाइक कर जाएगा दोबारा.
16: ओह माय गॉड.
18: यस
16: राइट.
18: So it's not good. और ये मेरे काफी सर्कल्स में भी हुआ है किड्स को, तो ये किड्स से ही स्टार्ट होगा एंड इट विल गो अप टू द एडल्ट्स. सो जस्ट बी सेफ एंड बी होम. यस
16: दैट्स राइट. थैंक यू स्मृति, थैंक्स फॉर योर कॉल. या
18: नो वरीज.
16: थैंक यू. आप भी यहाँ पे कॉल करके मैसेज करके यहाँ पे बता सकते हैं, इट्स सो इजी, यू नो 0800-004-866 इज द नंबर. हाय.
19: हाय दिव्यांग हियर.
16: हाय दिव्यांग,
19: कैसे हो? उसमें
16: बहुत ही बढ़िया भाई, कैसे हो आप?
19: एकदम बढ़िया, मजे में.
16: अच्छा बढ़िया, तो फ्लू नहीं हुआ है आपको? मतलब
19: अभी तो नहीं हुआ है, मुझे लगता है मुझे जब विंटर शुरू हुआ तब हल्का फुल्का जुकाम हुआ था, बट मैंने वो वैक्सीन लिया उसके बाद कुछ नहीं हुआ मुझे.
16: अरे क्या बात है, वैक्सीन काम कर रहा है? मतलब कुछ लोगों पे तो काम कर रहा है.
19: मेरे साथ हुआ है, एवरी टाइम मैंने वैक्सीन लिया है मुझे बड़ा असर दिखाया उसने, पूरा काम किया मेरे साथ.
16: दैट्स गुड, दैट्स गुड यार. मैं वैक्सीन लिया ये बार 3 बार बीमार पड़ा है, मेरा विश्वास ही उड़ गया वैक्सीन पे से.
19: मेरा बॉस भी मुझे वही बोल रहा था. बोल रहा है नो नो दिव्यांग इज अ फर्म बिलीवर, आई एम नॉट, बोल रहा है. तो डिफरेंट ना, डिफरेंट बॉडी डिफरेंट वे से रिएक्ट कर रहा है ना, अलग अलग लोगों के बॉडी.
16: दैट्स राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट यार. थैंक यू दिव्यांग. और आपके घर में भी बच्चे हैं?
19: हाँ दो बच्चे हैं, उन लोग को तो हुआ था, एक आध बार तो हुआ है सबको, बट मैं बच गया हूँ.
16: अरे क्या बात है यार, वेरी नाइस. वी होप आप बचे ही रहे और आपको ना हो.
19: अभी तो ये एंड है ना, आइडियली दिस इज एंड ऑफ विंटर एंड स्प्रिंग का स्टार्ट है.
16: आइडियली यस यू आर राइट, आइडियली यही होना चाहिए, लेकिन आज ये बार का माहौल ऐसा लग रहा नहीं है कि ऐसा कुछ एंड होने वाला है, क्योंकि अब भी ज्यादा बीमार पड़ रहे लोग.
19: आज सुबह तो काफी अच्छा वेदर था यार, 12 degree टेम्परेचर था. मैं सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ काम के लिए.
16: जी
19: 12 degree टेम्परेचर था, इट वाज प्लेजेंट.
16: नहीं नहीं अभी अपने यहाँ पे अभी प्लेजेंट है, लेकिन अभी साउथ आइलैंड में आ रहा है तूफान.
19: अरे ये क्या बोल दिया यार,
16: साउथ आइलैंड में तूफान आ रहा है मिड वीक से. नहीं नहीं अपने यहाँ पे नहीं आ रहा है, साउथ आइलैंड में ही आ रहा है ये बार तो. बट यू नेवर नो यार,
19: ठंड बढ़ेगी,
16: यू नेवर नो, ठंड बढ़ सकती है,
19: वेदर चेंज होगा फिर से.
16: तो बच के रहिए. थैंक्स दिव्यांग, थैंक्स फॉर योर कॉल मैन. थैंक यू
19: सो मच.
16: Bye. You too, man. Bye. आप यहाँ पे मैसेज करके बता सकते हो ड्राइव कीवर्ड के साथ, क्या इस सीजन विंटर सीजन क्या आप बीमार पड़े या नहीं पड़े. एंड बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखो अभी फेड आउट हो रहा है एंड वी आर इन द फाइनल वीक अपेरेंटली एंड होपफुली स्प्रिंग शुड स्टार्ट सून. एंड वैसे काफ़ी लोग श्रावण का महीना भी ये कर रहे हैं ना, फॉलो कर रहे हैं. सो टुडे इज आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट टुडे इज द लास्ट श्रावण का सोमवार ना. मेरे को प्लीज बताइए यार ये कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं. अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बताइए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आज हमारा जो ट्रेंड मेकर्स है, मतलब जो 6 से 7 के बीच का शो होता है, उसमें आई एम गोइंग टू डू सावन स्पेशल. सो ऑल द सॉन्ग्स विद सावन इन इट और अबाउट सावन इन इट आज 6 से 7 के बीच में आपके लिए लेकर आऊँगा. ऐसी कोशिश है कि आपके लिए ऐसा थीम लेकर आओ आज. बट प्लीज़ करेक्ट माई फैक्ट्स यार, श्रावण का महीना आप भी सेलिब्रेट, मतलब वो फॉलो कर रहे हो श्रावण का महीना, एंड वो आज सेकेंड मंडे है, ओह सॉरी माय बैड, आज सेकेंड मंडे ही है, कोई बात नहीं यार, आज सेकेंड मंडे के दिन पे ही सेलिब्रेट कर लेंगे हम लोग आज सावन का महीना, बिकॉज होपफुली बाय नेक्स्ट वीक वी आर इनटू स्प्रिंग एंड देर इज नॉट मेनी लॉट ऑफ रेन, बट लेट्स सी, वी विल कीप यू पोस्टेड. अभी के लिए गाना एंजॉय करते हैं.

0: मोहित चौहान की आवाज और ये बहुत ही ब्यूटीफुल गाना नोटबुक से आप सुन रहे थे ये गाना. इस गाने का नाम है सफर. वेल फादर्स डे इज राउंड द कॉर्नर. फादर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए आज मैं आपको मौका दे रहा हूँ यहाँ पे फादर्स को मौका दे रहा हूँ यहाँ पे टू विन $500 कैश. देखो फादर्स आर मेनली नोन टू डू थिंग्स फॉर देयर फैमिली टू फॉर देयर चिल्ड्रन फॉर देयर पार्टनर्स. लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि फादर्स आप कुछ करिए अपने आप के लिए खुद के लिए आप कुछ करिए. एंड दैट इज़ वाई वी आर आस्किंग यू टू गिव अस अ कॉल. 0800-004-866 ये नंबर है. आप यहाँ पे अभी कॉल कीजिए एंड यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन $500 कैश. $500 कैश जीतने का मौका आपको मिल रहा है फ्राइडे 4th सितंबर को. एक लकी डैड है जो जीतने वाले $500 कैश. बट ये डैड लकी तब होंगे जब वो यहाँ पे कॉल करके पहले पार्टिसिपेट करेंगे. तो अभी मौका है कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करें एंड यू हैव टू प्ले अ कॉम्पिटिशन ओवर हियर विद मी. हाय, आपका स्वागत है.
1: हेलो रुजबे, हाउ आर यू?
0: वेरी गुड, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका?
1: आई एम गुड. सुनील.
0: सुनील, सुनील.
1: या
0: तो आपको पता है कॉम्पिटिशन क्या है?
1: नहीं, बता दो भाई.
0: देखो कॉम्पिटिशन ये है, पहले आप बताइए आपके बच्चे कितने साल के हैं?
1: एक 3 साल के, एक 5 महीने की.
0: एक 3 साल के, एक 5 महीने की. अच्छा, तो अभी तक आपने मतलब बातें करना तो शुरू नहीं किया होगा ना? नहीं, 3 साल मतलब क्या होता है, 3 साल बातें शुरू हो जाती है कि नहीं?
1: नहीं, वो तो भाई वो तो चुप नहीं होती
0: वो बहुत बोलती है.
1: हाँ, वो तो आजकल के बच्चे वो हमारे जैसे थोड़ी है जो धीरे धीरे बोलते
0: हैं. लेकिन काफी सारे उनके टर्म्स तो अलग अलग टर्म्स होंगे ना, मतलब ऐसे समझ में आती है उनकी बात सारी?
1: हाँ, पूरी.
0: क्या बात है. अभी देखो अभी नया नया इसलिए सब समझ में आ रहा है क्योंकि थोड़े और बड़े होंगे फिर नए नए वर्ड्स लेकर आएंगे वो. जैसे कि मैं अभी टेस्ट लूंगा आपका. आपको पता है फैनम टैक्स क्या होता है?
1: कौन सा टैक्स?
0: फैनम टैक्स.
1: फैनम टैक्स.
0: फैनम टैक्स.
1: फैनम टैक्स.
0: हाँ,
1: ये तो नहीं पता मुझे.
0: मेरे को भी नहीं पता था, ये तो मुझे अभी ऑनलाइन पता चला है. ऑरा पॉइंट्स क्या होते, पता है ऑरा पॉइंट्स?
1: ऑरा पॉइंट्स नहीं, ये भी नहीं हमारे ज्ञान के बाहर की बातें होगी भाई.
0: ये सब सीखोगे भाई, आप सब सीखोगे, बस कुछ सालों के टाइम है. रिज तो पता होगा आपको. रिज क्या है? रिज
1: मुझे तो लग रहा है मैं बहुत नालायक हूँ. मुझे आज शर्म आ रही है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा अभी.
0: अरे कोई बात नहीं भाई, ये सारे टर्म्स जो है ना, ये अभी मैं बोल रहा हूँ आपको, अभी सीख के भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे तब तक और कोई नए टर्म्स आ जाएंगे.
1: बट ये चेंज हो रही है जल्दी.
0: हाँ, ये आजकल के जेन जी जेन अल्फा लोग हैं ना, ये लोग ऐसे अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं. जैसे कि ये कुक्ड बोलते हैं. कुक्ड का मतलब पता है आपको क्या है?
1: कुक्ड वो तो फूड को जब वही वाला ना.
0: हाँ, मुझे भी वही लगता था कि खाना बन गया उसको कुक्ड बोलते हैं, कि फूड इज कुक्ड, राइट? बट नहीं, कुक्ड का मतलब है कंप्लीटली डन फॉर, इन बिग ट्रबल और एग्जॉस्टेड. हाँ, तो इफ मम फाइंड्स आउट यू फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द हीट पंप बिफोर लीविंग द हाउस, यू आर कुक्ड. हाँ, ये देखो,
1: इस हिसाब से तो मैं डेली कुक्ड होता हूँ.
0: हाँ, अभी कुक्ड होना बाकी है.
1: अभी ये तुम थोड़ा सा तो तुमने कर दिया है मुझे.
0: हाँ, मैंने कर दिया कुक्ड.
1: मैं ये कुक्ड ही हो रहा हूँ मैं, ये जो मुझे कुछ आ नहीं रहा. तो
0: नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, ज्यादा स्ट्रेस मत लो सुनील. मैं आपका नाम ड्रॉ में शामिल कर देता हूँ, ठीक है? तो $500 होपफुली आपके नाम हो. बट थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग ओवर हियर मैन.
1: थैंक यू
0: मैन, बाय बाय. वेल चलो एक और को मौका देते. हाय, आपका स्वागत है.
2: हेलो रुजी भाई, कैसे हो?
0: बहुत ही बढ़िया, कैसे हो आप?
2: बस.
0: क्या नाम है आपका?
2: नाम गाड़ी है.
0: चलती का नाम गाड़ी है
2: भाई.
0: हाँ,
2: अश्विन है भाई.
0: अरे अश्विन बोल रहा है. अश्विन बोलो भाई, बोलो. आपको पता है अश्विन सारे टर्म्स आते हैं
2: भाई? जो जो टेस्ट बोला मेरा तो समझ से बाहर है भाई.
0: सब समझ से बाहर है ना?
2: गाड़ी के बारे में पूछेंगे तो मैं बता दूंगा.
0: हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो अभी रहने ही देते. मैं आपका काम करता हूँ, आपका नाम मैं सीधा सीधा ड्रॉ में शामिल कर देता हूँ ना, अभी और कितना एम्बेरस करना है।
2: ठीक है
0: सही है ना?
2: सही है।
0: चलो ठीक है, किसी को बताना हुआ था?
2: अरे पूरा रेडियो सुन रहे हैं भाई।
0: अरे सुन रहे, सब सुन रहे का। अरे चलो ठीक है, थैंक्स अश्विन, थैंक्स यार,
2: बाय बाय
0: बाय बाय। ऑलराइट, आई थिंक अभी समाप्त हो गया टाइम, लेकिन आपको एक और बार कॉल करने का यहाँ पे मैं मौका दूंगा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यार, फादर्स आर कॉलिंग ओवर हियर। फादर्स, कल आपको फिर से मौके मिलेंगे यहाँ पे कॉल करके पार्टिसिपेट करने के। बट थोड़ी देर में रक्षाबंधन का कॉम्पिटिशन भी हो रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने का मौका भी आपको मिलेगा। सो दैट यू विन, कितना है, 250 है शायद ना, दो विनर रहने वाले रक्षाबंधन में। जी, $250, दो लकी विनर्स रहने वाले हैं। इसका मौका भी आपको दूंगा मैं पार्टिसिपेट करने का, बस थोड़ी देर में। सुनते रहिए हम।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम। Accurate traffic.
6: BuddyMortgages.co.nz.
7: Clear overnight for Auckland with a low of 9 on the northern. It's heavy heading north through Albany from town to Silverdale, 38 minutes. The northwestern slow westbound through Rosebank. The southern to Manukau from town, 29 minutes to Drury, 45. Just slow heading north from Mount Wellington to Green Lane. Southwestern's heavy from Whitty to the southern and heading north from Massey Road to Mangere Bridge. Town to the airport, 26 minutes.
6: Buddy Mortgages, expert mortgage brokers, helping everyday New Zealanders get the best deals.
8: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds, like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
9: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
10: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
9: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
10: पर डेवलपमेंट के पैसे
9: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
8: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
11: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
12: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए। वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए। Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए।
13: At Bunnings, we've got gifts built for Dad, like the Jack Garden Upwall System, only $85.95. Ryobi 1 Plus 18-volt pruning saw, tool only, just $149. That's Father's Day sorted at Bunnings.
14: Bunnings Warehouse.
13: Lowest prices are just the beginning.

0: कॉकटेल 2 का ये गाना राघव चैतन्य महमूद की आवाज बॉलीवुड मोस्ट वांटेड में आप सुन रहे हैं ऑन हम 104.2 एफएम एंड्रो ऐप के जरिए। रक्षाबंधन स्पेशल आपको मौका दे रहा हूं मैं अभी यहां पे कॉल करके आपके सिबलिंग के परफॉर्मेंस रिव्यू करने का। 0800-004-866 इज द नंबर वेयर यू कैन कॉल एंड पार्टिसिपेट। दो लकी विनर होंगे जो जीतेंगे $250 कैश, और जो विनर है वो बहुत जल्द अनाउंस होने वाले हैं, इसी फ्राइडे को अनाउंस होने वाले हैं। सो यू हैव वेरी लिटिल टाइम टू पार्टिसिपेट एंड एक बहुत ही छोटा सा आपको परफॉर्मेंस रिव्यू करना है आपके सिबलिंग का। अब लास्ट आपने आपके सिबलिंग की तारीफ या बुराई कब की थी यार रेडियो पे, वो भी तो ये मौका आपको मिल रहा है करने का। रिकॉर्ड कीजिए, अपने सिबलिंग को भेजिए जहाँ पे भी वो है और बताइए कैसे आप उनको कितना अभी भी याद करते हैं। एंड आई थिंक सिबलिंग्स की बुराई भी अगर आपने की ना ऑन एयर तो भी उनको बुरा नहीं लगेगा, उनको अच्छा ही लगेगा, वो बोलेंगे यार चलो इसी बहाने मुझे याद तो करते ही है। 0800-004-866 इज़ द नंबर, यू कैन गिव अस अ कॉल। देखो मैं काफ़ी बार ये सोचता हूँ कि यार हम जो ये ऐसा लगता होगा कि यार ये क्या ही है ना, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे ऑन एयर कॉल करके अपने सिबलिंग के बारे में बात करने की, आई थिंक ये बहुत ही एक कोर मेमोरी बन सकती है इन फ्यूचर आपके लिए, जहाँ पे आप जो फैमिली गेट टुगेदर्स में होंगे, किसी की शादी में मिलेंगे, तो आप इस बारे में बात कर सकते हो कि अरे ऑन एयर ने इसने मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला था, इसने ऐसा किया मेरे बारे में, या मैंने इसके बारे में ऐसा बोला था ऑन एयर। तो ये बहुत बढ़िया मेमोरीज आपकी बन सकती है। 0800-004-866 इज़ द नंबर, आप यहाँ पे कॉल कीजिए और आप अभी परफॉर्मेंस रिव्यू कीजिए आपके सिबलिंग का और आपका नाम इसमें ड्रॉ में शामिल कर लीजिए ताकि $250 कैश ये आपके नाम हो सके। एंड एंड देन इफ़ यू आर काइंड इनफ यू कैड प्रॉब्ली शेयर इट विथ योर सिबलिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि आजकल तो आप कहीं पे भी हो, आप कहीं पे भी किसी तक कोई गिफ्ट पहुंचा सकते हो। सो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई हमारे पास अभी दैट यू नो यू कैन लिटरली पैम्पर एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो फटाफट आप यहां पे कॉल करें और एक सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू करें। 0800-004-866 टू लकी विनर्स विल विन $250 कैश। हाई, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाय, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है आज, नेटवर्क का काफ़ी इशू लग रहा है यार मेरे को, मतलब किसी का यहाँ पे फ़ोन लग रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है। एनीवे ट्राई बैक अगेन, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है यहाँ पे, गिव अस अ कॉल बैक। मैं काम करता हूँ, मैं गाना सुनाता हूँ आपको एंड इन द मीनवाइल गिव अस अ कॉल, लेट्स ट्राई अगेन। हाय,
1: हेलो रुजबे
0: जी।
1: हाय सोम बोल रहा हूँ, सॉरी पता नहीं क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा था।
0: कोई बात नहीं सोम, बोलो क्या रिव्यू करना चाह रहे हैं आप।
1: डेफिनेटली मेरा तो यंगर ब्रदर है।
0: क्या नाम है उनका?
1: लाइक एज अ राजेन, बट वो तो इंडिया में है।
0: अच्छा, क्या बात।
1: मैं रिव्यू मैं अपनी दीदी के लिए कर रहा हूँ जो मेरी कजन सिस्टर है। लाइक उसके साथ तो मैंने कल रात को भी बात की, हम लोग अभी तो लाइक व्हाट्सएप पे वीडियो चैट करते हैं कभी कभी वीकेंड में। लाइक आई ओ हर माय लाइफ टू हर, दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई कैन टेल यू।
0: क्या नाम है उनका?
1: उनका नाम है डालिया।
0: डालिया,
1: लाइक डालिया द फ्लावर, उसी के नाम से उनका नाम है डालिया।
0: क्या बात है
1: मुखर्जी। और अभी तो शी कभी तो उनकी भी बेटी की भी शादी हो गई है, तो हम तो जाते रहते हैं। बट द रीजन आई एम कॉलिंग इज दिस इज कमिंग फ्रॉम व्हेन आई वाज अ किड, लाइक मे बी 10 years भी नहीं, 10 से भी थोड़ा छोटा होएगा। तो वो मेरी मासी की बेटी है, लाइक दीदी, क्योंकि मैं उसी को दीदी जानता हूँ आज भी, वैसे ही लाइक शी इज लाइक अ मदर फिगर टू मी इन दैट वे, बिकॉज मेरे मॉम और वो लोग सब एक साथ ही एक टाइम पे रहते थे मामा के घर पे। तो व्हाट हैपेंड, दिस इज टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एक समर वेकेशन के बारे टाइम पे जब हम लोग गाँव गए थे और उनके घर के सामने तालाब था, तो somehow खेलते खेलते मैं तालाब में गिर गया और मुझे स्विमिंग नहीं आती है, जैसे आधे इंडियंस को नहीं आती।
0: ओह गॉड,
1: पता नहीं मैंने कैसे उनका नाम पुकारा और वो अंदर से जैसे लगा कि वो लोग पता नहीं वो कैसे छुप भाग के आई, पानी में कूदी और मुझे खींच के साइड तक लेके आई। तो आज भी हम लोग बातें करते तो बोलते कि मैं तो वैसे ही बहुत बदमाश था बचपन में, तो शी अभी भी कभी भी किसी को बोलते है, वो अगर बोलते हैं कि बदमाशी करना इस सोम के जैसा नहीं करना, क्योंकि वरना मैं हर जगह नहीं हो सकता बचाने के लिए।
0: क्या बात है यार, डालिया ने आपको बचा लिया।
1: हाँ, पानी से निकाल के, वरना मैं तो गया था, मेरा राम नाम सत्या।
0: ओह माय गॉड, वाओ मैन।
1: एंड आई वाज नॉट इवन 10 इयर्स ओल्ड, सो एंड शी इज लाइक एट लीस्ट 10 इयर्स ओल्डर देन मी,
0: राइट?
1: सो या,
0: That's so cool, bro. Thank you so much for sharing this story. Matlab, it's not cool that you were doob rahe the aap, but it's cool that she was there to rescue you out.
1: Yeah, definitely. पता नहीं कहाँ से सुनी मेरी आवाज और आके वो भी बिना सोचे समझे पानी में कूद गई. Lucky she knows swimming.
0: Yeah, yeah. No, that is your instinct, na? कि आपके कोई चाहने मतलब you know your someone you love, someone you care about,
1: yes,
0: isn't problem. You jump, yes, into it without thinking.
1: Definitely owe my life to her.
0: Swimming सीखी कि नहीं सीखी सोम?
1: ये try किया था यार यहाँ पे भी आके, but काम नहीं आया. किसी तरह like कुत्ता swimming कर लेता हूँ.
0: Dogs are great swimmers, huh?
1: I know. Yeah,
0: but I know what you mean. But नहीं यार, good. आप पानी से दूर ही रहिए. पानी,
1: हाँ वो तो, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पानी से दूर नहीं रह सकते ना स्विमिंग में.
0: लाइक
1: तो बीच पे जब जाते हैं वो खुजली होती है पानी में जाने की.
0: या
1: बट ज्यादा नहीं, वो आधा सिर्फ कमर तक ही रहता है पानी. दैट्स इट.
0: या नहीं, थैंक यू सो मच सोम फॉर कॉलिंग यार, एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग.
1: नो वरीज,
0: थैंक्स यार, बाय बाय.

0: Lazarus be?
1: अरे माशाल्लाह इंशाल्लाह क्या बात है, आप तशरीफ ले गए, मुलाकात हो गई आपसे.
0: हम Throwback brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paar denge.
4: छह बज चुके हैं, ट्रेंड मेकर्स में आपका स्वागत है। आज सैंडी नहीं है तो मैं हूं अकेले आपके साथ, और ट्रेंड मेकर्स में आपके लिए हम यहां पे थीम लेकर आते हैं। और आज का जो थीम है वो मैं सोच रहा हूं कि यार, इट इज द लास्ट वीक ऑफ अगस्त, एंड लास्ट वीक ऑफ अगस्त, नेक्स्ट वीक सितंबर, होपफुली देयर विल बी स्प्रिंग दैट विल स्टार्ट ऑफ इन न्यूजीलैंड। तो सोच रहा हूं कि यार आज ऐसा थीम हो जाए जहां पे हम थोड़े सावन वाले गाने सुने। श्रावण का भी महीना चल रहा है, तो श्रावण का सोमवार काफ़ी लोग आज मना रहे हैं, तो आज सावन टाइप के गाने आपको सुना रहा हूँ मैं, बारिश भरे गाने, सावन के गाने। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ, थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे हम आपके साथ अबाउट हाउ डिफरेंट वी हैव हैड वेदर इन डिफरेंट प्लेसेस। तो आप भी मुझे यहाँ पे मैसेज करके बता सकते हो कि आपके यहाँ पे, आप जहाँ से भी हो, अगस्त के महीने में, लास्ट वीक ऑफ अगस्त, कैसा वेदर होता था आपके यहाँ पे। मैं जहाँ पे पला बड़ा हूँ इंडिया में, नासिक में, अगस्त का महीना यूज़ टू बी अ वेरी गॉर्जियस मंथ, एंड एंड ऑफ अगस्त तो और भी ब्यूटीफुल होता था क्योंकि बारिश कम हो गई होती थी ये टाइम तक, एंड वेदर यूज़ टू बी क्वाइट प्लेजेंट। तो मुझे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं पसंद और ज़्यादा गर्मी भी नहीं पसंद हमें, तो ये अगस्त का महीना बहुत ही ब्यूटीफुल महीना होता था। एंड ऑफ अगस्त, सितंबर, बारिश हल्की हल्की हो गई है, कम कम हो गई है, लेकिन मौसम बहुत ही ब्यूटीफुल है। वेल, ऑकलैंड का भी जो हाल है अभी, कहीं ना कहीं ऐसे ही है, दिस गॉर्जियस डेज, ब्यूटीफुल डेज, बट थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है बीच बीच में। वैसे ऑकलैंड में यार दिस इज़ नथिंग लाइक मानसून सीजन एनीवे, तो हमेशा बारिश होती है और हमेशा धूप खिलती है, जो ब्यूटी है यहाँ की। बट ये जो साल है, इस साल मुझे लग रहा है कि बारिश थोड़ी कम हुई है विंटर में, और जो ब्यूटीफुल डेज है हमने ज़्यादा देखे हैं। वेल, ये वीक भी काफ़ी ब्यूटीफुल वीक होने वाला है, एंड मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो इस ब्यूटीफुल वीक को एंजॉय करते हैं। और मेरे को लगता है ना, जब वेदर अच्छा होता है ना, तब बारिश वाले गाने सुनते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बारिश में बारिश वाले गाने ना, ऑलरेडी हम थोड़े लो है, और ऊपर से और ऐसे बारिश वाले गाने थोड़ा और लो हो जाता है। तो लेट्स एंजॉय दिस, एक एक्सपेरिमेंट है आपके साथ कर रहा हूँ। आप फीडबैक ज़रूर देना कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि उस हिसाब से फिर हम इम्प्रूव भी करेंगे, तो आप बताना ज़रूर। लेकिन आज सावन भरे गाने आपको सुनाने वाला हूँ मैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ द सार विथ एक एपिक गाना जो मुझे हमेशा बारिश की याद दिलाता है। जब बारिश होती है ना, तो ये गाना तो मेरे मन में बजता ही है ऑटोमेटिकली। तो आई होप आपके मन में भी ये गाना बजे। एंजॉय करें आप, ढगाला लागली कड़ा।

You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Trendmakers में आज एक सावन वाला थीम लेकर आ रहा हूँ आपके लिए. सावन भरे गाने कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको सुनाऊँ. एंड थैंक यू सो मच, यहाँ पे कुछ मैसेजेस आए हैं, वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं ये सावन वाले स्पेशल शो के लिए. I hope you guys enjoy the show as much as I do. But yeah, मेरे को बताना यहाँ पे मैसेज करके कि ये सावन के ये जो महीना होता था अगस्त का महीना, आप कैसे इसको सेलिब्रेट करते थे. वैसे काफ़ी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दे आर जस्ट राउंड द कॉर्नर. जैसे रक्षाबंधन है वो द वीकेंड, लेकिन उससे पहले हम ओनम सेलिब्रेट करने वाले हैं. वैसे कल या परसों, दो दिन है शायद से, बट आप मुझे करेक्ट कीजिए यहाँ पे इफ़ यू नो बेटर, बिकॉज मैं तो यार इंटरनेट के भरोसे, और मेरे को आजकल ना इंटरनेट पर भरोसा नहीं रहा. कुछ जगहों पे लिखा है कि ओनम जो है ये वेनसडे 26 अगस्त को फॉल हो रहा है, बट जो कल है 25 अगस्त कल है, और कल फर्स्ट फाइनल ये जो फर्स्ट ओनम बोलते हैं उत्तरादम कल सेलिब्रेट होता है. तो अगर आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कल या परसों, तो आपको बहुत बहुत बधाई है ओनम की. एंड इस मौके पे आपके कोई ऐसे गाने हैं जो आपको सुनना पसंद है तो वो भी मुझे बताइए, कोशिश करूँगा आपके लिए वो गाना भी यहाँ पे लेकर आओ. बढ़िया, काफ़ी सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं ये टाइम पे, सीज़न चेंज हो रहा है, तो सीज़न चेंज जब होता है तब बीमारियाँ भी काफ़ी होती है. और आज हमने बात की थोड़ी देर पहले, 5 बजे के आसपास की, बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा अभी फैल रही है, एंड हॉस्पिटल्स भी काफ़ी ज़्यादा टाइट चल रहे हैं. काफ़ी क्रिटिकल टाइम चल रहा है अभी हॉस्पिटल्स में, दे आर लिटरली रनिंग ओवर कैपेसिटी. सो या अपना ख्याल रखिए अपने हेल्थ का, और अगर आप बीमार हैं तो प्लीज़ बाहर मत जाइए, घर पे ही रहिए, और अपने हेल्थ को बहुत सीरियसली लीजिए. टेक ऑल द प्रिकॉशंस दैट यू कैन, एंड या गेट वेल सून. But for now, let's listen to this another song, which is about Sawan. Hariharan ki awaaz mein, aapke liye.

You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. आज सावन थीम आपके लिए यहाँ पे लेकर आ रहे हैं. मैं हूँ रुजबे और आप ड्राइव शो सुन रहे हैं अभी. अगर आप नए नए अभी अभी सुनना शुरू आपने किया है तो सैंडी भी होती है यूजुअली मेरे साथ यहाँ पे, लेकिन अभी वो बीमार है और हमने कहा है कि भाई तू थोड़ा अभी रेस्ट ही कर क्योंकि वो बेटर रहेगा मेरे लिए भी ताकि हम वापस बीमार ना पड़े. लेकिन आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये बताना चाह रहे हैं कि देखो 50% से ऊपर अब टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं एंड दिस इज़ फॉर वन एपिक एडवेंचर जहाँ पे बिना कोई स्ट्रेस का आपको हमारे साथ घूमने चलना है. सैंडी और मैं जा रहे हैं बाली और बैंकॉक अगले साल ईस्टर ब्रेक में. ईस्टर ब्रेक एक ऐसा ब्रेक होता है जहाँ पे ऑकलैंड में यूजुअली वेदर उस टाइम पे इतना बढ़िया नहीं होता, लेकिन हम जा रहे हैं एस्केपिंग द अर्ली विंटर एंड वी आर गोइंग टू बाली. बाली में बढ़िया वेदर रहेगा, कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हम करेंगे वहाँ पे, ढेर सारी मस्ती करेंगे, आपके साथ खेलेंगे, कूदेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या. और अनिल फ्रॉम सन टूर्स, अनिल भाटिया हमको लेकर जा रहे हैं यहाँ पे. अगर आपको भी ज्वाइन इन करना है 7995 का ये पैकेज है जहाँ पे 4 to 5 star होटल अकोमोडेशन आपको मिलेगा प्लस सारे फ्लाइट टिकट्स बुकड है, मतलब सारे फ्लाइट टिकट्स कवर होंगे उसमें, सारा 3 time का खाना कवर होगा, एडवेंचर एक्टिविटीज़ कवर होंगे उसमें, घूमना फिरना सब कुछ कवर होगा. तो आपको बस अगर शॉपिंग करनी है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन शॉपिंग, तो बस आपको उसका पैसा लेके चलना है साथ में. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स विल बी कवर्ड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. आप कंपेयर कीजिए प्राइसेस बाहर भी, अगर आपको लग रहा है कि ये एक्सपेंसिव है आप कंपेयर कीजिए बाहर. बट वी हैव डन आवर रिसर्च एज वेल एंड फॉर ईस्टर थिंग्स गेट रियली एक्सपेंसिव. अगर आप कहीं पे भी जाएं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा बाहर भी. यहाँ पे आपको विदाउट एनी हिडन कॉस्ट, विदाउट एनी हिडन चार्जेस, 1 flat price में ये एक्सपीरियंस मिलने वाला है. अगस्त का महीना ऐसा है कि अगर आप इस महीने बुक करते हो तो आपको 1 free night अकोमोडेशन मिलेगा एनीवेयर इन न्यूजीलैंड इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट फॉर 2 people. और ये जो अकोमोडेशन है ये भी ऑलमोस्ट 4 to 5 star वाला ही अकोमोडेशन रहेगा. तो एनीवेयर इन न्यूजीलैंड आपको मिलेगा ये एंड ब्रेकफास्ट फॉर 2 people. अगर आपको इसके बारे में जानना है और तो आप कॉल कीजिए सन टूर्स को 0800-4786-868 पे, 0800-4786-868 पे आप कॉल करें और आपको और भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी.

0: गुरु
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
3: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
4: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now 4299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
5: When India comes to town, Aotearoa feels different. Join the Cricket Nation pre-sale at nzc.nz and secure your tickets first, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
6: Let's go! 3, 2, 1!
7: Trend Makers.

0: sleepy head sleep easy queen beds from only $7.99 on sale now.
1: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स ट्रेंड मेकर्स में आज सावन स्पेशल आपके लिए लेकर आ रहे थे जहां पे एक ऐसा ऐसे गाने आपको सुना रहे थे जिसमें सावन के बारे में बात हो रही है, बारिश के बारे में बात हो रही है, बिकॉज होपफुली वी आर एस्केपिंग द विंटर सीजन वेरी सून. लेकिन आपको बता दूं, अगर आपको जाना जीतना है टू रिटर्न एयर टिकट्स फॉर वनुआटू विथ सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी, तो हम बोर्डिंग कॉल ये ऐसा कॉम्पिटिशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं जहाँ पे आपको बस सुनते रहना है. एंड जब भी बोर्डिंग कॉल बजे तो आपके पास 60 मिनट्स है रोआ पे जाके बोर्ड नाउ लिखने का और सबमिट करने का. तो आप ये ज़रूर कीजिए. अगर आपको जानना है ये कैसे आप कर सकते हो तो BC लिखकर भेजिए 5599 पे एंड वील सेंड यू द लिंक फॉर द कॉम्पिटिशन पेज. लेकिन हाँ, हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआटू. विजिट flysolomon.com. टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई. इसी के साथ साथ रक्षाबंधन का सोशल मीडिया पे हमारा कंपटीशन चल रहा है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे हमारे फेसबुक पेज को विजिट कीजिए और एक फोटो अपलोड कीजिए ऑफ अ मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट इन द कमेंट सेक्शन और 2-3 सेंटेंस लिखिए उसके बारे में, क्या मेमोरी आपकी अटैच्ड है उसको लेकर. अपने सिबलिंग को टैग कीजिए और ड्रॉ में शामिल हो जाइए टू विन $300 कैश. ये आपके नाम हो सकता है. ड्रॉ यही फ्राइडे होने वाला है, इसी फ्राइडे 28 अगस्त को, और वहाँ पे आपका नाम अनाउंस हो सकता है. तो यू हैव वेरी लिटिल टाइम, फटाफट जाइए और इसमें पार्ट लीजिए. वेल विद दिस इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय. बट जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे पॉडकास्ट आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक पॉडकास्ट लेकर आए हैं. बच्चों के साथ हमने बात की है, युवराज सिंह अ मेम्बर ऑफ एक्सप्लोर, तो इनसे हमने बात की है अबाउट यंग एंटरप्राइज स्कीम. इनके एक साथी भी थे, उनसे भी हमने बात की थी. तो ज़रूर ये जाके चेकआउट कीजिए अबाउट हाउ क्लासरूम से इन्होंने कंपनी फॉर्म की है और द यंग एंटरप्रेन्योर्स एक्सप्लोरिंग ये जो न्यूजीलैंड है इसके अराउंड उन्होंने बात की है. एक आइडिया को कैसे उन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट किया है और क्या क्या उन्होंने इसमें मेहनत की है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पे एंड वी विल सेंड यू द लिंक फॉर द पॉडकास्ट. विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई विल सी यू सून. बाय.

0: हैप्पी आवर ऑन हम।
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
0: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
0: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइड the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
3: हाँ। अच्छा
2: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
3: मिसेस सिंह,
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
1: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.in।
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279 9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
9: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: आपकी मुश्किल खड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
2: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
3: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
4: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
5: अब हमारा क्या होगा?
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
4: तो क्या करें?
1: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
7: 3, 2, 1, rush! Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
8: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Ryan. Police are seeking witnesses to a fatal altercation in Auckland's Blockhouse Bay. They say the male victim was stabbed on Holbrook Street on Saturday afternoon. A social media ban for under-16s is a step closer with the online safety bill introduced. It puts greater responsibilities on tech companies to protect children. Winston Peters is against it and says he intends to look into how much taxpayers' money has been spent on it. Northland police say a man who attempted to burgle a Mangawhai home is in Whangarei Hospital in a serious condition after a confrontation with the occupants. In sport, Warriors wing Dallin Watene-Zelezniak will have surgery on that collarbone that was broken against the Rabbitohs. NRL legend Andrew Johns is expecting him back for the playoffs. The Warriors and Panthers are the top two teams. They both have two home games to finish the regular season. Rugby league with Machinery House in a league of their own. And it was by the skin of his teeth, but Kiwi golf star Ryan Fox has claimed the 30th and last spot for the PGA Tour's season finale, the Tour Championship in Atlanta, starting later this week.
8: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
8: हम नाइट कैफे ऑन हम. आपका मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
5: A very good evening, everyone. मैं क्रिश आ गया हूँ आपका साथ देने के लिए on हम playing Bollywood's biggest hits एक के बाद एक आपके लिए favorite Bollywood के songs हम लेकर आएंगे, चाहे वो अभी के गाने हो चाहे थोड़े पुराने, वो सारे गाने जो एक एक करके हम लाते हैं हमेशा आपके लिए. ऐसे ही कुछ आज हमारे साथ होगा. नाइट कैफे आज जारी है आपके लिए, शुरू करने जा रहे हैं. इनफैक्ट 24th August आज है और इस हफ्ते भर का नाइट कैफे में मैं क्रिश आपका साथ देने के लिए आ गया हूँ. आज मंडे नाइट है तो फिर शुरू करते हैं आपके लिए नो लॉजिक मंडे.
11: Where sense takes a break.
12: No Logic Monday.
5: वेलकम एवरी वन. नो लॉजिक मंडे में आपका स्वागत है. मैं क्रिश आपके साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. 8 to 9 होता है ऑन मंडे नाइट्स नो लॉजिक मंडे, जहाँ पर काफ़ी ऐसे बातें लेकर आते हैं जो आपको सरप्राइज कर देगा या चकित कर देगा, आश्चर्यचकित कर देगा. सम इंफॉर्मेशन कैन बी क्वाइट हार्ड टू बिलीव. ऐसे ही कुछ हम लेकर आए हैं आज आपके लिए. आज मैं आपको बताऊँगा कि दमेशा बीच बिकम्स वर्ल्ड्स मोस्ट क्राउडेड बीच. एक फेरल कैट कॉल्ड 9 lives पर जानकारी होगी और वुमन एलिजेडली फंड्स ए ड्रामा टू किस द मेल स्टार. और 500 किलोग्राम वेडिंग केक के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा. और वुमन प्लेसेस 2000 फेक मंगा ऑर्डर्स, इस पर जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज. और भी अन्य खबरें हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं. वेलकम टू द शो.

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बंटा है मालूम है ना? मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it. Hey.

0: No Logic Monday.
1: No Logic Monday आपके लिए जा रही है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. 9 PM तक ये चलता रहेगा आपके लिए. 12 तक मैं क्रिश आपके साथ दूंगा. हमारा पहला स्टोरी आज का 14th August 2026 को ये पब्लिश किया गया है, जहाँ पर कहा गया है कि डमेशिया बीच बिकम्स द वर्ल्ड्स मोस्ट क्राउडेड बीच. कोई भी कोस्टल एरिया हो वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, और अगर वो चाइना में हो तो और ज़्यादा, क्योंकि चाइना की आबादी कितनी है ये तो हर किसी को पता है. बहुत ही पॉपुलर चाइनीज़ कोस्टल अट्रैक्शन में से एक माना जाता है डमेशिया बीच. ये सिर्फ 1.8 किलोमीटर लॉन्ग है, लेकिन इट अट्रैक्ट्स अराउंड 200,000 पीपल. एनॉर्मस क्राउड यहां पर जाता है, दैट्स व्हाई इनको वर्ल्ड्स मोस्ट कंजेस्टेड बीचेस कहा जाता है. और ये स्टोरी ये हाईलाइट करती है कि चाइनाज कोस्टल अट्रैक्शंस कितना एक्सट्रीमली पॉपुलर है. कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा एक वुमन, एक महिला के बारे में जिन्होंने फंड किया अ ड्रामा टू किस द मेल स्टार. इस पर जानकारी, ये भी चाइना की स्टोरी है, बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा. कृष के साथ सुनते रहो हम

0: Where nonsense makes perfect sense. No Logic Monday.
1: No Logic Monday आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. रात 9 तक ये चलता रहेगा आपके लिए. जरा सोचिए, आप कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं. चाइना की ये स्टोरी है. 12th अगस्त ऑफ दिस ईयर इसको पब्लिश किया गया है. बहुत ही वेल्थी यानी पैसों वाली जो ये महिला है, इनको अक्यूज किया गया ऑफ फाइनेंसिंग ए शॉर्ट फॉर्म ड्रामा सीरीज. इसका एक बहुत ही अनयूजुअल रीज़न रहा है, क्योंकि रिपोर्टेडली इन्होंने इसको फंड किया ताकि ये एक मेल एक्टर के, यंग मेल एक्टर के अलोंगसाइड अपीयर हो सके, इस ड्रामा में उसका हिस्सा बन सके, जिसमें ये यंग मेल एक्टर को लिया गया था. और शी अलेजेडली अरेंज्ड मोर देन 60 किसिंग सीन्स विद हिम. और ये बहुत ही अनयूजुअल और बिजार स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई. इट अट्रैक्टेड अटेंशन ऑनलाइन बहुत ही क्विकली, बहुत ही रैपिडली, और अभी ये सुर्खियों में आ गई है. ज़रा सोचिए, एक शॉर्ट टर्म या फॉर्म ड्रामा सीरीज को फंड करना ओनली टू एंड हैव एक्चुअली 60 किसिंग सीन्स अरेंज्ड और ओनली टू अपीयर अलोंगसाइड अ यंग मेल स्टार. इन्होंने, इस महिला ने ऐसा कर दिखाया है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ ही देर में 500 किलोग्राम वेडिंग केक पर जानकारी आपके लिए. नो लॉजिक मंडे, सुनते रहो.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम।
1: नो लॉजिक मंडे आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। एक एक करके इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। कैटालोनिया स्पेन की ये स्टोरी है, 10 अगस्त को ये पब्लिश किया गया है। पेस्ट्री शेफ मार्क शुरेज ने एक एनॉर्मस वेडिंग केक को क्रिएट किया है, विच वेज हाफ टन। एक मास्टर पीस ये क्रिएट इन्होंने किया है, जिसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शुगर पेस्ट पेटल्स को रखा गया है, और इट्स स्केल मेड इट फार मोर लाइक एन आर्ट इंस्टॉलेशन, जबकि एक ऑर्डिनरी केक है, लेकिन एक ब्यूटीफुल आर्ट की तरह दिखने लगे, क्योंकि इतना खूबसूरती से इस पर काम किया गया है। शुगर पेस्ट पेटल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, और कहा गया है कि इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर रिसेंट क्रिएशंस जो पब्लिश हुआ है, जो लोगों तक पहुंचाया गया है ऑनलाइन के ज़रिए, और बहुत ही रैपिडली वायरल हुआ ये स्टोरी। कैटालोनिया स्पेन की ये स्टोरी है, जहां पर 500 किलोग्राम वेडिंग केक को क्रिएट किया गया है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। कुछ देर में और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए। नो लॉजिक मंडे सुनते रहो।

0: Night Cafe on Hum.
1: We gotta go. Are you ready?
2: Come and take a trip with me.
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
0: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
4: Let's go.
0: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
4: Sorry, officer. I'm running late for work and I didn't realize I was speeding. I can't have been that much over though. I mean, everyone's going that fast. And I'm the one that gets pulled
5: over the centre lane and crashed into an oncoming vehicle. She was going too fast, lost control. The fire team's attempting to remove the driver. We've heard it all. We've seen it all. Slow down.
6: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
7: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
8: अब हमारा क्या होगा
9: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
7: तो क्या करें
10: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
11: Bollywood.
12: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
11: Hum. Night Cafe on Hum. Where sense takes a break.
13: No Logic Monday.
14: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स नो लॉजिक मंडे में अंतिम ये स्टोरी आपके लिए हम शेयर करने जा रहे हैं नौ तक ये चलता रहेगा एक महिला ये जापान की स्टोरी है 10th अगस्त को पब्लिश किया गया है जहां पर जापानीज वुमन को अरेस्ट किया गया जब इन्होंने नियरली 2100 ऑनलाइन मैंगा ऑर्डर्स को प्लेस किया और जब ये ऑर्डर्स इनके घर पर आए ताजुब की बात ये है कि इन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया बहुत ही बड़ा लार्ज नंबर ऑफ बोगस ऑर्डर्स को रिपोर्ट किया गया और इससे सिग्निफिकेंट ट्रबल भी हुआ है रिटेलर के लिए और फिर बाद में इसको अरेस्ट किया गया है ये केस ये दिखाता है कि ऑनलाइन शॉपिंग कितना अब्यूज़ हो सकता है इन सरप्राइजिंगली एलिब्रेट वेज जो इस न्यूज़ पीस में हमें सुनने को मिला मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ ये आज का हमारा अंतिम स्टोरी था और अगले घंटे पर मिलते हैं विद मो ऑन नाइट कैफे मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आप

0: का मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना. अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilyservices.nz पर विजिट करें. मैं

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए.
4: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
9: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
10: Yeah, but there always seem to be hidden extras.
9: Zelo by Ashcroft Homes. A great range of modular homes packed with premium inclusions right from the start. Think stone bench tops and heat pumps to built-in cabinetry and storage, all included.
10: Really?
9: Yep. And they can deliver in as little as 8 weeks.
10: Zelo. I like the sound of that.
9: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
11: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
12: Oh hey, if you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
13: Enrol, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
14: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
0: Bollywood ka asli blockbuster.
15: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Hum.
0: Night Cafe on Hum.
16: You're listening to number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Imagine kijiye two countries, one epic adventure, zero stress. Sirf 12 spaces rahe gaye. Bali aur Bangkok getaway with Sandy and Rusbe March 2027 mein hone ja raha hai. Bali ka visit karna, Bangkok mein tuk tuk mein safar karna, majestic temples dekhna, bargains inke colorful market se lena, माउथ वाटरिंग स्ट्रीट फूड का भी मज़ा लेना, और वहीं बाली में वाटरफॉल्स, वॉकिंग थ्रू ब्रेथ टेकिंग राइस टेरेसेस, स्विंगिंग अबव लश जंगल्स, ये सभी कुछ हो सकता है. तो ट्रेवल विद सैंडी और रुजबे, ये आपको लेकर जाएंगे ऐसे हॉटस्पॉट्स पर जिसका आपने जिक्र सुना होगा लेकिन कभी आप गए नहीं हैं. इट्स ऑल प्लान्ड, इट्स ऑल इंक्लूसिव. ऑल यू हैव टू डू इज़ पैक योर बैग्स. अर्ली बर्ड बोनस भी यहाँ पर दिया जा रहा है. अगर आप ट्रिप अगस्त के दौरान बुक करते हैं तो वन फ्री नाइट्स अकोमोडेशन कहीं पर भी न्यूजीलैंड में आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट फॉर टू. सीट्स लिमिटेड है, बहुत ही जल्दी सीट्स भर जाएंगे. ड्राइव टेक्स करें 5599 पर फॉर द ऑल एक्सक्लूसिव टूर प्राइस, या सन टूर्स को कॉल करें

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're with Krish on Hum, playing Bollywood's biggest hits, Raksha Bandhan. Ke dauran, aap $300 cash jeet payenge. Hamare Facebook page par jaye. Sibling bonds ko expensive gifts se nahi dekha jata hai ya tola jata hai. In fact, ordinary objects or extraordinary memories hi hamare liye kaafi hota hai. Jaise old cassette tape ho ya ek shared key ho, stolen t-shirt ho shayad. रक्षाबंधन पोस्ट हमने फेसबुक पेज पर डाला है, हम फेसबुक पेज पर. आप हमारे फेसबुक पेज पर जाए, एक फोटो अपलोड करें ऑफ वन मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट इन द कमेंट सेक्शन. दो तीन सेंटेंसेस आप जरूर लिखें अबाउट द मेमोरी जो इससे जुड़ी है, और टैग योर सिबलिंग. ड्रॉ में शामिल होकर $300 जीतने का मौका है. विनिंग स्टोरी को लाइव रेडियो पर पढ़ा जाएगा ऑन एयर ऑन फ्राइडे 28 अगस्त, और $300 कैश गिव अवे अनाउंसमेंट भी विनर को दिया जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
7: Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. National is moving ahead with a social media ban for under 16s, despite opposition from its coalition partners. The party has introduced the Online Safety Bill, targeted at platforms deemed high risk, such as Facebook and Instagram. Labour says its new campaign slogan, Better is Possible, Better Starts Now, is a call to action on jobs, healthcare, housing and the cost of living. The slogan was unveiled in Christchurch this morning. A homicide investigation is underway after a fatal altercation in Auckland's Blockhouse Bay. Police say the male victim suffered a stab wound on Holbrook Street on Saturday afternoon. In sport, while the AB's focus has switched to the second test against the Boks in Cape Town on Sunday morning our time, there is the matter of playing the Lions in Joburg on Wednesday morning our time. Veteran first five Richie Mwanga will start. Rugby with All Blacks travel and hospitality.com. And the last game in the opening round of the English Premier League football tomorrow morning from 7. It's the West London Derby at Craven Cottage. Fulham hosting Chelsea.
1: Sports News.
7: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
9: But you hit the gun, eh?
7: Hum. Night Cafe. Aapka Moment. Krishka Magic. Only on Hum.
10: You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. स्वागत है आपका नाइट कैफे में और रात 12 तक ये आपके लिए चलता रहेगा. कुछ सामाजिक सूचनाएं हमारे पास है. दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव सेलिब्रेट करेंगे फ्रॉम 29th August टू 4th September एट द केव 5x57 Cavendish Drive Manukau ऑपोजिट वेयर हाउस फ्रॉम 7:30 PM. इसके अलावा रामकृष्ण मंदिर 25 Onslow Avenue Manukau सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण दे रहे हैं श्री जन्माष्टमी उत्सव के लिए जो 29th to 4th September रहेगा एट रामकृष्ण मंदिर 25 Onslow Avenue Manukau फ्रॉम 7:30 PM. साथ ही में न्यूजीलैंड संगम NZ संगम इज प्लीज टू इनवाइट कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सारी डिवोटीज को जो 28th August to 4th September रहेगा डेको ऑफ एलिगेंस में 16 लेम्बी ड्राइव मनुकाउ 7:30 PM से ये पूजा शुरू होगा. कथा व्यास रहेंगे नलेश नायडू. साथ ही में श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन द्वारा सादर आमंत्रण है कृष्ण जन्माष्टमी के लिए जो 29th August से शुरू होगा और ख़त्म होगा फ्राइडे 4th September. यहाँ पर भी आप जा सकते हैं. आचार्य रहेंगे श्री कैलाशाचार्य जी और सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. सुनते रहो हम. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वी आर प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स फॉर यू ओनली ऑन हम.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ रक्षाबंधन स्पेशल सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू. आपने जो एक्चुअल वर्क होता है उनका रिव्यू के बारे में सुना होगा, लेकिन अपने सिबलिंग को रिव्यू करना ये भी एक टास्क है आपके लिए जो हम लेकर आए हैं. थिंक योर ब्रदर और सिस्टर डिजर्व्स अ ग्लोइंग रिव्यू और नीड्स अ सीरियस अप्रेजल. आप कॉल करें जब हमारे साथ ही आपको इन्वाइट करते हैं टू गो लाइव ऑन एयर और ऑफिशियल परफॉर्मेंस रिव्यू आप उनको दे पाएंगे. रिव्यू में आप उनको इन चीज़ों पर इंक्लूड कर सकते हैं, बेस्ट और वर्स्ट सिबलिंग एवर, बोरोइंग योर स्टफ़ विदाउट आस्किंग, या हमेशा ट्रबल में होना, या आपका बिगेस्ट सपोर्टर बनना, या आपको अनॉय करना 24/7. आप अपने रिव्यूज़ को शेयर करें और ड्रॉ में शामिल होकर कैश जीतने का मौका है. टू लकी विनर्स को $250 ईच दिया जाएगा. 28 अगस्त को ड्रॉ होगा और दो विनर्स को चुना जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. Unfiltered Drive podcast सुनना ना भूले, क्योंकि बहुत interesting conversation यहाँ पर होगा युवराज सिंह के साथ में. From classroom to company, young entrepreneurs exploring New Zealand. ये topic पर बातें होगी. क्या होता है जब एक group of secondary school students decide करते हैं to turn an idea into a real business? पीवा मैजिक होता है, और यही युवराज सिंह, मेंबर ऑफ एक्सप्लो, ये बताएंगे. एक स्टूडेंट रन बिजनेस है, टेकिंग पार्ट इन न्यूजीलैंड यंग एंटरप्राइज स्कीम, यस इनको कहा जाता है. एक्सप्लो को क्रिएट किया गया था एज एन इनोवेटिव कार्ड गेम, जो इनकरेज करेंगे टूरिस्ट और लोकल्स को कि वे डिस्कवर करें न्यूजीलैंड हिडन जेम और लेसन नोवन डेस्टिनेशन. थ्रू द गेम प्लेयर्स लर्न अबाउट स्टोरीज, कल्चर और अट्रैक्शंस, जो इन जगहों को बहुत यूनिक बनाता है, और जो यूजुअल टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स के से हटकर इन डेस्टिनेशंस को भी प्रमोट किया जा रहा है, ताकि लोगों को इनके बारे में पता चले. फ्रॉम कमिंग अप विद द आइडिया टू अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स, और कैसे ये प्रोडक्ट को बिल्ड किया गया और कैसे ये कॉम्पीट कर रहे हैं, येस ये एपिसोड में आप सुनेंगे कि इनका जर्नी कैसे रहा है ऑफ ए न्यू जनरेशन कीवी बिजनेस माइंड्स, जो ये बात प्रूव करता है कि आपको अडल्ट होने की ज़रूरत नहीं है टू स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग मीनिंगफुल. आप इस उम्र में भी ये कर दिखा सकते हैं. ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर फॉर ए फुल ऑडियो और सर्च. अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़बे ऑन रोवर और स्पॉटिफाई, और ये पॉडकास्ट का एक्सेस आपको मिल जाएगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: और सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज

0: का मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. फादर्स डे प्रमोशन भी हम पर शुरू कर दिया गया है. डैड्स रिवर्स ग्रिल के बारे में आपने सुना होगा. क्या आपको लगता है कि आपको डैड को सब कुछ पता है? लेट अस पुट हिम टू टेस्ट. हमारे साथियों द्वारा आपके डैड से कुछ सवाल, कुछ फन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इनफैक्ट अबाउट मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के बारे में. जैसे फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज किबरी, या फिर वॉट एग्जैक्टली इज एन ई सिम. इस तरह से आप एंटर हो पाएंगे. डैड कॉल कर सकते हैं ऑन 0800-004-866 पर टू आंसर द क्वेश्चंस. अगर वो करेक्टली आंसर करते हैं तो फिर उनका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाएगा. 4th सितंबर को एक लकी डैड को का नाम ड्रॉ से निकाला जाएगा और वो $500 कैश जीत पाएंगे. इमेजिन कीजिए, $500 कैश आपके डैड को मिल सकता है. सो वी वांट टू नो, इज़ योर डैड एक्चुअली अप विद द टाइम्स, या फिर इज़ ही स्टिल ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट, जैसे हम काफ़ी लोग करते हैं. डैड को कहिए कि वो हम सुनते रहे और गेट हिम टू आंसर क्वेश्चंस और वो $500 रिचर हो सकते हैं दिस फादर्स डे. ड्रॉ 4th सितंबर को होगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Night Cafe on Hum.
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइड the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
4: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
3: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
5: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
6: एट स्पीडी साइंस दे लुक एट द बिगर पिक्चर। Yes, they make great signs, but more importantly, they create signage that helps your business grow. Their team works with you from concept through to installation, making the process simple and seamless. Clear strategy, strong design, professional finish every time. If you want signage that does more than just look good, give them a call on 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz today and grow your business fast.

0: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे Tamaki Turuki, All Together Auckland.
1: Your property manager shouldn't disappear after 5 p.m. Nesto offers evening and weekend viewings, proactive management and real support. Visit nesto.co.nz. Nesto Property Management, comfortably nested.

0: Murphy on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Ek aur Father's Day promotion hamare paas, a very interesting one. Dad's AI upgrade. Ye Father's Day, hum aapke dad ko ek super hero ke avatar mein dekhna chahenge. I know ki har ek dad mein ek super hero unke andar chupa hota hai. Aapko creative hona hai. Ek dad ka photo lijiye aur unko badaliye into an AI generated superhero. और हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाकर पोस्ट कीजिए. $300 कैश जीतने का मौका है. तो कैसे आप एंटर कर पाएंगे? एक एआई जनरेटेड सुपर हीरो फोटो ऑफ योर डैड बनाएं और पोस्ट कीजिए इन द कमेंट्स ऑफ द कंपटीशन पोस्ट हमारे फेसबुक पर, हम 104.2 एफएम पर. और अपने डैड को टैग करना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है. एंड गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक योर डैड्स फोटो और कंपटीशन पोस्ट. मतलब फ्रेंड्स और फैमिलीज को लाइक करना पड़ेगा. और याद रहे, जो भी आपके डैड के फोटो को लाइक करता है, दे मस्ट बी फॉलोइंग हम फेसबुक पेज, और उनको कंपटीशन पोस्ट को लाइक करना होगा. सारे एंट्रीज को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा और उन एंट्रीज को ही जो सारे रिक्वायरमेंट्स मीट करेंगे टू विन $300 कैश. 4 सितंबर को ड्रॉ होगा. टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे वेबसाइट पर आपको मिलेगा. तो अपने डैड के लिए एक AI जनरेटेड सुपर हीरो फोटो आप जरूर बनाएं, द मोस्ट क्रिएटिव वे यू कैन. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा आपका साथ। अब हमारी मुलाकात होती है कल रात को, आ जाएंगे आपका साथ देने के लिए, इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए हम लेकर आएंगे। कल ट्यूजडे नाइट है तो कोक स्टूडियो रिलोडेड भी हमारे साथ होगा। गुड नाइट एवरीवन।

Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा एन्ना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
3: हाँ। अच्छा
2: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
3: मिसेस सिंह
4: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना

0: कर दिया था। ये घर कैसे?
1: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
0: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
2: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
3: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok, one epic trip. 5-star all-inclusive stays, breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
6: Night flight

0: We gotta go. Are you ready? Come and take a trip with me.
1: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
5: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
6: Yes, but I want to subdivide too.
5: Zillow? Zillow by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes packed with premium inclusions with full subdivision support if you need.
6: Really?
5: Yep. From planning and consents through to construction, the team can help manage the entire process.
6: Zillow. I like the sound of that.
5: Discover the Zillow difference at zelo.co.nz.
7: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाओ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाओ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
8: SmartPay is now
9: Shift 4 Dakota.nz Global Commerce Local Service
8: Running a business keeps you busy enough. Managing your payments should be the easy part. Shift 4 is here to help with friendly 24/7 local support. Plus, their simple merchant dashboard lets you see your daily sales and more at a glance. So, make the shift today.
9: Shift

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो

0: कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
1: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
0: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
2: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
3: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert. Indelible Homes.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
8: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: डॉक्टर ने क्या बोला?
9: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
8: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
10: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक। हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अशोर वन। माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड।
11: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे, कॉल अशोर वन ऑन 0800-77-HEERA, दैट्स HIRA, और विजिट ashore1.co.nz। नॉर्थ एंड विल एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अशोर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर।

चाक बुरा करते हाथ, पलक फड़के आए कि दिल धड़के, उमर की उठान कड़कती कमान, कातिल अदा जालिम हया।

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
3: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
5: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
6: Sorry about that.
5: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply. Playing Bollywood's biggest

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very acceleration.
2: That's a very acceleration.

0: acceleration. Yeah.
1: Amazing acceleration.
0: This is my fancy English. That's a very.
1: अरे होता है सब चलता है आधी नींद में हूँ मैं.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: Weekdays, 6 to 10 a.m.
4: डिब्बा खुल गया
5: भरत भाई टिफिन खुल गए छे
6: संजना का डिब्बा खुल गया
7: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा फिर यही तो होगा
6: डिब्बा खुल गया
7: हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी

0: ये सफर आपके लिए भी उतना ही बढ़िया हो।
1: बिल्कुल, ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ जबकि कर रहे हैं शुरुआत, खबरों में क्या कुछ है करेंगे क्विक कैचअप और साथ ही साथ आपके लिए और भी अपडेट्स। आज का हमारा पहला सवाल, कुछ ये सवाल जवाब का सिलसिला जो है जारी रखेंगे ताकि इस सफर को और भी मजेदार आपके लिए हम बना सके। तो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, आप सभी का स्पेशल वेलकम है।

0: Sunny Side Up.
1: आज की सनी साइड अप स्टोरी, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गो एंड फाइंड डिटेल्स फर्दर अबाउट दिस स्टोरी की ये कहानी जो है कहीं सिर्फ ऐसी तो नहीं कि लोगों को आकर्षित किया जाए टुवर्ड्स यू नो वायरल स्टोरीज, या फिर इसमें सच में कोई ऐसी बात है विच हैज़ मेड इट टू द सोशल मीडिया. और अपेरेंटली ये जो कहानी है ये एरिक द ईल इनके बारे में है. इनको इस नाम से जाना जाता है पर इनका असल नाम है एरिक मोसंबानी मोलांगा. और ये उन यू नो हिस्टोरिकल ओलंपिक्स एथलीट्स में से एक है जिनका नाम जब भी लेते हैं तो लोगों को एक कहानी याद आती है. मेरे ख्याल से ये 2000 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक्स जो है ये हुआ था. और ये अपना जो इंटरनेशनल फेम इन्होंने पाया था इस समा ओलंपिक्स के दौरान और इनकी अनलाइकली विक्ट्री के लिए लोग आज भी इनको याद रखते हैं. ही इज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल स्टोरीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ओलंपिक्स. अपेरेंटली ये गिनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑन इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्पिटिशन फॉर अ शॉर्ट टाइम. और इन्होंने इससे पहले कभी भी किसी ओलंपिक साइज पूल में ट्रेनिंग नहीं की थी. एट द एज ऑफ September 2000 में इन्होंने जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का सोचा और ये पहुँचे ओलंपिक स्टेज फॉर मेन्स 100 मीटर फ्री स्टाइल, तो कमाल की बात ये है कि इनकी कहानी इनके दोनों कॉम्पिटिटर्स को पता चली. बींग फ्रॉम अ कंट्री जहाँ पर शायद इनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, और फिर भी इन्होंने ट्रेनिंग जो है ये ली, स्विमिंग सीखा. इनको स्विमिंग आती भी नहीं थी बाय द वे. स्विमिंग सीखा और फिर उसके बाद चलकर ये इंटरनेशनल लेवल तक ओलंपिक्स तक क्वालिफाई हुए. और जब इन्होंने ये रियलाइज किया कि इस पर्टिकुलर मैच से पहले ये कभी एक ओलंपिक साइज पूल में भी नहीं गए हैं, तो इनके कॉम्पिटिटर्स ने कुछ ऐसा किया जो एक हिस्टोरिकल मोमेंट जो है ये बन गया. अपेरेंटली ये जो पर्टिकुलर चैलेंज है इट बिकेम क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर्स ने क्या किया, इन्होंने जो सायरन जब बजता है ना स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने के लिए, हाँ डाइव करने के लिए, सो अगर आप बाय अ सेकंड का भी जो डिफरेंस जल्दी डाइव करते हैं, देर में डाइव करते हैं, तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. एंड अपेरेंटली बोथ हिज कॉम्पिटिटर्स डोव बिफोर हिम डेलिबरेटली ताकि इनको अकेले इस स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने का मौका मिले. और जो कॉम्पिटिटर्स थे इनके उनके मिलान में जहाँ पर उनको अच्छी ट्रेनिंग मिली, ओलंपिक साइज पूल्स में उन्होंने ट्रेन किया एंड दे हैड ऑल द फैसिलिटीज़, एंड दिस पर्टिकुलर गाय जिनके पास उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, इन्होंने अकेले पूरे स्विमिंग मतलब ये जो कॉम्पिटिशन है 100 meters का ये अकेले जो है ये इन्होंने किया. कमाल की बात ये है कि ही स्ट्रगल थ्रू द फाइनल स्ट्रेच लेकिन इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग ही केप्ट मूविंग और इवेंचुअली इन्होंने 1.52 seconds पर अपना जो स्विमिंग रेस है ये फिनिश किया. इनका पर्सनल बेस्ट और नेशनल रिकॉर्ड एट दैट टाइम इनकी कंट्री का. मोर देन 17,000 स्पेक्टेटर्स मौजूद थे उस समय पर इनके इस गेम को विटनेस करने के लिए एंड एवरी सिंगल पर्सन एट दैट टाइम स्टूड अप और इनके लिए उन्होंने तालियां बजाई. और नॉट जस्ट इनके लिए लेकिन इनके कॉम्पिटिटर्स के लिए भी, बिकॉज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी होता है. लेकिन वेरी रेयरली यू सी पीपल जहाँ पर वो जब किसी की कहानी सुनते या समझते हैं तो वो उनको अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी राधा देने के लिए ऐसे सेक्रीफाइसेस करते हैं ना.
2: और ये जो उन्होंने डेलिबरेट डाइव एली डाइव किया था, वाज इट ड्यूरिंग द ओलंपिक गेम्स?
1: यस इट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम. अगर आप चाहें आप और एरिक मोसंबानी जो है ये अगर गूगल कर सकते हैं तो आपको इनके बारे में पूरी कहानी जो है ये मिलेगी. इनकी जो अनलाइकली विक्ट्री है इसके बारे में आज भी मेंशन है ऑनलाइन, बिकॉज आफ्टर आई केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर स्टोरी आई वेंट एंड आई गूगल्ड हिम और तब जाकर मुझे पता चला कि सच में ऐसा कुछ हुआ था. एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी जिसके बाद चलकर इन्होंने खुद को और भी बेहतरीन बनाया और फिर बाद में चलकर इन्होंने और भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा जो है ये लिया.
2: Amazing. I think इन्होंने जो अचीव किया तो वो तो किया, बट
1: the competitors are also
2: जो उनके competitors थे, क्योंकि एक सपना होता है किसी भी एथलीट के लिए, हाँ ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेना और गेम्स के एंड पर पोडियम पर खड़े होना टू रिसीव अ मेडल और समथिंग, बट गिविंग अप दैट मेडल, गिविंग अप दैट फेम एंड एवरीथिंग जस्ट बिकॉज you want to show respect to someone जिन्होंने जो शायद पहली बार हिस्सा ले रहे हैं, ये you know मुश्किल है.
1: Exactly,
2: किसी के लिए भी
1: इनफैक्ट अगर आप इनके बारे में इनकी कहानी जो है ये पढ़ोगे तो इन्होंने आफ्टर विनिंग दिस पर्टिकुलर रेस ये भी कहा कि इनके लिए लास्ट 15 मीटर्स वर वेरी डिफ़िकल्ट और ये डिफ़िकल्ट के साथ साथ इनके लिए बहुत बहुत बिकॉज एज आई सेड उनको उतनी ट्रेनिंग नहीं थी ना उतना लंबा स्ट्रेच जो है ये स्विम करने के लिए एंड ही स्ट्रगल्ड टू ब्रीद. लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्योंकि इनके दो कॉम्पिटिटर्स जो थे उन्होंने फॉल्स स्टार्ट जो है ये किया था जिसकी वजह से वो डिसक्वालीफाई हुए एंड दैट इज़ हाउ उन्होंने ये पूरा जो रेस है ये अनअपोज जो है ये जीता एंड ही इड बी फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि उन्होंने उनके लिए ऐसा कुछ किया. सो देयर यू गो, ये दुनिया जो है इतनी भी बुरी नहीं है जितना कभी कभी कुछ चीज़ें जो है हम देखते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं एक्सपीरियंस करते हैं. दे आर पीपल आउट देयर जो ऐसी भी चीज़ें करते हैं विच एक्चुअली मेक्स यू बिलीव इन ह्यूमैनिटी एंड द फैक्ट कि एम्पैथी और सिंपैथी जैसी चीज़ें होती हैं जो अपनी जगह पर लोगों को सही क्रेडिट भी दिलाती है.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. देखो हम आ गए.
3: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
4: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
3: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
4: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
3: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
5: Kiwi kids are active kids, creative kids, sporty kids. Are you a Weet-Bix kid?
6: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge 10kg front loader and heat pump dryer, slick grey set, $11.99. Huge black stainless steel side-by-side fridge freezers, $6.99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: You filled the pinata before I sealed it, right?
8: No, you did.
7: Oh, I thought you did.
9: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
10: Andy didn't think he needed a DVS system.
11: Nah, we're all right, aren't we?
10: But Andy forgot about his daughter who suffered from asthma and allergies.
12: Yeah, Dad.
10: So, Andy got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work making their rooms drier, healthier and more comfortable. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
13: The heart of a healthy home, DVS.
14: The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari koi branch nahi hai.
14: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
17: Global Headlines.
2: आज सुबह के मुख्य समाचारों में US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में ईरान से इकोनॉमिक टाइज न तोड़ने वाले देशों पर नए सैंक्शंस की धमकी दी है. हालांकि अभी बड़े पेनल्टीज नहीं लगाए गए हैं. ईरान की करेंसी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो पर पहुंच गई है और ट्रंप का दावा है कि तेहरान कोलैप्स हो रहा है, लेकिन ईरान इकोनॉमिक प्रेशर का सामना करने के लिए अड़ा हुआ है. रीजनल टॉक्स के तहत पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तेहरान में ईरान के टॉप निगोशिएटर से मुलाकात की है, जबकि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बातचीत के लिए ईरान जाएंगे. भारत में कर्नाटक फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अमेजोन, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट के फूड लाइसेंसेस सस्पेंड कर दिए हैं, क्योंकि ये क्विक कॉमर्स एप्स अपने प्लेटफॉर्म पर जहरीला धतूरा बेच रहे थे. इन्वेस्टिगेशंस में पाया गया कि टॉक्सिक और सेहत के लिए खतरनाक होने के बावजूद इन धतूरा फ्रूट्स और सीड्स पर लाइसेंस नंबर्स के साथ ऑनलाइन लिस्ट और वेयरहाउस में इसे स्टोर भी किया गया था. पब्लिक कंप्लेंट्स के बेसिस पर हुई इस इंक्वायरी के बाद प्रशासन ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेचे जा रहे इन पॉइजनस प्रोडक्ट्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है. फिजी में नौसोरी के सवानी रोड पर कल दोपहर लगी भयानक आग में 3 फ्लैट्स पूरी तरह से तबाह हो गए, जिससे 3 परिवार वाले बेघर हो गए हैं। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार एक प्रॉपर्टी में बने कुल 6 फ्लैट्स में से 3 फ्लैट्स इस आग के चपेट में आकर खाक हो चुके हैं। पड़ोसियों के मुताबिक फायर फाइटर्स तुरंत मौके पर पहुंच गए थे, वरना तेज हवाओं के कारण आग आसपास के दूसरे घरों में भी फैल सकती थी। 2026 हॉकी वर्ल्ड कप के अंतर्गत अगर देखें तो कई मैचेस जो है ये खेले गए हैं। अभी जो मैचेस खेले जा चुके हैं उन पर अगर अपडेट्स जो है ये देखें तो बेल्जियम का मुकाबला आज सुबह अर्जेंटीना से होना है। इसके अलावा अन्य मैचेस की ओर अगर देखें तो नेदरलैंड्स और इंग्लैंड 2-2 गोल से बराबर ठहरे। जर्मनी की जीत स्पेन के खिलाफ विमेंस कंपटीशन में 4-1 से हुई। मेंस कंपटीशन में अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंडिया को 5-3 से हराया है। इसके अलावा इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक मैच जो है आज सुबह 7 बजे फुलहम और चेल्सी के बीच खेला जाएगा। इस मैच पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
12: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
18: मैं लाऊं अपना ए गेम।
19: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो आपके लिए आज का जो हमारा चैट बस्टर ये हम लेकर आ रहे थे फ्रॉम द मूवी जेंटलमैन पिक्चराइज्ड ऑन सिद्धार्थ मल्होत्रा और साथ में जैकलिन फर्नांडिस. आई डोंट नो सिद्धार्थ मल्होत्रा की अगली प्रोजेक्ट जो है कौन सी होगी बिकॉज रिसेंटली उन्हें किसी भी प्रोजेक्ट में जो है इतना देखा नहीं गया है. Haven't seen him around, haven't heard anything उनके बारे में कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं और अगली प्रोजेक्ट जो इनकी कौन सी होने वाली है. बट टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड आपके लिए लेकर आए हैं खबर not from the film industry but from the television industry और television industry या OTT platform जो है ये इतना broad हो चुका है कि इतनी सारी तरह के shows and content जो है ये लोगों को देखने को मिल रहा है आजकल. I don't know how many of you have been following the Traitors India season 2. आपने देखा है
1: ये क्या है
0: Traitors एक show है.
1: अच्छा नहीं मुझे तो मैंने तो आज पहली बार नाम ही सुना है.
0: अच्छा आपने पहली बार नाम सुना है. Interesting. Anyways, so Traitors जो season 2 है ये like season 1 करण जौहर ही host कर रहे हैं और it's based on a concept of a game जहाँ पर लोगों को guess करना होता है. Like there are so many contestants जो एक ही साथ एक ही घर में रह रहे होते हैं and उसके बाद the host of the show which is करण जौहर वो उनमें से कुछ लोगों को चुनते हैं to be the traitors. और बाकी जो लोग जिनको नहीं पता होता है कि ट्रेटर्स कौन है वो बाकी सारे होते हैं इनोसेंट. ना अलग अलग चैलेंजेस इनको मिलते हैं और जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको गेस करना आता है कि ट्रेटर्स कौन है. अगर वो सही सही गेस कर लेते हैं ट्रेटर्स को गेम से बाहर कर देते हैं तो वो जीत जाते हैं. पर अगर वो नहीं गेस कर पाते हैं देन द ट्रेटर्स विल कीप ऑन इविक्टिंग एंड किलिंग द इनोसेंट्स लाइक नॉट लिटरली किलिंग लेकिन उनको ऐसे गेम में हाँ तो ऐसे गेम से बाहर करते जाएंगे. एंड हूएवर बेसिकली अगर ट्रेटर्स ने इनोसेंट सारे इनोसेंट्स को बाहर कर दिया तो वो जीत जाते हैं या लास्ट स्टैंडिंग पर्सन जो ट्रेटर रहेगा अगेंस्ट इनोसेंट तो वो जीत जाएंगे या फिर ऑपोजिट अगर इनोसेंट जो है ये रहेंगे और सारे ट्रेटर्स बाहर हो जाएंगे तो वो जीत जाते हैं. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द होल रियलिटी शो. और इस सीजन में बड़े बड़े नाम जो है ये आए जिनमें मलिका शेरावत साथ में मुनावर फारूकी थे दलीप ताहिल एंड श्वेता तिवारी. आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर द नेम्स नाउ.
1: इट्स ओके.
0: तो काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम जो ये थे और अपेरेंटली इस पर्टिकुलर सीजन में एक नाम पारुल गुलाटी ये भी है. पारुल हैज़ डन अ फ्यू OTT प्लेटफॉर्म्स पर कुछ शोज इन्होंने किए हैं कुछ टेलीविजन प्रोग्राम्स भी इन्होंने किए हैं एंड शी ओन्स अ हेयर ब्रांड एज वेल. तो शी इज नोन ऑन सोशल मीडिया.
1: मतलब
0: बालों का एक ब्रांड विग्स
1: हाँ
0: उसका एक ब्रांड है इनका. तो शी इज क्वाइट नोन ऑन सोशल मीडिया. तो ये भी एक कंटेस्टेंट थी अलॉन्ग विद क्रिस्टल डिसूजा. क्रिस्टल जो है टेलीविजन में काफ़ी अच्छा खासा बड़ा नाम है तो वो भी इस सीज़न में है. और शुभमन गिल इनकी बहन शहनील गिल ये इस सीज़न जो है ये आई थी. सो अपेरेंटली शहनील और क्रिस्टल जो है ये ट्रेटर्स है और धीरे धीरे जब शो आगे बढ़ता जाएगा देन वील फाइंड आउट वट एक्चुअली हैपन्स क्योंकि अभी जो भी एपिसोड्स लोगों ने देखेंगे सर्टन जगह तक उनको पता है ना. सो शो खत्म हो गया शूटिंग खत्म हो गई शो रिलीज हो गया है एंड ईच एंड एवरी एपिसोड इज बीइंग टेलीकास्टेड नाउ. तो अपेरेंटली शुभमन गिल की जो बहन है शहनील गिल शी यस्टरडे टुक इट टू सोशल मीडिया जहां पर उन्होंने ये कहा कि पारुल गुलाटी जो हर सुबह जाकर ये कहते थे कि मेरी गट फीलिंग है कि ये ट्रेटर है ये ट्रेटर है ये ट्रेटर है और उनकी गट फीलिंग सही भी हो जाती थी डिडंट जस्ट डू इट ऑन द बेसिस ऑफ अ गट फीलिंग.
1: देन
0: उन्होंने कुछ क्रू मेंबर्स को ऑन द सेट्स ऑफ ट्रेटर्स खरीदा विद मनी बेसिकली और उनसे इंफॉर्मेशन लिया करती थी एंड दैट्स हाउ शी वाज एबल टू कैच वन ऑफ द ट्रेटर्स जिनको उन्होंने बाहर भी कर दिया जो कि रणवीर नहीं क्या नाम है उनका मैं नाम भूल गई रणविजय सिंघरा आपको याद है रणविजय उनके भाई है हरमन वो इस सीजन पार्ट ले रहे थे और वो एक ट्रेटर थे और पारुल वाज द वन हु वाज वेरी श्योर अबाउट हिम बीइंग अ ट्रेटर और उन्होंने सबको यू नो एडवाइस किया कि वोट करो इसके लिए ताकि ये बाहर हो जाए बिकॉज आई एम श्योर ये ट्रेटर है और वैसा ही हुआ वो ट्रेटर निकले वो बाहर हो गए. एंड देन पारुल हैड आईज ऑन क्रिस्टल सेइंग कि ये ट्रेटर है मैं बहुत श्योर इस बात को लेकर एंड शी आस्क्ड एवरीवन टू वोट अगेंस्ट हर बट सम पीपल डिड सम पीपल डिडंट एंड एट द एंड पारुल खुद बाहर हो गई. एंड उसके बाद चलकर जब शहनील ने ये बात कही कि इनको टिप्स मिला करते थे इनकी कोई गट फीलिंग नहीं थी तो अपेरेंटली क्रिस्टल डिसूजा हैज आल्सो जॉइन द सेम टीम सेइंग कि आई एम क्वाइट शुक क्योंकि ये बाकी कंटेस्टेंट्स के ऊपर यू नो गलत है इट्स अनफेयर कि yeah, वो ऑनेस्टी के साथ खेल रहे थे और ये ऐसी हरकत कर इन्होंने ट्रेटर्स को पकड़ने की कोशिश की. एंड देन देयर इज अनदर कंटेस्टेंट दिस सीजन जिनका नाम है प्रिश, उन्होंने भी यही कहा. एंड अनदर कंटेस्टेंट रिदा, उन्होंने भी यही चीज कही. सो फोर ऑफ द कंटेस्टेंट आस हैं कि पारुल ने चीटिंग की. और पारुल जो सोशल मीडिया पर गई, उन्होंने ये कहा कि ये सभी मिलकर मेरे को टारगेट कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है. बट अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन फ्रॉम द मेकर्स और फ्रॉम द होस्ट ऑफ द शो करण जौहर ये कुछ नहीं आया है. इट्स जस्ट द कंटेस्टेंट्स जो आपस में ये बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं.
1: Maybe behind the scenes वो investigate कर रहे हैं. Look, sounds like a very good concept.
0: Yeah, the show is quite interesting.
1: करण जौहर वो बहुत ही बढ़िया host है. And जिस तरह से वो चीजों को पेश करते हैं, it makes it even more intriguing. So कहाँ पर देख सकते हैं लोग इसे?
0: Amazon Prime Videos.
1: Okay, तो yeah. Amazon Prime Videos पर आप जाकर देख सकते हैं. सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में आपने पूछा था ना, तो इनकी फिल्म जो है बस इन अनदर से 30 डेज इन अ मंथ जो है ये रिलीज होने जा रही है.
0: कौन सी फिल्म?
1: 25th ऑफ सितंबर को उनकी फिल्म रिलीज होगी, द वन.
0: द व्हाट?
1: द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट. ये एक फोक थ्रिलर एक्शन फैंटेसी मिस्ट्री जो भी आप कहना चाहें पिक्चर है, जिसमें तमन्ना भाटिया के साथ उन्होंने काम किया है. तो ये इनकी अगली फिल्म होगी जिसमें वो नजर आएंगे.
0: इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी वंस दिस पर्टिकुलर मूवी रिलीजेस सिद्धार्थ मल्होत्रा कहां पर स्टैंड करते हैं. राइट नाउ आपके लिए लेकर आ रहे थे कुछ खबरें फ्रॉम बॉलीवुड 24 मिनट्स अवे फ्रॉम 7:04 नाउ. और थोड़ी देर बाद आपके लिए लेकर आएंगे डिटेल्स अबाउट 25th ऑफ अगस्त और आज का हमारा पहला सवाल भी.
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: Get ready. Passengers, stand by. The next hum boarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
4: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Hum, accurate traffic.
5: Fly Solomon Airlines.
6: Fine and cloudy for us all day today, got a high of 17 degrees. Southwest motorway heading northbound, we're quite heavy between Puanui and Massey Road, a breakdown in that area. Yeah, fine the other way though. Southern motorway, 24 minutes Manukau to town, slow patches from Takanini through to Papatoetoe. Northwestern, 20 minutes Massey to town, slowing close to the CBD. And Northern, 18 from Constellation, slow there to Glenfield.
5: Auckland to Vanuatu from $925 return. Selected dates, conditions apply. FlySolomons.com.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है. हाँ. अच्छा बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं?
9: मिसेस सिंह.
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
11: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
12: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the winter sparkle celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन. प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर, तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए. हरी, विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर, ऑकलैंड.
13: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
14: Yes, but I want to subdivide too.
13: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes packed with premium inclusions with full subdivision support if you need.
14: Really?
13: Yep. From planning and consents through to construction, the team can help manage the entire process.
14: Zelo. I like the sound of that.
13: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए लेकर आ रहे हैं. This is Breakfast Catch-up. 20 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 7 बजने में. गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आपके आए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो आज बॉबी मान जी, बहुत बहुत शुक्रिया. हर सुबह आप हमें याद करते हैं और जितना आपको हम शुक्रिया करें उतना हमारी ओर से कमी होगा, बिकॉज यू नेवर मिस अ सिंगल डे ऑफ यू नो गिविंग अस कंपनी, ऑफ बींग विद अस. सो ट्रूली अप्रिशिएटेड, थैंक यू वंस अगेन. और आपको भी जय सिया राम. इसके अलावा मिस्टर माटा माटा, इन्होंने कहा है राम राम सभी को, हैप्पी ट्यूसडे, हैव अ ग्रेट डे. और फंगपुरवा से सुन रहे हैं सलू, थैंक यू सो मच सलू आपके भी मैसेज के लिए. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू. मैंडे, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सुबह सुबह हमारे साथ शामिल होने के लिए.
4: अभी समय की ओर देखें, 20 मिनट रह गए हैं 7 बजने में. 7 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम लेकर आएंगे. आज 25th ऑफ अगस्त, आज कई चीज़ें जो है ये मार्क की जा रही हैं, जिनमें शामिल हैं बनाना स्प्लिट डे.
3: Oh, banana split.
4: Have you tried
3: this? It's
4: like a
3: banana with ice cream, na? Usko banana split, banana split bolte hain.
4: Aur saath mein second hand wardrobe day.
3: Interesting.
4: ये आज मार्क किए जा रहे हैं. बर्थडेज की ओर देखें तो अपने समय के बहुत ही मशहूर अभिनेता राजीव कपूर, आज के दिन इनका जन्म हुआ था.
3: ये ऋषि कपूर के भाई है ना?
4: कुछ तो है.
3: I think so, brother ही है.
4: I think लोहा फिल्म में इन्होंने काम किया था.
3: I don't know. ये राम तेरी गंगा मैली में कौन थे?
4: राजीव कपूर थे,
3: वही थे ना?
4: हाँ,
3: ओके.
4: उनके साथ विनेश फोगाट, आज ये भी अपना बर्थडे मना रही हैं.
3: ओके.
4: और इनके साथ अपने जमाने की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस और उतना अच्छा गाती भी थी विजेता पंडित, ये भी इनका भी जन्म आज के दिन हुआ. और आई थिंक ये जो एक्ट्रेस है, इन्होंने सलमान खान के साथ अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, डेजी शाह.
3: ओह यस,
4: आज ये भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. 25th ऑफ अगस्त, आपका भी कोई है जो आज अपना जन्मदिन मना रहा है या शादी की सालगिरह मना रहा है, उनके लिए इस दिन को और खास बनाएं और स्पेशल बनाएं. जो मैसेजेस हैं आप 5599 पर हमारे पास भेज दें. 7:30 बजे के बाद आपको विश भी हम करेंगे इस प्रोग्राम में.
3: आज थोड़ा डिफरेंट, कोई मूवी नहीं गेस करनी है आपको, बिकॉज आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. एंड आई थिंक थोड़ा चैलेंज करना पड़ेगा लोगों को, कुछ डिफरेंट तरीके से लेकर आना होगा टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. सो आई नीड अ बिट ऑफ टाइम ऑन दैट. पर आज आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं, आपको इसका जवाब बताना है कि अगर जज का बेटा वकील है और वकील का बाप इंस्पेक्टर, तो जज कौन है?
4: वेरी इजी,
3: ट्रू. पर क्या आपको पता है आंसर? क्या आपके लिए ये इजी है या नहीं?
4: जज का बेटा
3: वकील, वकील का बाप इंस्पेक्टर, तो जज कौन?
4: तो बीसी अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेज सकते हैं.
3: और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे आप में से कितने लोगों ने सही आंसर्स जो है ये दिए हैं. याद रहे, अगर जज का बेटा वकील, वकील का बाप इंस्पेक्टर, तो जज कौन? अपना आंसर भेजिए हमारे पास 5599 पर. परमा महाराज जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू, थैंक यू सो मच आपके भी साथ के लिए.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papio. Chubo jao. Ladies and gentlemen.
0: Unfiltered with Sandy and Rusby. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniya hoti hai raw. Emotions hote hai real. Aur conversations hote hai bina mask ke.
2: Raja, mantri, chor, sipahi, sab yahan aate hai.
0: Unfiltered with Sandy and Rusby. On Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
3: Hum, accurate traffic.
4: Wardrobes Direct, options to suit all budgets.
5: A high of 17, fine today, but plenty of cloud too. Southwestern heading northbound, a breakdown between Puanui and Massey has been sorted, just a bit slow there. Northern coming in, 20 minutes, Constellation Drive to Town 48 from Silverdale, slow at Silverdale and Constellation to Glenfield and then Esmond to the bridge. Southern 32 from Monaco, slow Papakura to Mount Wellington, Northwestern 23 from Massey, slow from Greyland.
4: Wardrobes and sliding doors for all budgets. Visit Wardrobes Direct, Mount Wellington and Silverdale showrooms.
6: Craving ho rahi hai, us thick aur creamy dahi ki, jaise ghar par milti thi, to milvate hain aapko Kashish Natural Yogurt se, jiska har spoon hai ekdam delightful, 100% vegetarian, gelatin and gluten free. Perfect hai smoothies banane ke liye, tangy dips banane ke liye, paneer ya chicken marinate karne ke liye, ya bas seedha tab se khane ke liye, kyunki ye hai naturally delicious, always desi. Available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish Natural Yogurt.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
8: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more? To bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Breakfast catch up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800 722462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
9: इतनी मेहनत करके एक सवाल जो है ये आपसे हमने की और फिर उसके लिए जो आपने अपना आंसर भेजा है थैंक यू सो मच जिसने भी अपना आंसर भेजा है आपके मोबाइल नंबर के लास्ट फोर डिजिट्स मेरे ख्याल से है 4619 बहुत बहुत शुक्रिया आपने जवाब जो ये भेजा टेक्निकली इफ आई से यू आर नॉट रॉन्ग देन यू आर एक्चुअली नॉट रॉन्ग टेक्निकली आपका जवाब सही है बट जिस तरह से हमें जवाब चाहिए था निखिल आपने अपना जो आंसर भेजा है वो थोड़ा गलत हो गया
10: अच्छा
9: पर टेक्निकली ये गलत नहीं है
10: अरे भाई डिसाइड कर लो ये सही है या गलत है
9: नहीं नहीं वही मैं बोल रही हूँ कि ये भी एक आंसर हो सकता है जिन्होंने भेजा है बट देयर इज अनदर वे जिससे इस सवाल का जवाब आप दे सकते हो वो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी सो चलो निखिल का आंसर हम एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज एज आई सेड इट्स नॉट रॉन्ग बट कोशिश आप भी कर सकते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है इट्स वेरी वेरी इजी जज का बेटा वकील वकील के फादर इंस्पेक्टर तो जज कौन इट्स दैट सिंपल अगर जज का बेटा वकील है और वकील के फादर इंस्पेक्टर तो जज कौन वेरी इजी आपको अपना आंसर 5599 पर हमारे पास भेजना है आप बीसी लिखे सबसे पहले फिर आंसर फिर नाम आपको दे रहे हैं अनदर 5 मिनट्स का टाइम जब तक कि थ्रोबैक प्ले हो रहा है उसके बाद हम आपको सही जवाब जो है ये बताएंगे ज़रूर और साथ ही साथ आपके लिए एक और एक बड़ा ही ज़रूरी और इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो है ये हम शेयर करने वाले हैं अगले घंटे टॉप ऑफ द आवर कुछ ऐसा है जो आप सबको जानना चाहिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इसका असर शरीर पे ज़रूर दिखता है लेकिन हमारा ब्रेन हमारा दिमाग इस पर जो असर है वो क्या होता है इसका ये शायद हमको दिखता नहीं है पर फील होता है और कैसे आप उस चीज पर काम कर सकते हैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे।
10: प्लस अभी मत भूले कि आज 8 बजे के बाद वैसे हमारा हम बोर्डिंग कॉल है उसमें हिस्सा लेने का मौका आपको मिलेगा। जैसे ही बोर्डिंग कॉल आप सुने, यू हैव टू हेड टू रोवर और बोर्ड नाउ एंटर करके आपको ड्रो में शामिल होना है टू विन टू रिटेन एयर टिकट्स टू वनुआतु फ्लाइंग सोलोमन एयरलाइंस विद $1,000 स्पेंडिंग मनी।
9: थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआतु। flysolomons.com आप विजिट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपको जानने हैं तो hum.rova.nz जो है ये आप विजिट कर सकते हैं। याद रहे कि आज ब्रेकफास्ट शो का जो बोर्डिंग कॉल है, स्पेशल बोर्डिंग कॉल, ये 8 AM टू 9 AM के बीच प्ले होगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ध्यान से सुनना है आपको, एंड जैसे ही आपको वो सुनने को मिले

बताना है। अगर वकील का बेटा जज का बेटा वकील और वकील के फादर इंस्पेक्टर, तो जज कौन? बी एफ बी सी स्पेस आंसर ये नेम 5599 पर आप भेजें।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: अभी तक बताया जा रहा है पार्टली क्लाउडी वेदर जो है आज रहेगा, विद चांसेस ऑफ लिटिल बिट ऑफ शावर्स हियर एंड देयर. सनसेट 5:56 पीएम पर होगा. राइट नाउ टेम्परेचर 7.8 डिग्रीज है, हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर, एंड ओवरनाइट टेम्परेचर 10 डिग्रीज तक आज रहने वाला है.
2: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
3: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको, इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी living.
2: Morning madness. The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो.
5: तीन मिनट हो रहे हैं 7:00. वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम. और अगर रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं, ये सुबह मुबारक हो. कुछ देर से हमारे साथ हुए हैं इस घंटे, थोड़ी ही देर में बताएंगे आज का दिन आपका कैसा गुजरने वाला है.
1: पर फिलहाल जैसे कि हमने आपसे कहा था, अब यहीं पर रैप अप करना होगा हमारा सवाल जो पिछले घंटे हमने पूछा. अब चाहे आंसर आए नहीं आए, सही आए गलत आए, जो भी है अब यही है. सबसे पहले निखिल ने आज आंसर दिया था और उसके बाद हमारे पास कुछ और मैसेजेस आए थे. रोन सामी ने मैसेज किया था, अविनाश ने पापा कुरो से कहा जज इज जज, जज तो जज है ही, लेकिन सवाल का जो दूसरा पहलू है शायद ये आप नहीं समझ पाए. पापा टोय टोय से बॉबी ने हमारे पास मैसेज किया कि ग्रैंडसन, अनफॉर्चुनेटली दैट्स रॉन्ग. 5346 आपने कहा ब्रदर. 19938 आपका भी मैसेज आया है और बॉबी मान जी ने भी अपना जवाब जो है ये दिया है. सो अगर जज का बेटा वकील है और वकील के पिता है इंस्पेक्टर, तो जज कौन? जज माँ हो सकती है ना, ये शायद कोई नहीं सोचता. पर
5: मैं सोचता हूँ.
1: नहीं, बॉबी मान जी ने वही मैसेज किया था और 9938 ने वही जवाब दिया था. और निखिल ने कहा था कि इंस्पेक्टर की बीवी है जज, तो टेक्निकली वो गलत नहीं है.
5: बट टेक्निकली नहीं, वो गलत नहीं है.
1: हाँ या गलत नहीं है, बट हम उस एस्पेक्ट से ढूंढ रहे थे ना कि जज और वकील के बीच में क्या रिलेशनशिप हुआ इन अ वे. सो देयर यू गो, द करेक्ट आंसर इज माँ. और जितने लोगों ने हमारे पास ये भेजा, थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए. फिलहाल मैंने कहा था कि इस घंटे आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेन हेल्थ के बारे में कुछ ज़रूरी बातें. अपेरेंटली एक आर्टिकल जो है ये सामने आया है और इसके हिसाब से बताया जा रहा है कि आपका जो फिजिकल हेल्थ है इसके साथ साथ आपका ब्रेन हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये खैर कोई बताने वाली बात नहीं है, पर शायद हम समय के साथ ये भूल जाते हैं. What does having a healthy brain actually mean? एक healthy brain का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका brain जो है ये disease free हो. Healthy brain का मतलब ये है that it's able to think and learn, remember things, handle challenges, manage emotions, stay connected with other people or adapt to changes in life. Things like physical health, sleep, stress, social connections, learning, safety and access to health care आपके brain health को affect कर सकते हैं. सबसे ज़रूरी चीज़ कि क्यों हम mentally इतना exhausted feel करते हैं after a busy day. अगर आपको नहीं पता, even if you haven't done anything physically, आपका brain जो है कहीं ना कहीं extremely tired feel करना शुरू कर देता है. Think about everything your brain handles during the day. Messages, emails, काम के फैसले, conversations, स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट टास्क और इमोशंस को मैनेज करना, साथ में प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, इतना काम आपका ब्रेन जो है ये करता है. एंड ऑल ऑफ दीज यूजेस योर मेंटल एनर्जी. द प्रॉब्लम इज दैट कि हम अक्सर रियलाइज नहीं करते कि हमारे ब्रेन को भी ब्रेक की जरूरत है. एंड द सिंपल एडवाइस इज टेक शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग द डे. जब ये ब्रेक आप ले रहे हो फॉर अ फ्यू मिनट्स, step away from your emails, from your phones, from conversations. दूसरे लोग जो आपका attention demand करते हो उनसे आप दूर रहें. And एक clear mind लेकर थोड़ी देर के लिए शांति से चुपचाप आप बैठे रहे. Just don't say anything. That is the break that your brain needs during
5: just
1: the
5: like
1: day.
5: Just like me. Just be like me.
1: Just be like you.
5: Yeah.
1: मतलब
5: शांत बैठे और चुपचाप किसी से कुछ बोलो
1: मत. नहीं, but काम भी नहीं करना है आपको.
5: हाँ, ऐसे ही.
1: You are not even doing any work. You're just sitting for a break. You know that's important. Mental tiredness versus burnout. क्या होता है ये अगर आप सोच रहे हैं? तो अगर आप mentally tired feel कर रहे हैं after a busy day, it's normal. लेकिन अगर आप exhaustion feel कर रहे हैं frequently, overwhelming, long lasting emotions है ये, तो ये आपके everyday life को affect कर सकता है. It could be a sign कि धीरे-धीरे आपका brain जो exhaust हो रहा है, you're not paying attention, you're not giving what your brain needs. That is the break जो आपके brain को चाहिए. और सबसे जरूरी बात, क्या स्ट्रेस आपके ब्रेन के लिए गलत है? अगर ये सवाल आप पूछते हैं और आपको इसका जवाब नहीं पता, तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस नेसेसरली बुरा नहीं होता आपके ब्रेन के लिए, लेकिन इट कैन एक्चुअली हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट एंड रिएक्ट क्विकली जब कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको करनी होती है। लेकिन कॉन्स्टेंट स्ट्रेस जिसमें आप रहते हैं, अगर आपका बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस मोड में रहेगा, आपका हार्ट, आपका ब्लड सर्कुलेशन, इम्यून सिस्टम, हार्मोन्स, स्लीप, ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज, ये सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और इसके चलते इसका सीधा असर आपके ब्रेन पर पड़ेगा। नाउ ब्रेन को हेल्थिया कैसे बनाना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र होती है हमारा ब्रेन भी तो, उसका भी तो एज होता है ना, इट्स गेटिंग ओल्डर विद अस। इट्स नॉट कि फिजिकली सिर्फ हम बड़े हो रहे हैं, ओल्ड हो रहे हैं, लेकिन ब्रेन जो है यंग है, इट्स नॉट लाइक दैट। सो आवर ब्रेन इज ऑल्सो गेटिंग ओल्ड एज वी गेट ओल्ड, और इस वजह से फिजिकली एक्टिव होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग ना करें, ये आपके ब्रेन के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं है। अल्कोहल कंजम्पशन अगर आप कर रहे हैं तो उसे थोड़ा लिमिट में करें, सोशलाइज करने के लिए ही करें, हेल्थी डाइट का सेवन करें, सोशली कनेक्टेड रहे लोगों के साथ, एंड गेट गुड स्लीप। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कीप एन आई ऑन सच थिंग्स जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हियरिंग, क्योंकि ये भी आपके ब्रेन पर काफ़ी असर कर सकता है। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक योर ब्रेन हेल्थिया, तो इसके लिए कुछ सिंपल चीज़ें आप कर सकते हैं। आप अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करा सकते हैं। दैट डजंट रियली मीन कि यू नो डंबल्स उठा रहे हैं आप और ब्रेन को बोल रहे हैं इसका वजन फील करो, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द बिगर आइडिया इज टू कीप योर ब्रेन एक्टिव एंड क्यूरियस। फॉर एग्जांपल, कुछ नया सीखने की कोशिश करें जो आपने पहले कभी नहीं किया। जब आप नई चीजें सीखोगे तो आपके ब्रेन को एक एक्साइटमेंट होगी, एक क्यूरियोसिटी होगी कि ये क्या है, इसे कैसे डिस्कवर करना है, इसे कैसे सीखना है। हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखे, कोई नया लैंग्वेज सीखे, नए कुकिंग स्किल्स सीखे, नई टाइप ऑफ डांस सीखे, पेंटिंग करना सीखे, या टेक्नोलॉजी में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में सीखे। लेकिन अपने ब्रेन को चैलेंज करते रहें, नई नई चीज़ें करते रहें, और इससे आपका ब्रेन जो है ये एक्टिव रहेगा और उसका एक्सरसाइज भी होगा। कमाल की बात ये है कि आज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में रेजिंग द बा इवेंट जो है ये होने वाला है, और यहाँ पर प्रोफेसर हैनकी हस्टल जो है ये एक भाषण मतलब करने वाली है, जो बेसिकली है टाइटल्ड वी डोंट हैव अ स्पेयर और कीपिंग अ हेल्थी ब्रेन। क्योंकि हमारे पास एक ही ब्रेन है, ऐसा नहीं कि बाजू में पड़ा हुआ है कि ये खराब हो गया तो दूसरा आप लगवा सकते हो। तो इसीलिए एट दिस पर्टिकुलर यू नो मीट जो होने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में, आज यहाँ पर ये बातें करने वाली है अबाउट हेल्थी ब्रेन, कैसे ब्रेन को एक्टिव रखना है, कैसे ब्रेन को हेल्थी रखना है, और इस बात को मान लेना कि सिर्फ शरीर नहीं दिमाग भी बूढ़ा हो रहा है।
5: okay.
1: तो इस पर काम करना जरूरी है।
5: तो आप भी अपने दिमाग को बूढ़ा होने से, बूढ़ा तो होगा ही वो ना, बट
1: बीमार होने से बचाइए।
5: हाँ, keep your brain healthy.
1: Yes, that's the most important thing. And as we have just mentioned, कि disease free brain सिर्फ healthy नहीं होता, लेकिन अगर आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिविटी कर ही नहीं रहा है, कुछ एक्साइटिंग, कुछ डिफरेंट, कुछ नया आप नहीं कर रहे हो, तो आपके ब्रेन को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता ना, एंड दैट इज़ हाउ आपका ब्रेन जो है धीरे धीरे और भी ज़्यादा एज हो जाता है इसका। सो देयर यू गो, सम इम्पोर्टेंट थिंग्स जो शायद आपके काम आ सके इन कीपिंग योर ब्रेन हेल्थी।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papio. Chubo jao.
0: Rashi Vibes.
2: मेष यानी एरीज, आज आपके लिए कहा जा रहा है, जो लोग पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट करते हैं अपनी नौकरी में, आज आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। पुराने ग्राहकों से भी बिजनेस में फायदा होगा। बातचीत के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें जिनसे कोई इमोशनली हर्ट हो सकता है। परिवार पर अचानक पैसे खर्च हो सकते हैं।
3: रिशनी टोरस, आज आपके लिए बताया जा रहा है कि नौकरी की स्थिति मजबूत बनेगी। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से ये डाउट्स थे कि आपका भविष्य जो है नौकरी के मामले में क्या है क्या नहीं, तो डेफिनेटली You will get your answers today. और आपके लिए ये भी कहा गया है कि आपके जो बॉसेस हैं ये कहीं ना कहीं आपके काम पर और आप पर नज़र बनाए रख रहे हैं फॉर whatever reasons। हो सकता है कुछ अच्छा भी आपके हाथ लगने वाला हो आने वाले दिनों में, एंड दैट्स वाई दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आप कितना क्या और कैसे जो है ये कर रहे हैं। और साथ में आपके लिए ये भी कहा गया है कि लव लाइफ आपकी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी, कुछ रिश्ते हैं और भी मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसका अच्छा रिजल्ट आप जरूर देखेंगे।
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज पार्टनर के साथ आपका जो यू विल बी थिंकिंग अलोंग द सेम लाइंस, और साथ में फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर कुछ नए आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में। आंखों को आराम दें। जो लोग डिजिटल मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े हैं, आज आपको बड़ा फायदा हो सकता है।
3: कर्क ने कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर शांति बनाए रखे, आज आपकी बहुत जरूरत है। किसी भी तरह की बहस में आप ना पड़े, बिजनेस के मामले में लेन देन के मामले में थोड़ा केयरफुल हो जाए। और आज आपके लिए कहा गया है कि गलत फहमी जो है आपकी भावनाओं पर असर कर सकता है। So try and clear all the doubts. अगर ऐसा कुछ भी हो, किसी भी तरह का रिश्ता जो है आपका अफेक्टेड हो रहा है इससे, make sure आप सही तरीके से फैसले जो है के लिए।
2: सिंह यानी लियो, सेल्फ कॉन्फिडेंस और गुड लीडरशिप क्वालिटीज की बदौलत आज कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। बिजनेस में एक अच्छा खासा मुनाफा होगा, लेकिन एक्सपेंसेस पर कंट्रोल भी आज बनाए रखें।
3: कन्या यानी वर्गो, आपके काम की बारीकियां जो है इन पर ध्यान देनी पड़ सकती है आपको, अदरवाइज अगर कोई भी भूल हुई आपसे तो उसका नुकसान आपको होगा। और साथ में मैरिड लाइफ जो है आपका ये बहुत अच्छा बीतेगा। इनफैक्ट आज आपका काफ़ी सम्मान जो है ये होगा आपकी मैरिड लाइफ में। यू फील वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड दिस मच, जो शायद आपके लिए एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट हो।
2: तुला यानी लिब्रा, टीम वर्क से सक्सेस आप हासिल करेंगे। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो फायदा होगा, लेकिन अपने कंडीशंस को बहुत क्लियरली आप स्टेट कर दें। इनकम ठीक ठाक रहेगा, गर्दन या फिर बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम्स आज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
3: और वृश्चिक ने स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि कुछ नई जिम्मेदारियां जो है ये लेने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। सोच समझ कर कुछ फैसले आज आपको लेने होंगे, और खास तौर पर आपका जो भी पर्सनल रिलेशनशिप है, या यू कह सकते हैं लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, तो इस मामले में आपसी विश्वास आज आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको ध्यान देना होगा कि आप सही फैसले जो है ये लें।
2: दुनिया ने सेजिटेरियस, आज काम पर कुछ तरक्की के रास्ते खुलेंगे, और साथ ही में लव लाइफ में मिठास और काफ़ी इमोशन जो है ये रहेगा। फाइनेंशियली दिन बढ़िया रहेगा, और ख्याल रखें कि काम आप कर रहे हो तो अपने आप को ओवरवर्क ना करें।
3: और उसके बाद आज वैसे बताया गया है मकर यानी कैप्रिकॉर्न के लिए कि आज डिसीजंस लेने का दिन है। सही फैसला आप ले सकते हैं अगर जो आप सही तरीके से चीज़ों को एनालाइज करें। पुराने सौदे में लगातार आपके हाथ आज फायदा लगेगा। यू सी ऑल द गुड ऑल द बेनिफिट। और जोड़े में यानी कि भागीदारी में कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर अच्छी तरीके से मेक योर डिसीजंस।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, नए आइडियाज की वजह से काम में नयापन आएगा, आपको एक अच्छी पहचान जो है ये भी मिल सकती है। उसके अलावा आज आपका जो फ्रेंडली नेचर है उससे आप अच्छे खासे रिश्ते जो है ये बनाएंगे। काम के साथ आराम भी जरूरी है।
3: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि पॉजिटिविटी ही आज आपका की टू सक्सेस साबित होगा। यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, और पॉजिटिविटी जो है ये आपके आसपास बढ़ती रहेगी, और की भी लाइफ में आप ऐसी ही पॉजिटिविटी जो है ये लेकर पहुंचेंगे। बिजनेस के मामले में आपको काफी फायदा होगा, मुनाफे का दिन जो है ये आपके लिए आज साबित होगा। साथ में रोमांटिक रिलेशनशिप्स के मामले में कुछ चीजें अगर गड़बड़ हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, तो इसमें एक सुधार जो है ये आज आप जरूर देखेंगे। तो ये रहे आज के आपकी राशि वाइब्स। उम्मीद करते हैं दिन सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे। कमिंग अप नेक्स्ट ऑन मॉर्निंग मैडनेस ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा, आज का आपका सेलिब्रिटी अलार्म।

0: inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines. Plus, $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ. अच्छा बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
1: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.in.
6: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry! Visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
7: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी डिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा कप से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
8: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
1: When India comes to town, Ayodhya Rova ka feel hi kuch alag ho jata hai. Cricket Nation ke pre-sale mein shamil ho. NZC.NZ pe aur apne tickets sabse pehle book karo. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps vs India.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
10: Celebrity Alarm. Hit it.
2: तो चलिए बारी है आज के सेलिब्रिटी अलार्म की और आपके लिए आज का सेलिब्रिटी अलार्म जो है ये हम लेकर आए लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि थोड़ी देर बाद आपको विश करेंगे आज का हैप्पी बर्थडे तो अगर अभी तक आपने अपने मैसेजेस नहीं भेजे हैं
11: 5599 हमारा नंबर है प्लीज़ अपने मैसेजेस समय से पहले आप हमें भेज दें ताकि हम आपको विश कर सकें और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है इससे पहले कि आज के जो सेलिब्रिटी हैं उनकी आवाज़ आप सुनाएं इतना मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग आप हमें सुन रहे हैं फिलहाल उनमें से 50% लोग भी अगर आंसर देते हैं
2: तो
11: हमारे पास द हाईएस्ट नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस ऑन द ब्रेकफास्ट शो किसी एक टाइम पर आ जा सकते हैं हाईएस्ट नंबर उतने मैसेजेस द ब्रेकफास्ट शो में शायद कभी नहीं आए होंगे
2: okay.
11: अगर हाँ. जितने लोग आप सुन रहे हैं उनमें से 50% भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं
2: अच्छा तो लेट्स सी क्या
11: अरे किसी ने बोर्ड नाउ लिखकर भेज दिया भाई
2: अभी नहीं हो रहा है बोर्डिंग कॉल हां
11: अभी बोर्डिंग कॉल नहीं हुआ बोर्डिंग कॉल 8 बजे के बाद अनाउंस होता है तो सुनते रहें और जब ये अनाउंस हो तो आपको हमारे पास बोर्ड नाउ लिखकर टेक्स्ट नहीं करना है 7 या 4531 आपको रोवर पर जाना है और वहां जाकर बोर्ड नाउ जो है जहां लिखा होगा कोड नाउ एंटर कोड नाउ वहां पर आपको बोर्ड नाउ लिखकर सबमिट बटन जो है ये क्लिक करना होगा और अगर लिंक चाहिए तो वो बीसी लिखकर आपको भेजना होगा।
2: जी बिल्कुल। फिलहाल चलिए आज के सेलिब्रिटी इलाम आपको सुनाते हैं। वैसे तो दो वॉइसेस हैं इस ऑडियो में, एक के बारे में हम आपको बता देंगे, दूसरा आपको गेस करना होगा।
4: रणबीर
12: कपूर,
4: कपूर
12: ओके,
4: विकी कौशल
12: ओके,
4: रणवीर सिंह
12: सिंह,
4: थ्री नेम्स,
12: राजकुमार राव, आयुष्मान एंड वरुण,
4: एग्जैक्टली इन दैट ऑर्डर।
12: Yeah.
2: तो आपको बताना है कि ये आज के हमारे जो सेलिब्रिटी जिनकी आवाज़ हमने आपको सुनाई ये कौन है। पहली आवाज़ तो आपको पता है कि करण जौहर की है, हम आपको बता दें। और ये जो ऑडियो क्लिप है ये हमने आपके लिए लिया है फ्रॉम कॉफी विद करण का एक एपिसोड, राइट। अभी गेस्ट कौन आए थे इनके शो में, जहाँ पर इन्होंने एक्चुअली गेस्ट से कहा कि आपको अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट, एक्टिंग टैलेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू आपको इन्हें रैंक करना होगा। और फिर उनको एक लिस्ट दी गई ऑफ एक्टर्स, जिसमें से इन्होंने अपने हिसाब से उनको रैंक करते हुए ऑर्डर जो है ये दी, बताया कि इस ऑर्डर में ये है। तो अच्छे से सुनिए।
12: Can you rank the actors in terms of their acting talent as what you think of them? Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, Varun Dhawan, Vicky Kaushal, Rajkumar Rao, Ayushman Khurana.
4: Ranbir
12: Kapoor,
4: Kapoor,
12: okay.
4: Vicky Kaushal,
12: okay.
4: Ranveer Singh,
12: Singh.
4: The other three names.
12: Rajkumar Rao, Ayushman and Varun.
4: Exactly in that order.
12: Yeah.
2: तो कौन है ये जिन्होंने जवाब दिया करण जौहर को इनके इस सवाल का, करण जौहर के शो कॉफी विद करण में। और अगर आपने इनकी आवाज़ पहचान ली है तो अपने आंसर्स हमारे पास अब भेज सकते हैं। बी एफ लिखिए सबसे पहले, फिर उसके बाद आंसर और नाम, और 5599 पर भेज दें।
11: लेट्स सी, हमने कहा है कि अगर आप में से 50% लोग भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस आ जाएंगे हमारे पास, प्लस ऐसे कॉम्पिटिशन करने में मजा भी आएगा ना, दैट इज द थिंग।
2: बट लेट्स सी क्या कोई आवाज़ पहचान पाता है या नहीं।
11: लेट्स सी, 50% का तो हमने कह दिया है, 10% भी करते हैं या नहीं
2: देखते हैं।
13: Bollywood's most wanted.
14: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आऊं?
15: मैं लाऊं अपना A game.
13: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
2: आज का Bollywood's most wanted रोमी और साथ में श्रेया घोषाल की आवाजों में लेकर आ रहे हैं आपके लिए। मिर्जापुर जब वेब सीरीज आई थी तो उसमें ये गाना रिलीज हुआ, लेकिन मिर्जापुर द मूवी के लिए इसे रिक्रिएट किया गया है। इस बार आपके लिए Bollywood's most wanted लेकर आ रहे हैं द सॉन्ग वारू।

0: News Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में मुंबई के रॉबर्ट स्ट्रीट पर एक घर में लकड़ी का डंडा लेकर घुसे 26 साल के एक अलेज्ड बर्गला को घर के लोगों ने छीना झपटी के बाद डिसार्म कर दिया। आहट होने पर ऑक्युपेंट्स ने ही उसे मेडिकल हेल्प दी, जिसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर उसे सीरियस कंडीशन में फांगरे अस्पताल भर्ती कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इलाके में सिक्योरिटी बढ़ाती है, जबकि इस मामले में किसी और की तलाश नहीं की जा रही है। ऑकलैंड के हॉस्पिटल्स में सीजनल रेस्पिरेटरी इलनेस के मामले पिछले एक दशक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, जिससे नॉर्थ आइलैंड के एक एज्ड केयर फैसिलिटी में दो लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। एक्सपर्ट्स माइकल बेका और माइकल प्लैंक के मुताबिक इन्फ्लुएंजा A/H3 कई स्ट्रेन और ठंड के कारण मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि नॉर्थ शोर हॉस्पिटल जैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स 200% से 300% तक ओवर कैपेसिटी काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की मांग बढ़ने के साथ ही पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने स्ट्रेन और ट्रांसमिशन कम करने के लिए COVID-19 स्टाइल प्रिकॉशंस जैसे मास्क पहनना और हॉस्पिटल हाइजीन बढ़ाने की सलाह दी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक मैच फिलहाल फुलहम और चेल्सी के बीच प्रथम हिस्से में खेला जा रहा है। अभी दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर हैं। इस मैच पर और भी अपडेट्स आपके लिए हम बारी बारी से लेकर आते रहेंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smunko, English heritage inspired furniture for everyday luxury living. Hum, accurate traffic.
4: The ultimate Father's Day fresh box is on sale this Thursday. Father's Day sorted.
5: A high of 17, fine and cloudy today. Couple of issues if you're heading to the airport on State Highway 20B Puanui Road. There's a crash heading towards the airport before the lookout. And Northern, a crash just past the Silverdale off-ramp. Very heavy at Silverdale, an hour there to the city. 24 minutes in from Constellation, just slow from Constellation to the bridge. Northwestern 32, Massey to town, slow from there. Southern 42 in from Monaco.
4: Order at freshbox.co.nz.
6: Blood and plasma donors are always precious, but in wintertime, with sickness about, NZ Blood needs even more donors to fill the gaps others leave. So, if you're well right now, we'd love you to step up and help us out. When you become a donor, you're giving a priceless gift to someone in need. You could help them get better and make yourself feel good. Just head to nzblood.co.nz and book in a time to donate today. Give blood, give plasma, save lives.
7: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
8: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
9: अब हमारा क्या होगा?
10: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
8: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
12: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
13: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all four weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
14: Get the Skinny!
15: Oh hey, if you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
16: Enroll, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smunko, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Birthday greetings.
17: Iska birthday bhai?
18: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
19: Happy birthday to you.
0: A very very happy birthday. Aaj 25th of August ko jitne bhi log apna birthday celebrate kar rahe hain, aapko hum wish kar rahe hain. Sabse pehle Ram Ram Vijay and Pooja, hope you both doing good. Today is Govind the chef's birthday. We all want to wish Govind bhai a wonderful birthday and praying for his good and wealth from Mata Rani. I think good and good health likhna chahte the, but inhone kaha ki he is just a humble person, always there for anything. Best wishes from his wife Lakshmi Di, granddaughter hai Janvi, beta hai Chetan, और बाकी भी परिवार वाले जो हैं बैक इन इंडिया, सभी की ओर से ढेर सारा प्यार एंड बेस्ट विशेस जो है ये आपको दे रहे हैं. नॉट फॉरगेटिंग योर फ्रेंड्स हियर इन न्यूजीलैंड. शशि विमल फ्रॉम मनुरेवा, इनकी ओर से मैसेज आया है. तो गोविंद जी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको हम जरूर विश कर रहे हैं आज आपके जन्मदिन के खास मौके पर. हमारी ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं.

0: true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
1: अठारह मिनट रह गए हैं 8 बजने में. द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM और रोवर पर. और आज का जो सेलिब्रिटी अलार्म है, मैंने 50% बोला था, 1% भी नहीं हुआ.
2: आई थिंक पीपल आर नॉट इन द मूड दीस डेज. या That's what I feel. But nevertheless, Gunjan ने सबसे पहले जवाब जो है ये दिया. इन्होंने कहा इमरान हाशमी महेश भट्ट के साथ एज अ गेस्ट गए थे उस टाइम पर. आपको ऐसा लग रहा है कि ये जवाब है. सोम ने कहा SS राजमौली. नीलेश दयाल ने कहा है राजकुमार राव. सोनल गुप्ता का भी मैसेज आया है और चरिशा ने भी अपना आंसर दिया है. तो इतना आपको बता दें कि अभी तक जितने भी आंसर्स आपने हमें दिए हैं सारे के सारे गलत हैं. जो मैसेजेस हमने आपको पढ़कर बताए हैं, गुंजन का, सोम का, नीलेश का, क्या आप इनकी आवाज पहचान पाएंगे या नहीं, एक बार फिर से आपको सुना रहे. सो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा.
3: देयर एक्टिंग टैलेंट एज व्हाट यू थिंक ऑफ देम, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, वरुण धवन, विकी कौशल, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना.
4: रणबीर
3: कपूर.
4: कपूर.
3: ओके.
4: विकी कौशल.
3: ओके.
4: रणवीर सिंह.
3: सिंह.
4: थ्री नेम्स,
3: राजकुमार राव, आयुष्मान एंड वरुण.
4: एग्जैक्टली इन दैट ऑर्डर.
2: तो ये जो आवाज़ हमने आपको सुनाई है, एक तो हमने आपको बता दिया करण जौहर की है, दूसरी आवाज़ किसकी है ये आपको अनुमान लगाना है. फाइनल 3 मिनट्स आपको दे रहे हैं. इफ़ यू थिंक यू नो द सेलिब्रिटी आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म के लिए, तो आप अपना आंसर BF लिखकर अपने नाम के साथ हमारे पास 5599 पर भेज सकते हैं.
1: चलिए देखें आज के 10% लोग भी अपना जवाब जो है ये सेलिब्रिटी अलार्म के लिए हमारे पास भेजते हैं या नहीं. अभी सिचुएशन हर घर का, हर फैमिली का अलग अलग होता है. आपने एक दिन कहा था ना कि आपने खाने में किस चीज में पुलाव मसाला डाल दिया.
2: चने में काला चना बना दी थी.
1: काले चने में पुलाव मसाला डाल दिया था. कभी ऐसा हुआ है कि नमक नहीं डाला खाने में?
2: हाँ, बहुत बार. दो बार भी नमक डाल दिया, ये भी हुआ है.
1: नमक की जगह शक्कर?
2: नहीं, वो कभी नहीं किया.
1: नमक की जगह शक्कर नहीं डाला. ऐसे ही एक फैमिली जो है, कपल बैठे थे डिनर करने के लिए एक दिन अपने घर पर. तो जैसे ही खाना शुरू किया, पति ने पत्नी से पूछा कि आज ये जो सब्जी है इसमें नमक डालना भूल गई थी, नमक क्यों नहीं डाला? तो पत्नी ने कहा कि क्या हुआ ना कि सब्जी थोड़ा जल गई थी.
2: ओके.
1: तो पति ने देखा बीवी की ओर कि ये क्या बोल रही है.
2: हाँ.
1: सब्जी जल गई थी. हाँ, तो उसने कहा नमक क्यों नहीं डाला. तो पत्नी ने नमक क्यों नहीं डाला
2: ये आप जानना चाहते हैं हमसे?
1: हाँ.
2: अच्छा, मुझे तो नहीं पता क्यों नहीं डाला, पर अगर आपको पता है तो आप बताइए.
1: एक्सप्रेशन से तो लग रहा है कि पता है.
2: नहीं, मुझे नहीं पता, सच में ऑनेस्टली नहीं पता.
1: अच्छा.
2: आई एम नॉट दैट गुड ऑफ एन एक्ट्रेस की अगर मैं एक्सप्रेशन कुछ और बोल रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है. आई हैव अ आंसर इन माई माइंड, पर आई एम नॉट श्योर वो सही है गलत. एक जवाब है मेरे दिमाग में.
1: ओके.
2: बट मुझे नहीं पता.
1: तो आप ऐसा करें, आप बताएं. जो लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप जवाब देने की कोशिश करें कि पत्नी ने सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला, क्या ऐसा हुआ.
2: तो आप हमें बता सकते हैं ना अपना आंसर, और देखते हैं किसके किसके पास इस सवाल का जवाब है. फिलहाल समय की ओर देखें तो इधर 14 मिनट बाकी हैं 8 बजने में. ठीक 8 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सनी आपने कहा है, नीति ने कहा है राम कपूर, ये आंसर्स भी गलत है. क्या है आज का सही जवाब हमारी सेलिब्रिटी अलार्म के लिए? लेट्स फाइंड आउट थोड़ी देर में.

0: the experts at Alloy Wheel Repair.
1: Fine with plenty of cloud, a high of 17. Couple of issues. Northern coming in, a crash just past Silverdale. Heavy at Silverdale. Slow Constellation to the bridge. 26 minutes in from Constellation, hour from Silverdale. The southwestern okay, but a crash on State Highway 20, Bipua Nui, heading to the airport before the lookout. Southern 42, Manukau to town, slow from Papakura. Northwestern 38 from Massey, heavy on and off from there.
0: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
2: Please use your imagination for the following ad.
3: If I won Powerball, I'd do some spending. Yep, I'd spend some time with... And we'd enjoy a whole lot of...
2: Imagine winning $20 million this Wednesday. Play in store or online.
4: A lot of injuries happen on the weekend. So if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
5: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
6: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
7: अब हमारा क्या होगा
8: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
6: तो क्या करें
9: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
10: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी डिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा कप से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
11: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
13: कुछ लोगों ने आज की सेलिब्रिटी को सही सही पहचाना तो कुछ लोगों ने फिर भी कुछ गलतियां की हमारे पास नीति का मैसेज आया था मोहित ने आंसर दिया और उसके अलावा आई थिंक चरिशा सोनल मोहित साथ में मोविन नहीं नीतिका इन सभी ने सही आंसर्स दिए हैं नाजनीन ने मैनिकाओ से मैसेज किया है कि जले हुए पर नमक नहीं डालते
14: अच्छा
13: ये आपके सवाल का जवाब
14: ओके
13: आर्ना ने कहा आज के सेलिब्रिटी अलार्म में सेलिब्रिटी है विजय देवरकोंडा मोविन ने कहा जलते पर नमक मत डाले सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन
14: आयरा ने भी अपना आंसर भेजा है आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म के लिए थैंक यू सो मच आर्ना अपना आंसर भेजने के लिए बाय द वे वी डिड नॉट इवन मेक 1% ऑफ
13: All good, it's okay, no complaints. But on the other hand, चलिए आज के हमारे celebrity जो रहे हैं celebrity alarm में इनके बारे में भी आपको बता देते हैं The correct answer is धनुष जितने लोगों ने हमारे पास ये जवाब भेजा था Yes, बड़े ही जाने माने actor हैं, singer हैं और कमाल के choreographer और director भी हैं In fact, he is a producer as well, कई फिल्में भी इन्होंने produce की है But धनुष जो कि multi-talented है आज ये रहे हमारे celebrity in celebrity alarm Don't forget, आपको और भी मौके जो मिलेंगे हमारे साथ इनाम जीतने के रक्षाबंधन का प्रमोशन भी जारी है अगले घंटे आपको बताएंगे क्या करना है रक्षाबंधन प्रमोशन में हिस्सा लेकर इनाम जीतने के लिए बट एक जरूरी बात जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटर

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज मौसम के लिए कहा जा रहा है कि पार्टली क्लाउडी डे रहेगा विद चांसेस ऑफ लिटिल बिट ऑफ शावर्स अराउंड मिड डे. 9.2 डिग्रीज टेम्परेचर है फिलहाल, हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड. बाद में ओवरनाइट टेम्परेचर 10 डिग्रीज रहेगा. सनसेट 5:56 PM पर होगा आज.
0: Breakfast show with Weejay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: आज की हमारी कहानी जो है इस ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, जहां पर एक ड्राइवर जो है ये ट्रेंड कर रहे हैं, जहां के ड्राइवर ट्रेंड कर रहे हैं
1: जी.
3: केरला के ये ड्राइवर हैं और इन्होंने सभी को एकदम शॉक्ड छोड़ दिया जब ये शख्स जो है इनकी गाड़ी जो है बीच रास्ते में रुक गई.
1: ओके.
3: और जबरदस्त ट्रैफिक जो है ये लग गई वहां पर. एक जंक्शन पर ये हुआ 19th ऑफ अगस्त को रश आवा के दौरान. लाल गाड़ी.
1: अच्छा.
3: लाल गाड़ी जो है ये जा रही थी एंड ऑल ऑफ अ सडन इट स्टॉप्ड इन एन एक्टिव लेन, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, सिग्निफिकेंट ट्रैफिक जैम हो गया एंड मोटरिस्ट बाकी जो चालक थे वो स्ट्रगल कर रहे थे टू गेट पास दिस कार. फिर किसी ने जाकर उनको चेक किया कि क्या हुआ इनकी गाड़ी में. और इसका जो वीडियो एक्सपर्ट आया है वो जब आप देखेंगे या सुनेंगे.
1: क्या सो रहा था क्या वो?
3: हाँ.
1: सीरियसली?
3: बीच रास्ते में सो गया.
1: गाड़ी मतलब पार्क कर सो गया.
3: हाँ.
1: और पीपल थॉट कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, दैट्स व्हाई दे स्टक इन द ट्रैफिक बिकॉज़ ऑफ
3: हिम. उसके बाद लोग गाड़ी हिला कर उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं. बंदा नहीं उठा.
1: देन
3: नहीं उठा देन क्या, लोग जमा हो गए वहां पर कि क्या हो, आई डोंट नो उसके बाद क्या होगा. किसी ना किसी तरीके से तो उठाया होगा उनको, जगाया होगा. और तब तक पुलिस भी वहां पर आ गई थी. और बंदे का नाम, गाड़ी के ड्राइवर का नाम जॉनी था. पुलिस ने जॉनी और उनकी गाड़ी दोनों को कस्टडी में ले लिया. केस रजिस्टर किया गया. एंड द थिंग जो द रॉन्ग पार्ट जो इस स्टोरी में थी, दैट ही वाज ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल.
1: दैट्स व्हाई ही गॉट in a situation जहाँ पे वो सो गया. But imagine यार, such a irresponsible behavior. एक तो आप traffic jam करा रहे वो तो अलग, but drinking and driving, because आप हो मतलब एक अलग vibe में, नहीं एक अलग vibe में, but you putting so many other people's life at risk ना. It's like really irresponsible. And I hope कि इनके ऊपर कुछ strict actions लिए गए हों, सिर्फ वैसे ही नहीं छोड़ दिया गया warning देकर, because it was I was laughing only till the fact that I realized ki so
3: I didn't want to reveal that part, lekin story incomplete ho jati hai ya galat ho jati
1: hai. Exactly, the exact reason was something else na,
3: but trends to kar raha hai banda.
1: Us time tak I was having fun, I was laughing because I thought ki ye deliberately so gaye hai, ya fir kabhi kabhi log thak jate hain, they take a break as well na, but inka to pura situation hi alag tha.
3: Aap kisi ko janti hai jo agar once so gaya
1: फिर नहीं उठ सकते?
3: नहीं उठेंगे obviously, फिर नहीं उठ सकते.
1: मतलब उनको जितना भी आप जगाने की कोशिश करो नहीं जागेंगे,
3: बहुत मुश्किल होता है.
1: There was a time मैं ऐसी थी,
3: जब से बड़ी हो गई तो ठीक
1: नहीं हूँ ऐसी मैं. पर एक समय था जब मैं ऐसी थी, मैं ऐसी हुआ करती थी. अब नहीं हूँ, बट अपने लिए मैं कह सकती हूँ.
3: आप किसी को जानते हैं अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में
1: जिनको सोते पे जगाना बड़ा मुश्किल है?
3: हाँ, very difficult.
1: Next
3: I know someone. हाँ. आप शायद थोड़े सुधर गए होंगे.
1: कौन?
3: एक शख्स है. वो सो जाते हैं. उनकी बीवी नहीं जगा पाती उनको.
1: अच्छा.
3: हाँ. बीवी का खौफ नहीं उसको,
1: तो होगा ही नहीं इसलिए. Anyways, 7 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर. This is the Rush Hour on the Breakfast Show with Vijay and Pooja. Reminding you all कि हमारा रक्षाबंधन प्रमोशन जारी है भाई. अगर अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज नहीं विजिट किया है, do visit it. हम 104.2 FM, that's the Facebook page. आप जाएंगे वहाँ पर, featured folder में आपको post दिखेगा, a lifetime in one object. और बस उसी post के comment section में जाकर आपको किसी एक object की photo जो है ये डालनी है, जो object आपके आपके भाई या बहन के साथ आपके लिए एक बड़ी स्पेशल मेमोरी होल्ड करती हो, उसकी एक फोटो ले और उसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आप उस फोटो को डालें और 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करें कि ये चीज़ आपके लिए इतनी स्पेशल क्यों है, ये ऑब्जेक्ट आपके लिए इतनी स्पेशल क्यों है. एंड वंस यू डू दैट, मेक श्योर टू टैग योर ब्रदर और योर सिस्टर. वंस आपने ये किया तो बदले में आप एक ड्रो का हिस्सा बनेंगे जहां पर दिस रक्षाबंधन अपॉर्चुनिटी है आपके पास टू विन $300 कैश. ये $300 आपका हो सकता है, पर शर्ते आप हमारे रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन में जब पार्ट ले रहे हैं तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस आप मीट कर रहे हैं. मतलब your posting or uploading a photo of a meaningful object जो आपके और आपके भाई या बहन के बीच बहुत ही value hold करता हो. ऐसे ज़रूरी नहीं कि expensive object हो, कोई simple चीज़ भी हो सकती है. फिर 2-3 line में उस object के related memory share करें और अपने sibling को tag करें. और once you do all these things, you'll be part of this draw. और रक्षाबंधन के मौके पर आपके पास $300 जीतने का मौका. Remember, draw इसी Friday को हो जाएगा. आज Tuesday है, मतलब ज्यादा time नहीं है आपके पास to take part in this competition and get a chance to win $300 cash. Plus, हमारा on-air competition, जहां पर रक्षाबंधन के खास मौके पर आप अपने siblings का performance review करते हुए जीत सकते हैं your share of $500, क्योंकि 2 lucky winners $250 each जीतेंगे. इसके लिए भी opportunity आपको हम जरूर देंगे. और सुनते रहिएगा हमारा हम बोर्डिंग कॉल, एनी टाइम प्ले हो सकता है. और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और अगर आपने इस घंटे बोर्डिंग कॉल सुन लिया, तो याद रहे कि आपको बोर्डिंग कॉल सुनने के बाद बोर्ड भी करना होगा, जिसके लिए यू हैव टू विजिट आवर रोवर ऐप और वहां पर एंटर कोड नाउ जहां पर लिखा होगा वहां पर आपको जाकर एंटर करना होगा, मतलब टाइप करना होगा बोर्ड नाउ, ये दो वर्ड्स, और टाइप करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा. दैट्स हाउ यू विल बी पार्ट ऑफ दिस ड्रॉ, जहां पर आप जीत सकते हैं 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनवातु विद सोलमनी एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी थैंक्स टू सोलमनी एयरलाइंस, फ्लाइंग 4 टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनवातु. flysolomons.com विजिट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए. इन टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए विजिट hum.rova.nz.

0: with Vijay and Pooja.
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
3: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
1: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
5: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
6: Owning a rental shouldn't feel stressful. Nesto makes property management simple with proactive support, better communication, and evening and weekend viewings. Visit nesto.co.nz. Nesto Property Management. Comfortably nested.
7: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
9: What's your take?
10: व्हाट्स योर टेक में आपको पार्टिसिपेट करने का अब हम मौका देने जा रहे हैं। आज जो टॉपिक है इसके बारे में हमने पहले भी शायद किसी न किसी तरीके से बातें की होंगी, बट आज हम आपसे जानना चाहेंगे। कुछ लोगों का शायद मानना है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और कभी कभी नेसेसरी भी है टू कीप फीलिंग्स टू योरसेल्फ। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे हाउ ओके इज इट नॉट टू शेयर व्हाट यू फील। डिफिकल्ट क्वेश्चन,
11: वेरी डिफिकल्ट। आई वुड से आई थिंक द सेफेस्ट थिंग टू से इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वुड बी कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है।
10: नॉट रियली श्योर, बट
11: ये मेरे हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर सकता है। अगर आपको पता है कि आपकी फीलिंग्स आप शेयर कर रहे हो एंड कोई नहीं समझेगा, यू नो, सामने कोई नहीं अंडरस्टैंड करेगा, इनफैक्ट आपको और गिल्टी फील कराया जाएगा या आपको ब्लेम किया जाएगा या सारे सिचुएशन के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, एंड यू नो इट्स नॉट गोना डू एनी डिफरेंस, इंस्टेड आपके लिए और प्रेशर बढ़ जाएगा मेंटली, तो इट्स बेटर टू कीप इट टू योरसेल्फ। इट्स नॉट
10: यू, द थिंग इज कि यू आर मेकिंग दैट अजम्पशन।
11: हां, बट हो सकता है
10: मे बी फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस या फिर जो कुछ भी हो, बट
11: एक्सपीरियंसेस के हिसाब से या ये हो सकता है ना।
10: बट द थिंग इज कि जब तक आप रिवील नहीं करोगे तब तक तो पता नहीं चलेगा कि व्हाट एक्चुअली द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज फीलिंग, वो किस नजरिए से इसको देख रहा है. और अगर उनको आपको जज ही करना होगा तो हाउ अबाउट जस्ट वन मोर टाइम
11: एक बार और जज कर ले.
10: हाँ, लेट इट बी, एटलीस्ट आई हैव स्पोकन माय माइंड एंड हार्ट. मैंने अपने दिल में अपने दिमाग में जो बात थी वो कह दी है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जेम्स ग्रॉस हैं. आफ्टर डिकेड्स ऑफ रिसर्च, नॉट ओनली हिम, बहुत सारी बातें इसमें उन्होंने रिसर्च पब्लिश की जिसमें डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि क्रॉनिक इमोशनल सप्रेशन जो है ये हाई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ये ट्रिगर करता है. अगर आप अपने इमोशंस को दबाते हैं तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपका बढ़ता है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपके कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, जबकि आपका ऑथेंटिक कनेक्शन विद अदर्स जो है ये ड्रॉप हो जाता है. या नॉट ओनली ये आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है बट द वे यू कनेक्ट विद अदर्स
11: उससे भी हेल्प होती है.
10: उससे हेल्प नहीं होता,
11: आपकी हेल्प होती है ना.
10: नहीं नहीं,
11: देन
10: रिसर्च में पाया गया है कि अगर अपने यू नो फीलिंग्स को आप सप्रेस करते हैं, सप्रेस करते दबाते हैं, तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, कोर्टिसोल लेवल स्ट्रेस बेसिकली बढ़ेगा.
11: राइट,
10: एक और ये होगा, दूसरी तरफ यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट ऑथेंटिकली विद पीपल,
11: बाकी के साथ, बिकॉज़ देयर इज समथिंग यू फील बट यू आर नॉट टेलिंग देम, सो दैट्स व्हाई आप वो जेन्युइनली ऑथेंटिकली नहीं कर रहे हैं.
10: तो अभी बातें तो बहुत सारी हैं इसके बारे में जो हम अपनी ओर से बता सकते हैं, लेकिन आपकी राय जानना चाहेंगे. हाउ ओके इज इट टू कीप योर फीलिंग्स टू योरसेल्फ, क्योंकि हमें आज पोल से भी बातें करनी है.
11: एनजेड पीएमआई के पोल हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ जरूरी डिटेल्स शेयर करने के लिए. अगर आप एक प्रॉपर्टी ओनर हैं तो प्रोबेबली कुछ डिटेल्स जो आपके काफी काम आ सकता है इन मेकिंग डिसीजंस फॉर योर बेटर फ्यूचर. बट ऑन द अदर हैंड आज का हमारा व्हाट्स योर टेक टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और हम दोनों तो अपनी राय इस मामले में शेयर कर ही सकते हैं क्योंकि हम एक सर्टेन टाइम अलोकेट करते हैं इस सेगमेंट के लिए, और जब तक कि वो टाइम पूरा ना हो जाए वी कैन शेयर things. But then this segment is not just about what we think. ये segment है क्या आपका thinking है, क्या आपकी राय है इस मामले में. 0800-004-866 पर आप call कर सकते हैं और आज के topic के लिए अपनी राय share कर सकते हैं. And if you can't call तो आप हमारे पास text कर सकते हैं 5599 हमारा text platform number है. जो भी messages हम आपसे receive करेंगे वो messages हम यहाँ पर सभी को पढ़कर बताएंगे.
10: एक simple चीज मैं आपको बताऊं, हम अपने काम को justify नहीं कर रहे हैं, but अभी आप अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो we spoke about Dr. James Gross, Stanford University, जिन्होंने research जो है ये publish की. मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये टॉपिक्स, इस तरह के टॉपिक्स जब हम लेकर आते हैं वी गो अ लॉन्ग वे टू स्टडी टू रिसर्च एंड टू फाइंड आउट इन चीज़ों के बारे में पता लगा कर आपके लिए लेकर आते हैं. एंड इफ आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं देन वो सारा का सारा रिसर्च, वो सारी की सारी मेहनत जो है पानी में चली जाती है.
11: राइट, कोशिश हम तो कर रहे हैं कि आपको इनकरेज कर सके टू स्पीक योर माइंड. और देखते हैं परविंदर ने कॉल किया है सुबह सुबह. गुड मॉर्निंग परविंदर, कैसी हो आप?
9: गुड मॉर्निंग, अच्छी
11: हूं. और बताइए आज के टॉपिक ऑफ द डे के बारे में आपकी राय क्या है, किस हद तक अपनी फीलिंग्स छुपानी चाहिए?
9: नहीं छुपानी चाहिए, ये सही बात है कि इन सब चीजों से कॉर्टिसोल लेवल बहुत अफेक्ट करता है. पर मेरे साथ एक ये भी होता है जब मैं ज्यादा अपनी फीलिंग्स बताती हूँ ना, फीलिंग्स मतलब हाउ आई एम फीलिंग, तो कभी कभी सामने वाला ऑफेंड भी हो जाता है. जिससे मुझे और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है.
10: मतलब उससे आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है.
9: पता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाला सही नहीं होता है. तो जब हम बता देते हैं कि ये तो बात सही नहीं है तो आई डोंट एग्री,
10: बुरा मान जाते हैं वो.
9: बुरा मान जाते हैं फिर देन यू गेट इन ट्रबल.
10: लेकिन आपको
9: मेरे साथ तो बहुत
10: आपको परविंदर इस बात की सहूलियत नहीं होती या आप अच्छा नहीं फील करती कि जो आपको लगा या जो आपने फील किया कि वो गलत है और आपने उनको बताया उसके बाद आप अच्छा फील कर रहे हैं? डोंट यू फील गुड अबाउट दैट?
9: हाँ वो तो मैं अच्छा फील करती हूँ बट बाद में जो उसके रेपरकशन होते हैं जैसे जैसे वर्क प्लेस में अगर आपका बॉस कुछ कह रहा है और वो सही नहीं है और आप उसको बोल दो कि नो आई एम नॉट डूइंग इट, ये सही नहीं है ना, फिर उसके रेपरकशन के मुझे कैसे ना बोला,
11: कहीं ना कहीं
9: फिर और हाँ मतलब उस टाइम तो यू फील कि आपने सही चीज की है सामने अगर मतलब हम चुप करके सुन ले, सामने वाला भी तो चुप कर सकता है ना अगर वो बात गलत है तो हम भी व्हाई वी हैव टू एडजस्ट ऑल द टाइम, सुनने वाला क्यों एडजस्ट करे ना हमेशा,
10: बोलने वाला क्यों नहीं कर सकता, इंटरेस्टिंग पॉइंट,
9: बोलने वाला
11: क्यों। थैंक यू परविंदर, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए। अभी क्या है, अनफॉर्चुनेटली जैसे कि हमने कहा था कि एक टाइम आएगा हमारे पास टाइम नहीं रहेगा टू टेक कॉल्स एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड एग्जैक्टली। सो थोड़ी देर बाद विल टॉक टू पॉल फ्रॉम NZPMI। पर अगर आज के टॉपिक ऑफ द डे के लिए आपके पास कोई भी राय है, पॉइंट है शेयर करने के लिए, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं अब 5599 पर।
12: मैं लाऊं अपना A game।
13: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अभी 28 मिनट रह गए हैं अब 9 बजने में। हमने कहा था कि आज हमारी बातें एक बार फिर होंगी एनजेड एफपीवाई के पोल के साथ। पोल, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो।
1: गुड मॉर्निंग विजय, हाउ आर यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर ऑडियंसेस आल्सो।
0: थैंक यू सो मच, हम तो बहुत बढ़िया हैं। अभी स्ट्रेट इनटू द थिक ऑफ थिंग्स पोल, आपसे हम जानना चाहेंगे अबाउट अ फ्यू थिंग्स। सबसे पहले कितने यू नो मेनी पीपल हैव अभी के टाइम पर उनका जो कंसेंट एप्लीकेशन या डेवलपमेंट्स जो है ये चक पड़े होते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक और उनको समझ में नहीं आता है कि कब होगा कब होगा कब होगा। कैसे आप पर्सनली वैल्यू एड करते हैं एंड हेल्प move these projects forward?
1: Thank you, Vijay. I think first thing first would be that we all doing these projects for a financial reason. This may we look forward for a profitability. Or at some point when somebody gets stuck so badly ki uske paise kharch ho rahe hain but profitability is just getting compromised, that's the time I think they become completely, you know, stuck with what to do. And I think that's when if you wanna come out to me, first thing first I will let you know is that yahan se aage badhne ka fayda hai ki yahan pe rukne ka fayda hai ki yahan pe isko theek karne ka fayda hai, like which way we gonna make this right, because I don't want to be another consultant who is just charging you more money or another contractor who is charging you more money to fix your things. You know, so keeping that financial, and that's a very blunt answer I'm giving, that making that financial feasibility is on top of the priority line. We will make sure that we are fixing what needs to be fixed in the least possible cost or no cost, put it this way.
0: Okay. Paul, हमें पता है कि आप एक former army officer हैं. Do you think your army ethics still play a role in what you do?
1: to a lot of extent, yes. That's where I was coming from. I don't like to just start charging money by my hourly rate. अगर हम लोग मिशन या सक्सेस नहीं हासिल कर रहे तो फिर पैसे भी नहीं बनते सर।
0: ओके,
1: इट्स अ बिग कॉल बट दिस इज हाउ आई बिलीव।
0: कैसे NZPMI एक्चुअली डज वर्क विद द प्रॉपर्टी ओनर? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और मैं उसको डेवलप करना चाहता हूँ, तो आप लोग कैसे काम करते हैं एक प्रॉपर्टी ओनर के साथ?
1: थैंक यू विजय, दिस क्वेश्चन एक्चुअली हैज बीन आस्क्ड बाय अ फ्यू पीपल ऑलरेडी ऑन अ फोन कॉल टू मी। The quick answer would be is that we'll try and run a very high level feasibility. We have already started giving assessment reports out to a lot of people who have approached us. And that assessment report essentially tells them ki aapki site kaisi hai, uspe kitne ghar high level par abhi bata sakte hain, ban sakte hain, aur kitne paise banenge, kitna mortgage, what is going on. And once we have achieved that high level feasibility, can take 1 to 2 weeks, sometimes 3 weeks, then we come out with the funding straight away ki ye aap fund karna chahenge ki hum fund kare. अगर आप फंड करना चाहेंगे तो पार्टली यू कैन फंड और कंप्लीटली यू कैन फंड, अगर हम फंड करना चाहेंगे तो दिस इज हाउ वी विल गेट पेड बैक काइंड ऑफ थिंग। सो वी मेक अ वेरी क्लियर कोलैबोरेशन लाइक अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद आवर लैंड ओनर्स।
0: ओके, सो आई मीन सुनने के बाद आई हैव अ रीजन व्हाई आई शुड पार्टनर विद NZPMI, लेकिन आप खुद बताना चाहेंगे कि क्यों एक जमीन मालिक को कंसीडर करना चाहिए टू पार्टनर विद NZPMI इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मैनेज एंड फंड द डेवलपमेंट अलोन। कोई सोच रहा होगा कि मैं भाई यहाँ 2 मंजिली इमारत बना दूंगा, लेकिन खुद करने में और NZPMI के साथ करने में फर्क होता है, एंड क्यों किसी को पार्टनर करना चाहिए आपके साथ?
1: Thank you, Vijay. There are two big things I'll say here. Agar to aapne pehle you have done developments in the past, then there is okay, you can still consider what you just said. But if you haven't done something like this in the past, then partnering with us, first thing first would be ki aapka profitability ya financial goal jo hai aur jo hamara financial goal hai, they become aligned. We both want to come out of that development by making some money and not really getting into a point jahan pe either council is taking us or contractor is taking us or any of those, you know, risks are not mitigated. So partnering essentially looks after aapke paise nahi lag rahe if you are not funding your project, then you're clearly only wanting to make sure that by the project should end it in time and it should leave me my money and I shouldn't get into any problems, and those are my goals too, those are exactly what our goals too. So when we both partner and have same goals, the jobs become much more easier and quicker, sir.
0: ओके, तो आपकी बात सुनकर डेफिनेटली कोई ना कोई कहीं ना कहीं इंस्पायर होगा कि नाउ दिस साउंड्स लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी फॉर माय फैमिली. तो वो सोच रहा है कि आप पोल से बातें कैसे करें हम.
1: Sure, sir. 0800-4-NZPMI, Vijay ji, and www.nzpmi.co.nz. I'm usually accessible directly behind the calls and on the, you know, website inquiries also. So that would be the best way, I suggest.
0: Paul, आज का conversation तो बहुत ही interesting रहा. Thank you so much for your time. And आगे चलकर आपसे और भी बातें हम जरूर करेंगे.
1: थैंक यू विजय जी, नाइस मीटिंग यू, नाइस टॉकिंग टू यू.
0: थैंक यू सो मच. तो ये थे NZPMI से पोल. आपने अगर ध्यान से सुना होगा, क्या पता भाई आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी इज जस्ट सिटिंग देयर वेटिंग. आप पोल से बातें करें एंड मे बी थिंग्स कैन वर्क आउट फॉर यू.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: चुप हो जाओ पापी, चुप हो जाओ. Accurate traffic.
4: Switch to AMI car insurance.
5: Staying fine today, some cloud, high of 17 degrees. Quite heavy on the northern motorway at Silverdale. The crash just past the off-ramp has been slowing you for a while. Heavy patches as well from Constellation. Hour Silverdale to town, half an hour from Constellation. Northwestern 44 from Massey, we're heavy on and off from there. Southern, heavy from East Tāmaki, 50 minutes Manukau to town. And a crash on Puanui heading to the airport before the lookout.
4: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
6: It's business month at Warehouse Stationery with big deals on business essentials like 20% off lightweight whiteboards and pinboards, and buy one get one half price on WS whiteboard markers. Don't miss big deals for your business at Warehouse Stationery. Conditions apply.
7: Score more Smeg with Smeg bonus stickers at New World North Island. Get Nature's Fresh Muffin Splits 6-pack, $3.99 each, or Cadbury and More Chocolate Blocks, $6.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
8: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
9: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है. कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilyservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
3: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
4: Accurate traffic.
5: Got an unreliable outboard?
6: A high of 17, mainly fine today. A crash heading to the airport on 20B Puanui Road. It's before the lookout, slowing you big time there. Southwestern, quite heavy northbound up to Puanui too. Southern, 44 minutes, Manukau to town. Slow from Manukau, heavy from Otahuhu. Northwestern, 35 from Massey. Slow from Te Aratu, heavy from the Causeway. Northern, 28 in from Constellation. Heavy patches from there and at Silverdale.
5: Upgrade now with 0% finance on selected Yamaha outboards. TC's, fees and credit criteria apply.
7: Professional finance. Ninjas है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
8: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
7: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL। T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
9: At Bunnings, give Dad the gift of the whole warehouse this Father's Day. Whatever type of dad he is, from tool dad to barbecue dad, he'll find something he really wants with our wide range. Gift cards built for Dad at Bunnings. Available in-store and online. Bunnings Warehouse.
10: When winter comes, colds and flu follow, and NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So if you're well enough, please book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
13: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
14: Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
15: तो हमने आपसे कहा था ना कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, हमारे पास या हमारे साथ शामिल होकर विजेता बनने की, और ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आपको हम आज दे रहे हैं व्हेन इट कम्स टू फादर्स डे कंपटीशन, डैड्स रिवर्स ग्रिल। डैड्स को इनवाइट कर रहे हैं, लिसनिंग टू अस राइट नाउ, गिव अस अ कॉल 0800-004-866 पर। अगर आप एक पिता हैं तो ये कॉम्पिटिशन आपके लिए, जिसमें भाग लेकर आप जीत सकते हैं $500 कैश। अगर आपने इससे पहले पार्टिसिपेट किया है तो एडवाइजेबल यही होगा, यू ऑलरेडी पार्ट ऑफ द रोल, लेट्स गिव समवन एल्स अ चांस। बट इफ यू हैवंट पार्टिसिपेटेड इन दिस, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। रिमेंबर 0800-004-866 पर आप कॉल कर सकते हैं टू टेक पार्ट एंड बी अ विनर ऑफ $500 जो आपका हो सकता है। What we'll do is, आपसे हम पूछेंगे कुछ सवाल मॉडर्न डे स्लैंग के बारे में, पॉप कल्चर के बारे में या टेक के बारे में, एंड इफ यू गिव इट द राइट आंसर तो आप ड्रो का हिस्सा बन सकते हैं।
16: तो आइए, आज सबसे पहले आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग।
17: गुड मॉर्निंग विजय जी एंड पूजा जी, कैसे हो?
15: बढ़िया जी, आप कैसे हो?
17: मैं बहुत बढ़िया जी, फैंटास्टिक, थैंक यू।
15: किन से बात हो रही है?
17: मैं केवल सिंह।
15: केवल जी क्या बात है, दोनों ही इस कंपटीशन में आप पार्ट ले रहे हैं। आई लव द स्पिरिट बेट, फादर्स डे हो या बेट रक्षा बंधन।
17: मैं पार्ट तो जरूर लेता हूँ हम में। पहले मैं सैंडी और उसवे के साथ पार्ट लेता था पर कभी जीता नहीं मैं।
15: अच्छा तो अब आप
17: तो फिर मैंने अभी मैं अपना लक चेंज कर रहा हूँ। मैं अभी आप लोगों के साथ देखता हूँ कि मैं जीता।
15: चलो देखते हैं, कम से कम आप पार्ट ले रहे हैं, दैट्स व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो केवल आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन टुडे?
17: हाँ जी।
16: आज का जो क्वेश्चन है, आप हमें ये बताइए कि व्हाट डज एयर ड्रॉप डू ऑन एन आईफोन?
15: उई
17: एयर ड्रॉप से हम अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं एक फोन से दूसरे फोन में ना, लाइक सॉन्ग्स हो गए, वीडियो हो गए, फोटोज हो गए, ऐसा।
16: अच्छा आपके पास मीडिया डाटा, आपके पास आईफोन है?
17: मेरे पास था।
16: अच्छा था।
15: हाँ, स्विच कर लिया इन्होंने।
16: ओके तो प्लीज आप बड़ी रिस्पेक्ट के साथ केवल जी का नाम ड्रो में शामिल कर दीजिए।
15: मैंने पहले इनका नाम लिख दिया था, आई न्यू ही कुड डू इट,
16: क्योंकि एयर ड्रॉप,
17: थैंक यू,
16: एयर ड्रॉप वायरलेसली शेयर्स फोटोज वीडियोस और फाइल्स विद नियरबाय एप्पल डिवाइसेस।
15: दैट इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच केवल। डेफिनेटली आप ड्रो का हिस्सा बन चुके हैं। ऑल द वेरी बेस्ट स्ट्रेटेजी जो आपने चेंज की अपनी, आई होप इट वर्क्स। थैंक यू, बाय
17: बाय बाय।
15: तो केवल जी का नाम गया ड्रो में, पर क्या आपने ध्यान से सुना बोर्डिंग कॉल प्ले हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपने नहीं सुना है, आई होप यू आर लिसनिंग केयरफुली।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: 18 carats or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry! Visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
1: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
2: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. There's support for a bill to ban under 16s from social media. It would require platforms like Instagram and TikTok to take reasonable steps to check ages. Steve McCracken from Before 16 says it's a huge step forward.
4: It does meet the majority of the needs that we've been campaigning for a while now, and it also replicates what else has been happening in other parts of the world.
3: And the Opportunity Party is tentatively backing the new online safety bill. If elected, it says it would support the bill at first reading so it can be properly tested at select committee level. The final preparations are underway for Auckland City Rail Link. Emergency services and rail staff will test their response to a simulated train fire this week. Ron Devlin from Fire and Emergency says they are well prepared.
5: When we have high-rise fires, we have to triage equipment upstairs. The idea is being able to get our equipment down and triage it from platforms to platforms.
3: The war of words is ramping up over new tariffs the US is imposing on Canada. They've come into effect after a trade deal fell through at the 11th hour. Ontario Premier Doug Ford told CTV News they will not be bullied by Donald Trump.
6: Well, he can kiss my ass as far as I'm concerned. We're going to go at him full steam.
3: To sport, Springboks captain Sayo Kalisi has a chance to return from injury in Sunday's second test against the All Blacks in Cape Town. Coach Razzie Erasmus has bracketed him on the open side flank.
7: He has got some strengths. One of them is the attacking breakdown. He's really good at sorting that out fast. It was an area which we struggled with.
3: Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. And the famous Diego Maradona Hand of God ball from the 1986 World Cup has sold at auction for $5.7 million.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
8: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: आज सुपर सिटी ऑकलैंड में मौसम जो है थोड़ा क्लाउडी रहने वाला है. लिटिल बिट ऑफ रेन अराउंड मिड डे आज होगा ऐसा बताया गया है. सनसेट 5:56 पीएम पर होगा. टेम्परेचर हैज गोन अप टू 13.1 डिग्रीज एज ऑफ नाउ. हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड है. बाद में चलकर ओवरनाइट 10 डिग्रीज रहेगा.
2: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
10: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको. इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरी डे luxury living.
11: What's going on? Kya bakte ho?
12: Are kehna kya chahte ho?
9: 4 मिनट हो रहे हैं 9:00. गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आपके लिए लेकर आ रही है द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और ये है व्हाट्स गोइंग ऑन, जिसकी शुरुआत क्या बकते हो इसके साथ हम कर रहे हैं. आज की क्या बकते हो स्टोरी, आई फाउंड इट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई नेवर थॉट कि ये चीज़ जो है सामने आ सकती है. एंड ऐसा कुछ हिलेरियस मौका जो है इसको मिलेगा, आई मीन इस स्टोरी को. अपेरेंटली वीरदास के बारे में पता है आपको, एक्टर वीरदास?
13: हाँ, उनके बारे में पता है. अच्छे एक्टर,
9: ये स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं.
13: हाँ.
9: और एक्टर भी हैं और राइटर और डायरेक्टर भी बन चुके हैं. हैप्पी पटेल जो फिल्म है ये इन्होंने डायरेक्ट की थी. तो अपेरेंटली वीरदास जो है इन्होंने कुछ घंटों पहले अपने सोशल मीडिया पर जाकर एक फोटो पोस्ट की और फोटो पर इन्होंने लिखा, दिस लेडी डीएम्स मी एवरी डे यूजिंग मी एज अ टू डू लिस्ट. आई होप यू फाउंड योर नाड़े वाला मैडम, ये इन्होंने कहा. और फिर ये जो इनके डीएम्स में, इंस्टा के डीएम्स में, फेसबुक के डीएम्स, नॉट श्योर बट कहीं का तो है, जहाँ पर इन्होंने एक स्क्रीनशॉट ली. और स्क्रीनशॉट ली तो एक अकाउंट है जिसका नाम तो खैर इन्होंने रिवील नहीं किया, पर वो अकाउंट इनको डीएम करते हैं अपनी टू डू लिस्ट, इनको क्या करना है, क्या ख़रीदना है, जैसे किनवा लेना है, जीरा मेथी लेना है, अजवाइन लेना है, स्कूटी में पेट्रोल डलवाना है, अपनी बिल्ली के लिए खाना लेना है और छोटी वाली सुई लेनी है, ये सारी चीजें इन्होंने लिख लिख कर मतलब कहीं पर सेव करने के बजाय इनको ये डीएम कर रही हैं। और इन्होंने कहा फाइन, टीवी रिमोट, फोल्ड, लॉन्ड्री, ये सारे काम काज वाले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कि इनको याद रखना है ना कि ये चीजें करनी, वो भी इनको डीएम कर रही है। तो वीरदास ने उसकी एक फोटो ली, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला और ये रिवील किया। नाउ व्हाट आई फाउंड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वाज कि कुछ लोगों ने इसे काफी हिलेरियस पाया, तो कुछ लोगों ने ये तक रिवील किया कि ये एक किस्म का ट्रेंड है जो लोग आजकल कर रहे हैं।
13: ये कैसा ट्रेंड?
9: बहुत से लोग
13: अटेंशन,
9: भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका सोशल मीडिया भी इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको डीएम कर रहे हैं टू रिलीज अपना, आई डोंट नो, अटेंशन के लिए कि सच में उन वो, आई मीन इफ आई वांट टू, इफ आई हैव गॉट अ शॉपिंग लिस्ट और अ टू डू लिस्ट, तो मैं क्या करती हूँ, देयर इज अ ऐप आई यूज, उसके पास एक नोट्स वाला ऐप है, मैं उसमें जाके सारे नोट्स में लिख लेती हूँ कि मेरे को ये खरीदना है या ये काम करना है या ये चीजें हैं जो मेरे को जरूरी है। I wouldn't go and look for a celebrity's account and DM them the list. But apparently, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ये बात सामने आई। I mean, this is what the comment section was saying of this particular post. वीरदास ने जो किया।
13: I don't know how do these trends come up in this world.
9: I have no idea. But कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि यार बहुत अच्छा idea है to get वीरदास attention. क्योंकि उन्होंने ये किया और इनका attention गया उस पर और उन्होंने देखो ना एक post ही डाल दिया। तो कहीं ना कहीं इनको अटेंशन भी मिल गया, शायद हो सकता है वो अटेंशन के लिए कर रहे थे, जो कोई भी था
13: या जो चाहिए था।
9: आपने कभी किसी सेलिब्रिटी को डीएम किया बाय द वे?
13: किसी सेलिब्रिटी को? नहीं, आई डोंट थिंक सो।
9: मैंने तो किया है।
13: किसको भाई?
9: मैंने पंचायत जब देखी थी तो पंचायत में जो कैरेक्टर नहीं है विनोद,
13: मुझे नहीं पता। हाँ,
9: आपको विनोद के बारे में नहीं पता, आपने पंचायत ही नहीं देखी ना, दैट्स व्हाई।
13: नहीं नहीं, मुझे फोटो नहीं देखी।
9: नहीं, मैं आपको फोटो नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। तो दोज ऑफ यू हु हैव सीन पंचायत, आपको पता होगा कि पंचायत में वो विनोद का कैरेक्टर कौन से एक्टर जो ये प्ले करते हैं, तो मैंने उनको डीएम किया था एंड आई वॉज सरप्राइज जब उन्होंने मेरे को रिप्लाई भी किया था। जी, उन्होंने रिप्लाई किया, वेरी हम्बल गाय ही सीम्ड लाइक, और उन्होंने रिप्लाई किया और फिर मैंने उनसे कुछ ज़रूरी बातें की थी जिसका उन्होंने जवाब दिया था। अशोक पाठक नाम है उनका, और उन्होंने मेरे मैसेजेस को लाइक भी किया था जो मैंने उनको डीएम किया था, मैंने उनको लिखा था।
13: पता नहीं उन्होंने किया था या उनकी टीम को होगी कोई।
9: किया तो उन्होंने ही था, क्योंकि उन्होंने फिर बाद में चलकर अपनी टीम का नंबर दिया था कि आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर थिंग्स। सो मैंने उनको डीएम किया था, एनी रिप्लाइड, दैट्स व्हाट आई सेड, आई रियली अप्रिशिएटेड द फैक्ट, क्योंकि See, the people who know him, they know he is not a छोटा मोटा कलाकार। उन्होंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया एंड ही गॉट अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, बहुत बड़े बन गए वो, लोग उनको पसंद भी करते हैं। और बाद में चलकर इफ यू, इवन इफ आई एम सिटिंग इन अ कंट्री लाइक न्यूजीलैंड, जिसके बारे में शायद उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई एक कंट्री भी है, यहाँ पे बैठे बैठे मैं उनको डीएम कर रही हूँ। अभी शायद उन्होंने नहीं भी किया बट उनके अकाउंट से मेरे पास रिप्लाई आया, सो आई थिंक इट्स लाइक अ बिग डील फॉर मी बिकॉज आई अप्रिशिएटेड हिज वर्क, मुझे बहुत पसंद आए थे उनके वो और उनका कैरेक्टर, तो मैंने उनको डीएम किया था। और इनफैक्ट जो पंचायत में ही जो कैरेक्टर प्ले करते हैं प्रहलाद चा का कैरेक्टर, प्रहलाद चाचा का कैरेक्टर, मैंने उनको भी डीएम किया था, उनकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया था, बिकॉज आई थिंक वो शायद मैनेज नहीं करते अपना अकाउंट, कोई और करता होगा, पर इनके ओर से आया था।
13: खैर जो भी हो, अभी तो 8 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर, थोड़ी देर बाद देखेंगे कहां कहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, रक्षाबंधन कंपटीशन में भी हिस्सा लेने का मौका आपको देंगे, और अभी भी टाइम है आपके पास क्योंकि हम बोर्डिंग कॉल पिछले घंटे प्ले हो चुका है एंड मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने जाकर जो लैंडिंग पेज है या कंपटीशन पेज है वहाँ पर बोर्ड नाउ टाइप करके सबमिट किया है, और अगर नहीं किया है तो टाइम है आपके पास, और आपको इनफैक्ट डबल इनाम जीतने का मौका हम दे रहे हैं। रिटेन एयर टिकट, टू रिटेन एयर टिकट्स, एवरी टाइम मैं यही बोल देता हूँ रिटेन एयर टिकट, दो रिटेन एयर टिकट्स टू वनुआतु फ्लाइंग सोलोमन आइलैंड्स, जो अब हफ्ते में 4 दिन डायरेक्ट ऑकलैंड से वनुआतु उड़ान भरता है, और उसके साथ हम $1,000 स्पेंडिंग मनी भी आपको देंगे जो आराम से आप स्पेंड कर सकते हैं वहां पर अपने खाने पीने पर, अपने अकोमोडेशन पर, जो भी आपकी जरूरत हो। तो घूमने फिरने का पूरा बंदोबस्त हमने आपको कर दिया है, हमने इतना तक आपके लिए कर दिया है कि आपको जाकर ढूंढना नहीं पड़े कि कहाँ आपको जाकर बोर्ड करना है रोवा पर, बस BC लिखकर 5599 पर आप हमारे पास भेजें, और आपको लिंक है पेज का मिल जाएगा, आप बस उसे क्लिक करके ओपन करें और बोर्ड नाउ टाइप करके सबमिट कर दे जहां पर लिखा होगा एंटर कोड नाउ। तो थोड़ा सा टाइम है। अभी एक और इनाम जीतने का मौका है और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो फिलहाल रोवा पर हमें सुन रहे हैं।
9: ओके,
13: रोवा पर हमें सुन रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है BC, राइट, BC लिखना है, उसके बाद अपना नाम और आप कहां से सुन रहे हैं हमें। रिमेंबर वी विल गो बैक एंड क्रॉस चेक, क्योंकि विनर आज हम नहीं अनाउंस करेंगे।
9: ओके,
13: तो आप बीसी लिखें, एक तो बोर्डिंग कॉल का आपको लिंक मिल जाएगा, उसके बाद अपना नाम और कहां से, विद इन न्यूजीलैंड कहीं पर भी आप हैं वो लिखकर 5599 पर आप हमारे पास भेजें। और जो दूसरा ड्रो है उसमें $100 कैश आप जीत सकेंगे।
9: ओके, देयर यू गो, सो लेट्स सी, होपफुली आप इसमें पार्ट लेने के लिए एक्साइटेड हैं। और जैसे कि हमने कहा ड्रो आज नहीं होगा, सो वी आर वेटिंग फॉर योर एंट्रीज। आप अपनी एंट्रीज जो है ये हमारे साथ जल्द से जल्द सबमिट कर सकते हैं।

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: व्हाट्सएप ऑकलैंड में चलिए देखते हैं कहां कहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है इसी शनिवार से मनाया जाएगा और कैसे आप इसमें भाग ले सकते हैं। सबसे पहले आपको हम याद दिला दें कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है ये मनाया जाएगा और इसमें आप भाग ले सकते हैं ज्योति रामायण भजन फाग मंडली द्वारा, और ये होने वाला है 29th August से लेकर फ्राइडे 4th September के बीच 7:30 PM to 9 PM। लास्ट डे प्रोग्राम जो है ये 7:30 PM शुरू होगा, जिसके बाद हवन के साथ ये खत्म होगा एट वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापाटोएटोए, और इसमें आप जरूर शामिल हो सकते हैं।
4: दिव्या शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इसी शनिवार से अगले शुक्रवार 4 सितंबर तक मनाया जाएगा एट द केव 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मैनुकाउ, रात 7:30 बजे से कथा जो है ये आरंभ होगी।
3: और साथ ही साथ रामकृष्ण मंदिर 25 Onslow Ave मैनुकाउ, यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है सैटरडे 29th August से फ्राइडे 4th September तक मनाया जाएगा हर रात 7:30 PM से।
4: न्यूजीलैंड संगम द्वारा पर्व मनाया जाएगा डेको ऑफ एलिगेंस 16 Lambie Drive मैनुकाउ में इसी शुक्रवार से अगले शुक्रवार तक रात 7:30 बजे से दैनिक पूजा जो है ये आरंभ होगी और कथा और प्रसाद, उसके बाद भोजन का भी प्रबंध रहेगा और कथा व्यास रहेंगे नलेश नायडू जी। अब जाकर जरूर इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
3: और साथ ही साथ श्री राम मंदिर 11 Brick Street हेंडरसन, यहाँ पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, आप इसमें भी ज़रूर भाग ले सकते हैं सैटरडे 29th August से लेकर थर्सडे 3rd September तक। यहाँ पर शाम 6 बजे से प्रोग्राम की शुरुआत जो है ये होगी। फ्राइडे 4th September को शाम 5 बजे से प्रोग्राम जो है ये शुरू होगा, जिसमें आप ज़रूर भाग ले सकते हैं। डिटेल्स चाहिए तो आप श्री राम मंदिर को ज़रूर संपर्क करें। फिलहाल चलिए आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी अगर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जो आप अन्य लोगों तक पहुँचाना चाहें, मोस्ट वेलकम टू सेंड अस द डिटेल्स। आप इसके लिए हमारे पास ईमेल कर सकते हैं buzz@hamfm.com, buzz@hummfm.com पर आप ईमेल अपना जो है ये सेंड कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड रिमाइंडिंग यू ऑल कि थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं आज का हमारा रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: 24 मिनट हुए हैं 9 बजकर अभी रक्षाबंधन कंपटीशन में हिस्सा लेने का टाइम आपके लिए आ चुका है. दो लोग होंगे आप में से जिनको $250 ईच मिलने वाला है. इसी शुक्रवार को ही पता चलेगा हमारे विनर्स कौन हुए हैं. ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस आपको अपने भाई या बहन का परफॉर्मेंस जो है ये रिव्यू करना है. किसी एक चीज़ को लेकर कैसा रहा उनका काम, अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक ठाक ही था, ना मुझे पसंद नहीं आया, बस ऐसा ही आपको बताना है और आप इस ड्रो में शामिल हो जाएंगे. तो लाइन हम खोल चुके हैं, वक्त कम है. 0800 004866 ये नंबर है हमारा जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और इस कंपटीशन में अब हिस्सा ले सकते हैं. सो यू गॉट टू बी रियल क्विक. अभी तक बहुत सारे लोगों का नाम इस ड्रो में शामिल हो चुका है.
3: यस, और याद रखें कि आप जब अपनी एंट्रीज के लिए हमारे पास कॉल कर रहे हैं सो कोशिश यही करें कि आपकी एंट्री जितनी यू नो क्रिएटिव और एक्साइटिंग हो उतनी बढ़िया, उतनी अच्छी, क्योंकि मज़ा आ जाएगा फिर ना. और ऐसा कुछ नहीं कि आपको एकदम सीरियस करना है, कोई सीरियस एलिगेशंस नहीं लगा रहे हम यहाँ पर, ना ही तो आपको किसी तरह का सीरियस रिव्यू करना है. यू जस्ट हैव टू शेयर योर आइडिया कि आपके भाई या बहन व्हेन इट कम्स टू बीइंग यू नो अ ब्रदर और अ सिस्टर टू यू, किस मामले में जो हम आपको बताएंगे कि ओके दिस इज़ द टॉपिक जिसके बेसिस पर आपको उनको रिव्यू करना है, उस मामले में वो कितने बढ़िया रहे हैं या कितने नहीं, ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. इनफैक्ट ऐसा करते हैं कि आज बता ही देते ना किस टॉपिक पर रिव्यू करने वाले हैं
2: हम. आपकी मर्जी.
3: ओके, तो आपको ये बताना है कि व्हेन इट कम्स टू लेटिंग हिम और हर लेटिंग यू यूज देयर मोबाइल फोन, उस मामले में कितने वेलकमिंग हैं या कितने नहीं हैं. कुछ लोग नहीं पसंद करते ना अपना मोबाइल फोन शेयर करना किसी के साथ. गुड मॉर्निंग.
4: गुड मॉर्निंग
2: भाई, कैसे हो आप, क्या नाम है आपका?
4: बस बढ़िया, आप कैसे हैं?
2: एकदम मस्त जी. बताइए नाम क्या है आपका?
4: गौरव.
2: अच्छा गौरव, फादर्स डे में मिस आउट हुए तो अब चलो रक्षाबंधन. कितनी बहनें हैं कितनी बहनें हैं आपकी गौरव?
4: न्यूजीलैंड में, इंडिया में. तो मेरी एक ही है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी बना ली.
3: अच्छा
2: अच्छा, बड़ी फेमिलिया लग रही है मुझे इनकी आवाज.
3: डोंट नो, शायद आपकी बात है.
4: मैं एक वो जीता था, वो था ना इंडिया और न्यूजीलैंड का हॉकी मैच.
2: अच्छा अच्छा,
4: उसके टिकट जीता था.
3: अच्छा ओके,
2: तो अब सवाल आपने सुना गौरव कि किस चीज पर अपनी बहन का परफॉर्मेंस आपको रिव्यू करना है.
4: मैं ना बहन को अभी ना मेरी ना लास्ट वीक ना कशिका जी से बात हुई थी, उस टाइम पे मैंने अपनी बहन की बहुत चुगली करी थी.
2: हाँ.
4: और मेरी वाइफ ने मेरी बहन को बता दिया
2: तब
4: कि हाँ भाई मैंने चुगली करी है.
3: वो भी रेडियो पर.
4: हाँ. हाँ,
3: रेडियो
4: पर
3: जी.
4: तो उसके बाद मेरी बहन ने बहुत सुनाया तो मैं उसके लिए अच्छा अच्छा बोलूंगा.
3: हमने वैसे कुछ सीरियस नहीं बोला, हमने सिर्फ आपसे ये पूछा कि आप हमें ये बताइए व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग their mobile phone, how good or bad they are at it. कि mobile phone आप अगर बहन या भाई का mobile phone use करना हुआ तो कितने अच्छे हैं इस मामले में या कितने बुरे हैं. Because कुछ कुछ तो सीधा बोल देते हैं मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो, और कुछ कुछ तो वहीं पर पड़ा भी होता है, they don't really bother.
4: Being honest, अगर mobile share करते ना तो उनकी love marriage नहीं होती.
3: यही तो बात है ना.
2: अच्छा मोबाइल फोन शेयर नहीं करते तो लव मैरिज हो जाती है?
3: नहीं तो पकड़े जाते हैं.
4: इंडिया में क्या होता है वो ना, पकड़े जाते हैं ना तो चुगलियां चलती है. अगर हम पकड़े जाते तो हमारी चुगली हो जाती, वो पकड़ी जाती उसकी हो जाती. तो फिर कलेश होता, किसी की नहीं हो पाती.
3: कलेश.
4: अब इस चक्कर में मेरी मम्मी पापा की होगी क्योंकि उस टाइम पे
3: मोबाइल फोन नहीं थे.
2: ये बताओ कभी
4: लव मैरिज होगी,
2: कभी आपकी बहन ने चुपके से आपका फोन उठाया है?
4: मेरा बहुत बार उठाया होगा.
3: होगा.
4: अच्छा, क्योंकि मेरे को मेरी बीवी से ही पता चला कि हाँ भाई आपकी बहन से बात हुई थी, उसने कहा कि आप नहाने गए हो, आप तेल देने गए, आप ये गए, वो गए।
2: अच्छा, आपने कभी बहन का फोन जो ये उठाया?
4: इतनी हिम्मत होती तो क्या ही बात थी। वो मेरे से छोटी है, हम तीन भाई और वो छोटी है सबसे।
3: हाँ।
4: लेकिन उसने सबका खून पी रखा था।
3: भगवान। गौरव, आज वापस से आपके पास कॉल आने वाला है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बहन का नाम क्या है आपकी?
4: मेरे साथ मेरी बीवी नहीं है ना, सोनाली।
3: सोनाली, ओके, थैंक यू सो मच गौरव। डेफिनेटली आपका नाम हम ड्रो में शामिल कर रहे हैं। पैसे जीत गए तो उनके साथ शेयर करोगे?
4: हाँ हाँ, कोशिश करूंगा,
3: कोशिश करूंगा। चलो, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।
4: थैंक यू सो मच,
3: थैंक यू, बाय,
2: टेक केयर, बाय बाय।
3: तो आज तो काफी कमाल की एंट्री गई सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू में। गौरव ने अपनी बहन सोनाली के लिए कॉल किया, ड्रो में नाम शामिल हुआ इनका। देखते हैं कि कौन रहेगा विजेता जिनके हाथ लग सकता है $500 में से अपना अपना शेयर, यानी दो लोग जो जीत सकते हैं $250 ईच।
2: और हमने कहा था कि अगर रोवर पर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको BC अपना नाम और कहां से आप सुन रहे हैं ये लिखकर भेजना था। अजय पुकेकुहे, वंदना वेस्ट ऑकलैंड, संजू पनेल, मनीषा मनुरेवा, सुनील ग्राफ्टन, धरा मैंगरी, देविका मेनुकाउ, संपत ऑकलैंड, नितिका
3: गार्डन्स,
2: या
3: और ग्लेंडीन से रूपल, माउंट वेलिंगटन से केशनी, एलएसली से प्रनीता, ऑकलैंड से विनोद और मनुरेवा से प्रीति।
2: 3167 आपने भी मैसेज भेजा लेकिन इनकम्प्लीट भेजा है। तो इतना तो पता चला कि ऑकलैंड के बाहर से हमें कोई नहीं सुन रहा है।
3: हाँ,
2: तो अगर आप सुन रहे हैं अभी भी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर रोवर पर, स्पेसिफिकली रोवर पर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, $100 कैश आप जीत सकते हैं। बीसी नाम और कहां से आप हमें सुन रहे हैं।
0: Bollywood's most wanted.
5: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
6: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Georgia.
1: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
0: Rusbi, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
0: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
2: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
0: Fatiha.
2: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
0: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
3: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
4: Hello everybody.
1: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
5: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
1: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. And Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
6: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
7: At Spotlight, save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester home decor, fabric, craft, knitting yarn, party curtains and blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full-price products. Excludes clearance. See website for details.

0: क्या
1: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश मयं पाला कियारा अडवाणी तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी
2: हेलो डैडी
1: टॉक्सिक रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 26th August
3: It's time. I'm coming!
1: Distribution partner Forum Films Rating TBC
4: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
7: What's going on?
0: आज का व्हाट्स गोइंग ऑन यानी डेली राउंड अप आपके लिए जिपके हम लेकर आ रहे हैं अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं. ऑकलैंड काउंसिल ने नैरो डाउन किए हैं प्लान्स फॉर न्यूजीलैंड्स फर्स्ट कंजेशन चार्जिंग स्कीम जिसके थ्री ऑप्शंस जो है ये सामने आए हैं.
8: कौन कौन से वाले हैं?
0: द आइडिया इज सिंपल. ड्राइवर्स जो है वो पे करेंगे एक फी ड्यूरिंग बिजी पीक टाइम्स ताकि ट्रैफिक कंजेशन को कम किया जा सके और लोगों को इनकरेज किया जा सके टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर आउटसाइड पीक आवर्स ट्रेवल करें. Three options include $2 to $4 charge to enter the city center. Ek wider charge rahega covering areas like Newmarket and Newton. Ya fir ek bigger option that would charge drivers using major motorways, jisme including parts of Southern Motorway and Harbour Bridge jo hai ye shamil hai. Under the motorway option, the charge could be between $5 to $7, but drivers could potentially save up to 12 minutes on their journey agar wo ye option lete hai to. Aucklanders will get their first chance to have their say in November this year is plan ko lekar aur ek final decision jo hai ye expect kiya ja raha hai in 2028 with congestion charging potentially starting in 2030 ya 2031 tak.
8: That's quite some time away. To achi tarah se soch le, do your research and provide your feedback jab aapko mauka mile. Blockhouse Bay mein ek vyakti ki mrityu hone ke baad police ne homicide investigation shuru kiya hai. Ek violent confrontation hua tha Holbrook Street ke paas shanivar ki sham 3:30 baje ke waqt and usme ek shakhs ko chot aayi जिसके बाद वो एक गाड़ी में गया अपने साथियों के साथ एंड वाज ड्रिवन टू ए नियर बाय बस स्टॉप ऑन ब्लॉक हाउस बे रोड. एक्टिंग डिटेक्टिव इंस्पेक्टर क्रेग बोल्टन ने बताया कि इमीडिएटली एम्बुलेंस को बुलाया गया जहां से व्यक्ति को गंभीर हालत में ऑकलैंड सिटी हॉस्पिटल पहुंचाया गया. उनकी इमरजेंसी सर्जरी करके उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया लेकिन उनको लगी चोटों की वजह से 23rd ऑफ अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई. उसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन फाल्कना जो है ये शुरू किया कल ताकि व्यक्ति की मौत और उसके पीछे कारण से संबंधित छानबीन जो है ये की जाए. सीन एग्जामिनेशन जो है दो लोकेशन पर शनिवार को किए गए जहां पर शुरुआती मारपीट हुई थी और वो जगह जहां पर एम्बुलेंस स्टाफ ने विक्टिम को पाया था. अभी मामले की तहकीकात की जा रही है.
9: Let's go.
10: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: वैसे थ्रोबैक की बारी आई है, पर आज का जो आखिरी थ्रोबैक है आपको सुनाने से पहले आपको याद दिला दे कि हमारा फादर्स डे सोशल मीडिया कंपटीशन भी आपके लिए जारी है, डेड्स एआई अपग्रेड। और अगर अभी तक आपने इसमें पार्ट नहीं लिया है, विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज विच इज़ हम 104.2 FM विद द ब्लू टिक। और जब आप इस फेसबुक पेज पर पहुँचोगे आपको फीचर्ड फोल्डर में ही पोस्ट दिख जाएगा, फादर्स डे डेड्स AI अपग्रेड कॉम्पिटिशन। आपको बस एक छोटी सी चीज करनी है और वो है ये कि अपने डैड की फोटो को AI पर जाकर आपको चेंज करना है एक सुपर हीरो के लुक में। आप उनको किसी भी तरह का सुपर हीरो लुक जो ये दे सकते हैं। वंस यू चेंज दैट फोटो, गिव हिम अ सुपर हीरो लुक, आप वो फोटो हमारे इस पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कीजिए। और अपने डैड के लिए कोई मैसेज लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पर उनको टैग जरूर कीजिए। और ये जरूरी है कि जब आप ये पोस्ट कर रहे हैं आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर रहे हो और उसे फॉलो कर रहे हो टू बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ, क्योंकि 4th of September को ड्रॉ होगा और जितने भी लोग रिक्वायर्ड जो कंडीशंस मीट करेंगे उनका नाम इस ड्रॉ में शामिल होगा, जहां पर आप जीत सकते हैं अपने लिए $300 कैश।
2: तो ये इनाम आपका इंतजार कर रहा है। बड़ा आसान है कॉम्पिटिशन, जस्ट विजिट आवर फेसबुक पेज एंड डू व्हाट इज रिक्वायर्ड और आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे।
0: To you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. Do baate.
2: आज की जो दो बातें हैं ये दोनों आपस में काफी जुड़ी हुई हैं, इसीलिए जरूरी है कि दोनों बातें आप गौर से सुने। पहली बात, अंत में कुछ ठीक नहीं होता।
1: अंत में कुछ ठीक नहीं होता,
2: अंत में कुछ भी ठीक नहीं होता।
1: हाँ।
2: अंत में सिर्फ अंतिम संस्कार होता है।
1: ओहो, ओह माय गॉड, ये थोड़ा ज्यादा ही गंभीर हो गया।
2: अब दूसरी कड़ी इसकी, क्योंकि अंत में सिर्फ अंतिम संस्कार होता है।
1: हाँ।
2: इसीलिए आप क्या है ये औरों को तय मत करने दीजिए।
1: वेरी इंटरेस्टिंग। कभी कभी हम नहीं कर पाते ये चीज़ें और इसीलिए शायद अंत हमारा ये होता है ना। पर फिलहाल चलिए उम्मीद करते हैं कि दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ कल एक बार फिर जुड़ेंगे आपके साथ ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा 104.2 FM पर। एंड्रोवा ऐप पर साथ देते रहिएगा और हमारे साथ प्रोग्राम का मजा लेते रहिएगा।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
4: ये गलत बोल दिया यार।
3: और पहनता भी नहीं है उसको।
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया
4: अभी ब्रांड हो गया ना
3: रुस्बे के बाल लगे उस
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Bedzaras. Sleep easy for less at Bedzaras Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
7: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया.
6: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
8: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
9: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
10: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
11: And award goes to Indelible Homes.
10: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
12: Kahani of Indelible Homes.
13: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
14: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
15: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
16: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
17: Boat plus ute equals beaut. Get Dad a $5 The Real Deal instant Kiwi ticket for a chance to win a Toyota Hilux and Stabycraft 1450 Frontier combo. Get your Father's Day gift sorted at your local Lotto NZ store. R18 T's and C's apply.
18: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
19: मुझे भी
18: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
0: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
20: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. An advocacy group believes a bill to keep under-16s off social media is a great start. National announced it yesterday, but has failed to gain support from ACT and New Zealand First. Before 16s, Steve McCracken says they'll be keeping a close eye on it.
21: This is not the end of this campaign at all. We'll continue to advocate and ensure that the

0: नारायण नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में समय 10:03 हो रहे हैं एंड यू ऑल नो आवाज से पता चल रहा होगा कि या गले में खराश, किचकिच, ये सब कुछ तो चल ही रहा है. और ऐसे में मौसम जो बदलता है, स्प्रिंग बिल्कुल समझ लो अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा. लेकिन क्या हमारा ये चैलेंज जो है इसे फेस करने में हमारा एक जो इम्यूनिटी सिस्टम है क्या कामयाब रहता है या नहीं रहता है? बस चलो कोई बात नहीं. क्या होता है ना कि ऐसी चीज़ों से अगर हमें गुजरना होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिन्हें हमें सोचकर मुस्कुराना पड़ता है. एंड दैट इज़ नन अदर देन हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार जो इस हफ्ते है, और साथ साथ उसके बाद नेक्स्ट वीक फादर्स डे आ जाएगा और फिर गणपति बप्पा आ जाएंगे. यू नो, सो ये फेस्टिविटीज जब चलनी शुरू हो जाती है उस समय, और ख़ासतौर पर कृष्ण जन्माष्टमी, तो इतनी सारी चीज़ें जब होने लग जाती हैं तो मन करता है बस उत्साह के मारे ये तबीयत वबीयत रह गई एक तरफ, लेकिन काम काज जब करने लगते हैं और जब आने लगते हैं यहाँ पर, ख़ासतौर पर जब मैं स्टूडियो में आने लगती हूँ, आई एम टोटली गेड अप. कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मैं काशिका आपकी रिमाइंडर क्लॉक लेकर आ जाती हूँ मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के बीच में. कुछ प्यारी प्यारी बातें, कुछ जानकारी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो. तो चलिए एक काम करते हैं, थोड़ी देर बाद नीलू को इन्वाइट करते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं. कोई सवाल है फ्रॉम अवाना कॉस्मेटिक्स एंड लेजर क्लिनिक तो मुझे बताइए एंड आई विल आस्क टू रिप्लाई. 11 बजे
1: बचाओ क्या

0: Experts adapt.
1: I totally understand that's what they do, but mere paas ek sawal aaya hai, and that is for Neelu because I had requested for a question and I have her online with me. Good morning, Neelu. Kaise ho aap?
2: Bilkul ji, Kashika ji. Good morning. Sun is shining and I'm speaking to Kashika ji. Aur jeene ko kya chahiye?
1: भैया जीने को थोड़ी सी विटामिन सी भी चाहिए क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी बहुत इम्पोर्टेंट है. इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए विटामिन सी बहुत इम्पोर्टेंट है.
2: बिल्कुल ठीक, ले लिया मैंने आपका टिप आज.
1: बिल्कुल बिल्कुल. नो, सो दे वर टॉकिंग, यू नो, देयर इज अ टेक्स्ट अबाउट समथिंग दैट हे इज अवाना हैविंग 30 इयर्स इंट्रोडक्शन और समथिंग और व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एंड फॉर हम आई थिंक आई मिस्ड आउट बिकॉज़ आई वाज अवे टू इंडिया. So I said, चलो आप इसे पूछ लेती हूँ.
2: जी जी बिल्कुल. तो 30 साल हो गए अवाना को, मतलब इट्स लाइक 1996 अवाना स्टार्टेड. कशिका, दिस वाज द फर्स्ट लेजर क्लिनिक इन दिस कंट्री, इट वाज एन ऑस्ट्रेलियन चेन. तो जो ओनर थे पहले वो बहुत अच्छे दोस्त हैं आज भी मेरे, एंड देन आई डोंट नो व्हाट दिस थॉट केम टू हिम, एंड दैट टाइम अवाना यूज्ड टू हैव वन पोर्टेबल लेजर मशीन व्हिच यूज्ड टू गो फ्रॉम वन सबर्ब टू द अदर.
1: अच्छा.
2: That was, yes, it was Henderson में एक था, North Shore में एक था, Pokekohe में था उस समय, और Chancery Main था जो कि Metropolis Hotel City के पास, जो अब नहीं है, मतलब we sold it. But then I took over in 2005.
1: अच्छा.
2: So yes, 30 साल हो गए हैं इस क्लिनिक को.
1: Wow.
2: और बहुत अच्छा लगता है कशिका जब क्लाइंट्स, मतलब if I tell you my journey की क्लाइंट्स तो हैं, अब उनके बच्चे भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मतलब how beautiful
1: is that?
2: Like that kind of credibility I think we have earned over years. So yes, 30 साल में बहुत धमाल हो रहा है क्लिनिक में, बहुत स्पेशल्स हैं, और हम लोगों ने आयुर्वेदा भी लॉन्च करा है फ्रॉम शंकरा यूएसए. दैट इज गोइंग रियली गुड क्योंकि हमारी मसाज जो लोगों को $90 से कम नहीं पड़ती है, हमारी आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट कुल $69 में ऑफर कर रही है, और वी आर चोक अप ब्लॉग, लोगों को बोलना पड़ा है 2 वीक की वेट है. इट इज गोइंग फैबुलस. इट्स ओनली फॉर $69 फॉर 1 आवर ऑफ अभ्यंगा मसाज विद द एसेंशियल ऑयल्स, एंड दैट्स वर्किंग आउट वेरी वेल फॉर दिस वेदर. जो आप बोले कि बॉडी टाइट हो रही है, ठंड है, लोगों को हे फीवर हो रहे हैं, स्नीजिंग है, तो जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जो कि मसाज से है, वो बहुत ही बेहतर हो रहा है. सर फेशियल्स भी है, बट अभी जो टॉप ऑफ द डील हमारी चल रही है, वो चल रही है हमारा लेजर हेयर रिमूवल.
1: Okay.
2: जो कि कुल $10 में लिप के हैं ट्रीटमेंट और $10 में ही चिन के हैं ट्रीटमेंट, बट कुछ कंडीशंस हैं उसमें पैकेजेस की. बट यस, बिजनेस इज गुड कशिका जी, और आप बहुत हमारे साथ हैं, और हम के लिसनर्स जो सुन रहे हैं, यस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द ट्रस्ट इन अस.
1: ओह, दिस इज सो वंडरफुल, एंड आई थिंक आपका रिप्लाई आपको मिल ही गया होगा. एंड 2637 आपका टेक्स्ट आया था, आपने नाम नहीं लिखा, बट यू डिड मिस आउट ऑन द कॉन्वर्सेशन. सो यस, ये आपको कॉन्वर्सेशन तो पता चल ही गया है, और आपको पता है कहाँ पहुँचना है. लेवल वन आपको पहुँचना है सिल्विया पार्क शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग सेंटर में, और ये बिल्कुल बहुत सेम उसी लेवल पर आपको वहाँ उनका झंडा दिखेगा या एक बोर्ड दिखेगा.
2: दोनों देखेंगे, झंडा भी और मैं भी और बोर्ड भी. नहीं नहीं, एंड डेफिनेटली दे कैन विज avana.co.nz, जिसमें क्या आयुर्वेदा के पूरे हम लोगों ने ट्रीटमेंट सब डाल दिए हैं, उसमें प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनको देखिए, प्लीज गिव अस अ फीडबैक. क्या आयुर्वेदा भी लाए हैं हम, तो वी आर ब्लेंडिंग ईस्ट एंड वेस्ट टुगेदर कशिका.
1: ओह ग्रेट. यू नो, व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू, आई वाज हैविंग अ लुक एट योर वेबसाइट, एंड आई एम सीइंग दैट यू नो योर प्रोडक्ट्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट, मेलेस्मा ट्रीटमेंट, समबडी परचेस्ड इट व्हाइल वी वर टॉकिंग राइट नाउ.
2: Correct.
1: So this
2: Correct.
1: Is how it's working. I think even if they go online on avana.co.nz, they will get these specials and they can book it directly from there as well. That is great. So thank you so much, Neelu, for today. 0800-128-821 is the number where you can give a call and talk to Neelu and the team and book your appointment. So thank you for taking my question, actually our listener's question, and we shall catch up with you next week.
2: Thank you Kashika, thank you so much.
1: Take
2: have
1: care.
2: A good one.
1: You
2: thank
1: too
2: you.
1: Bye.
2: Bye.
0: My time with Kashika.
3: आज का चलना है बहुत न्यूज में, हाफी तो नहीं.
4: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
0: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
4: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री, और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
0: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
4: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग giving the best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
5: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
7: Award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
8: Kahani of Indelible Homes.
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
12: It's winter, but you already know that.
13: What you might not know is that demand for blood and plasma donors is high.
12: Yet the supply of blood and plasma donors is low.
13: It happens every year when the dreaded lurgies do their darndest.
12: You know, the cough.
13: The splutter.
12: The nose that runs like Usain Bolt.
13: So we're asking you to get your blood buddies together and book a group blood or plasma donation today at nzblood.co.nz.
12: Give blood. Give plasma, save lives.
14: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
15: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
14: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
15: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tamaki showroom. It's worth the visit.
14: Elite Bathroomware.
15: A reflection of you.
16: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए

0: ऑफिस शाउटआउट की जब बारी आती है तो मेरे पास रिलायबल वर्ल्ड से एक मैसेज आया है. अ बिग थैंक यू टू यू मीता एंड हेतल, आप मुझे सुन रहे हैं इस समय एप्सम से, सो थैंक्स अ टन. एंड आपने पसंद किया एक पर्टिकुलर सॉन्ग को जो मुझे लगता है मैं डेफिनेटली बजा सकती हूँ. लेकिन इसके साथ साथ भाई याद दिलाना पड़ता है ना कुछ बातों को, और वो बातें ये होती हैं दैट काश आपने अभी तक अगर नहीं भरा है तो हमारे हम बोर्डिंग कॉल का एक अनाउंसमेंट आएगा और उसको आपको सुनना है, ताकि मैं वो डिटेल्स आपको एक आध गाने के बाद बताती हूँ जो गाना हेतल आपने रिक्वेस्ट किया है. इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ. रक्षाबंधन इज दिस फ्राइडे और बस थोड़ी ही देर बाद मैं एक रक्षाबंधन का गाना बजाऊंगी और आपकी कॉल्स को लूंगी, जहां पर मैं चाहती हूँ आप अपने भाई या बहन को जिनको मिस कर रहे हैं उनको ये गाना एक डेडिकेट करा है मैंने, तो भाई या बहन कॉल करके आप अपना एक रिव्यू दे सकते हैं, इमोशनल रिव्यू.
1: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: ब्रांच में है।
1: एक बात तो है कि स्कूल्स एंड रेस्ट होम्स जो हैं वो बैटल कर रहे हैं समय विद द लेटेस्ट स्पाइक जो होने वाली है विंटर इलनेस की, इन्फ्लुएंजा ए, ये यहाँ पर आ चुकी है जहाँ पर न्यूजीलैंड में एडमिशंस हैव हिट अ 10-year हाई रिकॉर्ड और ये इन्फेक्शन जो है इट इज़ वेरी हाई। अब एक स्कूल में कहा जा रहा था 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 439 स्टूडेंट्स एंड 10 टीचर्स वर एब्सेंट ऑन मंडे, अब ये पता चला है और 2 डेथ्स जो हैं ये भी बताई गई हैं, ये नॉर्थ आइलैंड की खबर है। तो ये बाकी स्कूल्स में भी इसी तरह का स्पाइक चल रहा है एंड लुक्स लाइक दिस इज प्रिटी मच ऑन द कर्व एंड इट कुडंट गेट वर्स देन दिस बट इट इज अलार्मिंग। बस मेरा खाली एक ही रिक्वेस्ट है, वार्म वाटर पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। इफ़ यू आर अफेक्टेड एंड यू आर रनिंग आउट ऑफ सिक लीव, आई एम नॉट वेरी श्योर what you can do, but just be very, very strong. Just be, your immunity level has to be definitely high. अब ये गाना जो मैं नेक्स्ट लेकर आ रही हूँ रक्षाबंधन के मौके पे आखिरी 2 बार, यानी कि ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद ये एंट्री नहीं जाएगी आपकी, जहाँ आप भाई और बहन $250 ईच लेके जाने वाले हैं। आपका भाई छोटा है, आपकी बहन छोटी है, किस तरह से आपको दुलार करके वो आपसे प्यार करती हैं, क्या करती हैं, चलिए बता डालिए।

0: सो रक्षाबंधन के मौके पे चलिए, आपके छोटे भाई या बहन हैं जिनको आप याद करना चाहते हैं और उनका नाम ड्रॉ में आप ऐड करना चाहते हैं, अपना एक छोटा सा वाक्य, आपकी छोटी सी बात, एक छोटा सा इंसिडेंट बता के जहाँ पे आपको लगता है आपके भाई या बहन ने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी एक मेमोरी तैयार की थी, और वो क्या हो सकता है। वैसे जब मैं मेमोरी की बात कर रही हूँ तो हमारे फेसबुक के पेज पर भी अगर आपने उनकी कोई एक मेमोरी है जो आपके पास अभी तक है, उनकी एक निशानी है, तो वो भी आप उसकी फ़ोटो खींच कर हमारे फेसबुक के पेज पर आप ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल वो रक्षाबंधन की पोस्ट के नीचे आपको अपनी कहानी लिखनी है, अपने भाई या बहन को टैग करना है, $300 कैश जीतने का मौका है और वो भी इसी फ्राइडे के दिन होने वाला है। अच्छा, ये तो आपके लिए हो गया, लेकिन अभी के लिए 0800004866 पर आपने मुझे कॉल करना है, एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी बात मुझे बतानी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ, आपके भाई या बहन हमेशा आपका साथ देते हैं। एक अपनी कहानी मैं छोटी सी बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि आप यू नो मे बी आई थिंक आई बीन ओवरसीज मोर देन 30 years और समथिंग, बट ऐसे में कई बार ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है जब मैं नहीं होती हूँ भाई या बहन के साथ, तब कोई ना कोई बहन ज़रूर मेरे भाई के पास पहुँच जाती है, चाहे वो US में हो या चाहे कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे पहुँच के फिर वो वीडियो कॉल होती है और फिर एक दूसरे को हम देखते हैं, फिर राखी बांधते हैं, तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट यू नो। और मैं अपनी बहनों को इसमें रिव्यू करना चाहूँगी, कहने के लिए कि कुछ भी हो जाए, भले ही मेरी राखी वहाँ टाइम से पहुँचे ना पहुँचे, वो मुझे कह देती हैं डोंट वरी अबाउट इट, मैंने तुम्हारे लिए राखी खरीद ली है और तुम्हारी तरफ से बांध भी दी है। इज़न्ट दैट लवली, इज़न्ट दैट अ लवली यू नो थिंक बाय अ सिस्टर। चलिए 0800 हम पर या 0800 4866 पर आप मुझे कॉल कीजिए, बताइए कि क्या आप अपने भाई बहन के साथ कैसा एक रिश्ता रखते हैं, क्या वो रिश्ता अभी तक ऐसा ही कायम है या नहीं है। ओके, मैं जब तक वेट करती हूँ आई विल जस्ट हैव द एड ब्लॉक प्लेइंग एंड मे बी कोई ड्रीम आपके माइंड में आ रही है तो वो भी बताइए कि आपको लगता है कोई ड्रीम आपको आई है, परेशान कर रही है।
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
3: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
2: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
4: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
6: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
7: White separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
8: Score more SMEG with SMEG bonus stickers at New World North Island. Get Nature's Fresh Muffin Splits 6-pack, $3.99 each. Or Cadbury and More Chocolate Blocks, $6.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: Your property manager shouldn't disappear after 5 p.m. Nesto offers evening and weekend viewings, proactive management and real support. Visit nesto.co.nz. Nesto Property Management. Comfortably nested.
10: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
11: ड्रीम डायरी। अच्छा, इससे पहले कि मैं ड्रीम डायरी में पहुंचूं, मैं पहुंच चुकी हूं मानू रीवा। काफी टाइम से ये होल्ड कर रही हैं। वेरी स्वीट प्रीति, कैसी हो आप?
12: ठीक हूँ, अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हो?
11: मैं एकदम बढ़िया हूँ। चलो बताओ क्या हुआ, बताइए।
12: मेरा भाई तो फिजी में है, हाँ। मेरी बहन भी है फिजी में। रक्षाबंधन पे मैं तो उसको हमेशा करता हूँ, हमेशा हमेशा। वैसे ऑन माय बिहाफ मेरी बहन उसको राखी बांध देती है, लेकिन मेरे भाई और मेरा बॉन्डिंग बहुत डिफरेंट है। वो मुझसे छोटा है, लेकिन हम उसे ट्रीट करते हैं जैसे बड़े भाई जैसा। और इस बार हम फिजी गए, उसने अपना कुछ सीक्रेट्स मुझे बताई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके बहुत सालों बाद, 25 इयर्स बाद मेरे शादी के, उसने ये सारे सीक्रेट्स मुझे बताए।
11: अच्छा।
12: वो सीक्रेट्स ही रहेंगे, लेकिन वो सीक्रेट्स मुझे बताए, मुझे अच्छा लगा।
11: अरे so nice. तो देखिए, बॉन्डिंग होती है ना आपस में, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स रियली हेल्प यू आपके बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आपके भाई का नाम
12: रोनील।
11: ओके, मैंने आपका नंबर भी ले लिया है प्रीति। थैंक यू सो मच, आप मानू रिवा से कॉल करिए। हमारा रिसेप्शन सही आ रहा है ना? बिल्कुल,
12: एकदम एकदम क्लियर,
11: एकदम क्लियर। और कितने सालों से सुनती आ रही हूँ हमें?
12: मैं 10 ईयर से सुन रही हूँ, और मैं जब से आई हूँ इधर ना फिजी से, मैंने पहला स्टेशन लगाया हम ही लगा, तब से मैं उसको चेंज नहीं किया, उसी पर डाला हुआ है।
11: अरे
12: तो फिर रोवा, फिर रोवा ऐप आ गया, फिर मैं रोवा पर कभी सुनती हूँ जब खाना वगैरह बनाती हूँ।
11: हाँ।
12: वरना मैं वरना मैं अपने गाड़ी में ही सुनती हूँ।
11: क्या बात है। अच्छा, आपने हम बोर्डिंग कॉल में भाग लिया कि नहीं लिया?
12: हाँ डेफिनेटली, आज सुबह लिया था, मैं आपका इंतजार कर रही
11: हूँ। बस ठीक है, बस वेट करो, अगले घंटे पर जरूर होगा कुछ ना कुछ। आपको हिंट दे दिया मैंने। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल।
12: बाय।
0: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI. It's love that-

0: brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: मैं प्रीति से बात करने में इतनी बिजी हो गई थी, शायद मैं मानो रिवाई ड्राइव करके पहुंच गई थी ऐसा लग रहा था. लेकिन आपका टेक्स्ट आया, आपने कहा यू ड्रीम्ड ऑफ अ ड्रैगन. तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ, सीइंग अ ड्रैगन एक्चुअली ये सिग्निफाई कर सकता है दैट यू आर गोइंग थ्रू और यू नीड टू गो थ्रू अ मेजर चेंज इन लाइफ. एक ड्रैगन जो है आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी एक पर्सनैलिटी को ज़रूर रिवील करता है. और कहते हैं कि एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. कोई जो हिडन फियर्स हैं आपके अंदर, शायद वो बाहर निकल कर भी आ रहे हैं. यू नीड टू बिकम, धारण करो अपने आप को ड्रैगन के रूप में, यही कह सकती हूँ. या फाइटिंग और रनिंग अवे मे बी फ्रॉम सम सिचुएशन, बट फ्लाई हाई इज़ वॉट आई कैन से फॉर यू.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है, आधी नींद में हूँ मैं।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

Hi, namaskar and a very very good morning to you people. How are you? What's happening? Kya chal raha hai bhai? Are bahut kuch chal raha hai. Aise mein of course Raksha Bandhan ke mauke pe dekho kitna acha Preeti ne hame jawab diya aur uske sath sath ab baat karti hu jab about Father's Day. Next Sunday ko Father's Day hai. कैसे चुटकियों में टाइम निकल रहा है ना, लेकिन उसके मौके पे मैं तो आपकी कॉल लेना चाहूँगी. तो थोड़ी देर बाद मैं आपसे सवाल भी पूछूँगी. डोंट फॉरगेट कि आप हमारे साथ साथ क्या क्या शेयर कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ जो हमारे एक्सपर्ट्स फॉर अनफिल्टर्ड ड्राइव सैंडी और उसपे ने किया है, उन्होंने युवराज से बात की, मेम्बर ऑफ द ई एक्सप्लोर एक स्टूडेंट रन बिजनेस है फॉर यंग एंटरप्राइज स्कीम यस नाम से, और इन्होंने एक इनोवेटिव कार्ड गेम जो है डिज़ाइन किया है जहाँ टूरिस्ट को लोकल्स को डिस्कवर करने का मौका मिलता है हिडन जेम्स और कुछ लेसन नोन डेस्टिनेशन. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग एपिसोड विच यू शुड नॉट बी मिसिंग आउट. टेक्स्ट कीजिए 5599 पे ड्राइव और आपको ये डिटेल्स उनके डेफिनेटली मिलते चले जाएंगे. यस, याद रहे बोर्डिंग कॉल का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है और आपको क्या करना है, फटाफट आपको बोर्ड नाउ करना है रूवा ऐप के जरिए. एंड साथ में अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा, बीसी लिख के भेजिए 5599 पे, वो लिंक आपको मिल जाएगा. याद रहे दो रिटर्न है टिकट्स टू वनुआटू विद सॉलोमन एयरलाइंस प्लस $1000 आपको स्पेंडिंग कैश जो वो हॉलीडे पीरियड में मिलने वाला है. बस सिंपल, आप वनुआटू जा सकते हैं. एक गेटवे ऐसा जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, फिजी के जैसा ही दिखता है. वैसे बिग थैंक यू टू सॉलोमन एयरलाइंस जो 4 बार हफ्ते में नॉनस्टॉप ऑकलैंड टू वनुआटू फ्लाई करते हैं. इनके डेस्टिनेशन की जानकारी के लिए flysolomons.com के जरिए आप डिटेल्स हासिल कर सकते हैं. हमारी कॉम्पिटिशन की टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए हमारी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं. जाओ क्या

0: flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's

0: ईट बेटर लिव बेटर, लेकिन एक जो हमारे फादर की छाया होती है ना, बहुत ज़रूरी होती है। और ये छाया जो है, जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो वो छाया वो वहाँ तक जाती है, और हम कोशिश करते हैं कि हम भी उसी तरह अपने बच्चों को संभालें, बात करें, जो भी करें। लेकिन आजकल के बच्चे, ओ वाह, आजकल की मॉडर्न स्लैंग, आजकल का पॉप कल्चर, आजकल की हाईटेक बातें, ये सब कई चीज़ें जो होती हैं मेरे भी सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। क्या आपके साथ ऐसा कुछ होता है? क्या आप उन डैड्स में से एक हैं जो आपको लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं थी? आपका कोई ऐसा चैलेंज हुआ आपके बच्चों के साथ? आइए चलिए चलिए काम करते हैं, हम ही आपको चैलेंज दे देते हैं। या फिर आपको लगता है आपका कोई चैलेंज था और कोई ऐसा वर्ड था जो आपने अपने बच्चों से सीखा, वो भी मुझे कॉल करके आप फादर डियर फादर या बेटा डियर बेटा आप भी बता सकते हैं। $500 रिच हो सकते हैं फादर आप, अगर आपने मुझे कॉल किया। मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। ये जो ड्रॉ है 4th of September के दिन नेक्स्ट फ्राइडे को होगा। हमारी टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए हमारी वेबसाइट या रोवा ऐप पर आप जा सकते हैं। 0800004866 पर मुझे आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। आई बी रियली हैप्पी टू लर्न, हंसूँ आपके साथ, शायद मैं भी कुछ एक आध वर्ड सीख जाऊँ, एंड इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। ओके, एक और जो हमारी कॉन्टेस्ट हो रही है वो हो रही है सुपर हीरो इनसाइड योर डैड। अब ये जो है, हम लोग कोशिश करें एक फ़ोटो, AI तो आजकल वाकई कमाल कर चुका है, ऐसे में एक AI जनरेटेड सुपर हीरो की फ़ोटो आप अपने फादर को की मुंडी बीच में लगा दीजिए, दैट्स इट, $300 कैश जीत सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। सो ये AI जनरेटेड सुपर हीरो की जो फोटो है, आपने सपोज करो लगा दी, ये पोस्ट करना है आपको हमारे फेसबुक के पेज पे, हमारी पोस्ट के नीचे अपने डैड को टैग जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर जो भी आपके ऑफिस में इधर कोई है, इस कॉम्पिटिशन की इस फोटो को लाइक करने को उनको ज़रूर बोलिएगा। याद रहे कि whoever likes your super photo, सुपर हीरो वाली फ़ोटो, दे हैव टू बी फॉलोइंग हम फेसबुक पेज, ठीक है। ये कॉम्पिटिशन जो है उस पर आपको जाके लाइक ज़रूर करना है। जो एंट्रीज, मतलब सारी की सारी 100% सदी सही जाएंगी, वही इस $300 कैश की हकदार होंगी, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो मैंने आपको AI जनरेटेड डैड के बारे में बता दिया, लेकिन ये आजकल के डैड जो हैं, क्या आपको लगता है खरे उतरे हुए हैं? आप भी कॉल करके मुझे बता सकते हैं। आप मम हैं तो भी आप अपने उस एक्सपीरियंस को बता सकते हैं जो आपके फादर और सन के बीच में या फादर एंड डॉटर के बीच में आपने सुना है, एंड आपको लगता है दैट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। 0800004866 इज़ द नंबर जिस पर आप मुझे डेफिनेटली कॉल कीजिए। आई एम हैप्पी टू अंडरस्टैंड, टेक योर कॉल एंड गो फॉर इट। वैसे 6-word स्टोरी भी आ रही है, अगर कोई 6-word स्टोरी आपके फादर से रिलेटेड है वो भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। We gotta go. Are you ready? Come and take a trip with me. Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
4: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
3: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
6: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: To get the best value from your mechanic, bringing it into Midas stops a lot of confusing thoughts like, should you ask AI first? Offer a contra deal?
7: You don't need your toilets clean, do you?
2: Find a cheaper mechanic in Invercargill. Pretend you know what they're talking about.
8: Pretty sure the carbonara's playing up.
2: Pray, plead, sob, beg, bargain. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prices. Midas, for peace of mind motoring.
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279939 और विजिट legalassociates.co.nz
12: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए सोना संसार के साथ जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस सोना संसार 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए सोना संसार संसार रिश्तों का
13: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
0: तो मैंने गाना जो बजाया था वो एक फिल्म थी जिसमें शायद किशोर कुमार जी ने वो गाना गाया था एंड आ चल के तुझे लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले बट उसका एक वर्जन जो राहुल जैन की आवाज़ में था आई प्लेड इट फॉर यू बट आपका टेक्स्ट आया लिटिल इमोशनल आई एम श्योर इट मस्ट बी वेरी इमोशनल बिकॉज आपने एक सिक्स वर्ड स्टोरी भी उसके साथ ऐड की कहने आपने कहा काशिका यू टच द इमोशनल कॉर्ड ऑफ माइंड एंड दिस इज़ वन सॉन्ग विच माई फादर यूज टू सिंग फॉर मी बट माई सिक्स वर्ड स्टोरी फॉर टुडे इज डाइड टू यंग फाउंड इन पिक्चर्स डाइड टू यंग फाउंड इन पिक्चर्स Let's pray for him. Let's just pray for his spirits. क्योंकि अगर आपकी spirits down होगी ना तो वो ऊपर देख रहे हैं आपको He will not like it. Okay? अच्छा एक चीज़ करते हैं आपसे बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं जुलाई का महीना जब था ना तो highest global sea surface temperature जो record किया गया था and एक pattern जो था climate का वो change हो गया था So that is exactly El Nino. अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि न्यूज़ीलैंड में कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो शायद हमें यू नो पता ना चले कि कैसे क्या हो सकता है इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द यू नो फॉर योर रिकॉर्ड बुक्स दिसंबर 2025 में जब ट्रॉपिकल पैसिफिक में ऑलरेडी एल नीनो जो था ये पहुंच चुका था तो उससे क्या हुआ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आने शुरू हुए सब्सिक्वेंटली साउथ अमेरिका में वार्म डेज आने शुरू हो गए सी लेवल्स जो है वेस्टर्न पैसिफिक में बढ़ते चले गए उससे क्या हुआ कि ये काफ़ी चीज़ें जो हैं न्यूजीलैंड की तरफ लेकर आए इट टेक्स अराउंड 2 to 3 months टू क्रॉस द ओशन ये थंडर स्टॉर्म्स रेनफॉल ये इन्फ्लुएंस करने लगते हैं ट्रॉपिकल पैसिफिक क्लाइमेट का और ऐसे में ये हिट कर रहा है न्यूजीलैंड को सो याद रहे इस तरह की चीज़ें जो है टेम्परेचर्स जो है बढ़ा सकती हैं और ये इफ़ेक्ट कर सकता है ड्राई कंडीशंस में यू नेवर नो व्हाट माइट ब्रिंग न्यूजीलैंड कुड हैव बीन हैविंग अ ड्राई ईयर जिसमें रिलेटिवली सनी डेज हो सकते हैं अनलाइक मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड न्यूजीलैंड विल एक्सपीरियंस ऑफन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ठंडा मौसम थ्रू आउट लेकिन इस बार आपको लगेगा कि मौसम थोड़ा सा गर्मी और भी लेकर आने वाला है
13: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

ये तो आपको पता है कि हमने हमारा बोर्डिंग जो एक अनाउंसमेंट था वो कर दिया है. आपको रुवा ऐप पर जाना है. रुवा ऐप पर जाकर आपको सिंपली वहाँ पे सबमिट करना है अपना बोर्ड नाउ. अब जल्दी करिए, फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं आप 1012 के लिए, और ये ऐसा सुनहरा मौका बिल्कुल मत खोइएगा. बीसी लिख के भेजा अगर यार लिंक आपको नहीं मिल रहा 5599 पे.

0: Time with Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: टॉक्सिक फिल्म के लिए इतना ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अब पहले एडवांस में बुकिंग करने वाले हैं, इसी वीक ये फिल्म लगने वाली है। लेकिन एक बात बता देती हूँ, आज अक्षय कुमार सैफ अली खान की जो एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है उसका डिजिटल एक ट्रेलर रिलीज़ होने वाला है। द मूवी इज़ कॉल्ड हैवान। अब ये क्या डरावनी पिक्चर होगी कि कैसी होगी पता नहीं, बट देयर वाज़ अ सॉन्ग मै हीरो, मेरे हीरो हैं वो, अब पता नहीं व्हाट इज़ दैट, हाउ विल दैट सिग्निफाई, कौन क्या है पता नहीं, पर थोड़ी सी लाइट अगर शेड हो जाए थोड़ा लगता है इमोशनल ट्रैक लग रहा है मेरे हीरो हैं वो से लग के, बट पता नहीं व्हाट माइट बी हैपनिंग, क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या होने वाला है। ये फिल्म 11 सितंबर के दिन रिलीज़ ज़रूर होने वाली है, लेकिन इस फिल्म में सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार के साथ साथ बमन ईरानी, श्रेया पिलगोंकर और साथ में सयामी खेर, राजपाल यादव, शरीफ हाशमी और भी बहुत सारे कलाकार होंगे। सो इंसिडेंटली दिस इज़ द सेकंड फिल्म जो प्रियदर्शन जो है अक्षय कुमार के साथ इस साल लेकर आए। उसके पहले 2026 में भूत बंगला में भी ये नज़र आए थे, एंड इट लुक्स लाइक हैवान कुड बी, गॉड नोज, इज़ अगेन अ डरावनी फिल्म, आई डोंट नो क्या कैरेक्टर है। आई विल वेट फॉर द ट्रेलर टू हैपन टुडे।
0: अटेंशन एवरीवन, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल। रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
4: You filled the pinata before I sealed it, right?
5: No, you did.
4: Oh, I thought you did.
6: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
8: हाँ, अच्छा
7: बताओ तुम्हारा फोकस, फोकस साडा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह,
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
11: Mike here from Novus Glass. When this happens,
12: Novus,
11: just contact your local Novus branch direct. We make it easy with the latest equipment, tested products and trained technicians. We'll even handle your insurance claim. Novus Glass also make it easy on the environment. We're proud to be pioneering windscreen recycling in New Zealand. Plus, for every repair or replacement, we make a donation towards planting native trees. Notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
13: Show us your crack.
14: Ah, Novus!
15: Owning a rental shouldn't feel stressful. Nesto makes property management simple with proactive support, better communication, and evening and weekend viewings. Visit nesto.co.nz. Nesto Property Management. Comfortably nested.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के।
16: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश मयं ताला कियारा अडवाणी तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी
17: हेलो डैडी
1: टॉक्सिक रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 26th August
18: It's time. I'm coming!
1: Distribution partner Forum Films Rating TBC
19: My Time with Kashika Brought to you by Kashish Foods Eat better, live better
20: Rescue me, recycle me
3: तो जब हम बात कर रहे हैं अबाउट लेफ्ट ओवर आलू तो आलू का क्या कर सकते हैं आलू का भरता बन सकता है या मैं कह सकती हूँ भरता तो ऐसे में इसको डिफरेंट वे से बनाया जा सकता है अब बिहार या फिर बंगाल में किस तरह से इसको रेडी किया जाता है बाकी के स्टेट्स में भी इसको आलू चोखा आलू भरता या आलू भरता इसको कुछ भी कह सकते हैं तो ये बिहार राजस्थान बंगाल इसमें बन सकता है इसमें आपने आलू जो बचा हुआ है उसको मिक्स आपने किया हरी मिर्ची प्याज और हरा धनिया डाला हाईलाइट डिश की ये है कि उसमें थोड़ा सा जला हुआ जलाकर भूनकर लहसुन डालें और ज़ीरा डालें माफ़ कीजिएगा आलू का टेस्ट आप नोट करेंगे कितना बढ़िया रहेगा बेस्ट चीज़ इसको शालू फ्राई कीजिए जैसे कि उड़ीसा और बंगाल में किया जाता है शालू फ्राई किया जाता है और डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ भी कर किया जाता है लोग पराठे के साथ सब्जी आलू के साथ रोटी के साथ या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं वैसे इट्स अ ग्रेट अकम्पनीमेंट टू इवन अ डोसा अभी आप देखो अगर आप डोसे का बैटर है आपके पास वही आप चोखा जो है आलू चोखा या आलू भरता उसका इस्तेमाल तभी भी आप कर सकते हैं ये जो आपका मैश किया हुआ जो मटेरियल है या जो भी आलू आप रख रहे हैं इसको रैप्स में सैंडविचेस में स्टफिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हॉट सॉस कुछ कच्चे प्याज और थोड़ा सा अगर आप इसमें पिकल डालेंगे डिफरेंट टेस्ट आएगा यू विल रियलाइज दैट ये बहुत बहुत डिफरेंट तरीके से इसको हम अप्रोच कर सकते हैं तो आलू को आपने जैसे सपोज करो बॉयल करे हुए आलू हैं आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें या सब्ज़ी पड़ी है उसको मैश कर लीजिएगा छोटा छोटा आप उसमें प्याज और नमक आप उसमें ऐड कर दीजिएगा कढ़ाई में तेल गरम कीजिए और उसके बाद जब वो गर्म हो जाए उसमें ज़ीरा डालिए और फिर आप उसमें लहसुन ऐड कर दीजिएगा और फिर लहसुन को मेक श्योर जले नहीं बहुत ज़्यादा उसे कंटिन्यूसली आपको हिलाते रहना है अब आप इसमें हरी मिर्च डालें लहसुन जब ब्राउन होने लग जाता है तो आप पूरा जो आलू का मिक्सचर है जिसमें प्याज और सब कुछ डाला वो आप ऐड कर दीजिएगा दैट्स अबाउट इट थोड़ी क्रश करके आपने काली मिर्च उसके ऊपर से आपने ऐड कर दी हरी धनिया के साथ उसको आप गार्निश कर सकते हैं और साइड पे इसको रख सकते हैं देखिए क्या कमाल की चीज बनकर सामने आती है
19: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI
3: इससे पहले कि मैं दिल से दिल तक का इस गाने की तरफ जाऊं बता देती हूं कृष्ण जन्माष्टमी जो है ये आने वाली है और 29th अगस्त से बहुत जगह पे इसका सेलिब्रेशन हो रहा है द केव कैवेंडिश ड्राइव 7:30 बजे से रामकृष्ण मंदिर मैनकाओ में 7:30 बजे से इसका आयोजन किया जा रहा है ऑनस्लॉ एवेन्यू में इसके साथ साथ ये कृष्ण जन्माष्टमी का NZ संगम जो है आपको इनवाइट कर रहे हैं 16 Lambie Drive मैनकाओ में भी ये 28 अगस्त से होने वाला है और इसके साथ श्री राम मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे ये जो है 4 सितंबर तक श्री आचार्य डॉक्टर श्री कैलाश आचार्य जी ये भी करने वाले हैं तो डेफिनेटली कृष्ण जन्म तक इसके आनंद को आप उठा सकते हैं आपकी कम्युनिटी में भी कुछ खास हो रहा है तो आप हमें bus@hamfm.com पे ईमेल कर सकते हैं

0: यू बाई 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: एक बात तो है कि अभी साउथ आइलैंड में कुछ एक डंप आने वाला है ऑन द वेस्ट कोस्ट, जहाँ पे हैवी स्नो इज थ्रेटेंड टुवर्ड्स कैंटरबरी एंड ओटागो, तो बी वेरी केयरफुल। ठंड जो हमें लग रही थी पहले की चली गई है, लुक्स लाइक वापस लौट कर आ रही है। ऑलराइट, दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। एक और बात जो खास नज़र आई है, टारानाकी के एक सुपरमार्केट ने बैन किया है स्ट्रैटफोर्ड हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को इन यूनिफॉर्म फ्रॉम एंटरिंग, जब तक वो अपने पेरेंट के साथ नहीं आते या केयर गिवर या टीचर के साथ, बिकॉज दे फेल्ट दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन थेफ्ट। और प्रॉबेबली ये मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं शायद इस तरह से करते हैं, एंड दे हैव एक्चुअली पुट दिस स्टेटमेंट फॉर द कम्युनिटी। सीरियस हो जाती है ना कभी कभी इस तरह की बातें, बट ठीक है भाई, ध्यान रखो, गला साफ रखो, थोड़ा थोड़ा कोसा कोसा पानी पियो, विटामिन सी का सेवन ज़रूर करो, एंड कोशिश करो कवर योरसेल्फ स्टिल, क्योंकि गर्मी है, ऐसा नहीं कि गर्मी नहीं है। मौसम हमें पता है कि आज का 10 डिग्रीज तक जा रहा है, इस समय 15 डिग्रीज है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि चलो ठीक है भाई हम थोड़े से ईजी हो जाए, बट आई थिंक ये मौसम चेंज जब होता है तब कुछ इसी तरह होने लग जाता है, हवाएं भी बढ़ रही हैं और मौसम भी थोड़ा ख़राब है। सो डू लुक आफ्टर योरसेल्फ्स, दिस इज़ काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी हम स्टूडियोज़, तो कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है मंगलवार, मेरी मुलाकात आपसे होगी वो दिन कहलाएगा बुधवार, या हम पवार आ रहे हैं झूमते हुए आपके साथ निभाने के लिए, नाना ददन केतन इनका साथ आप ज़रूर दीजिएगा। सो दिस इज़ काशिका साइनिंग ऑफ, take care, bye and stay safe.

0: Oval and Omura Jaiku.
1: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
1: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
0: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
3: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
4: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
4: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
3: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
6: Score more SMIG with SMIG bonus stickers at New World North Island. Get Nature's Fresh Muffin Splits 6-pack, $3.99 each. Or Cadbury and More Chocolate Blocks, $6.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
7: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, e-waste हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे. तमाकी तुरुकी, All Together Oakland.
8: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
9: When India comes to town, Aotearoa feels different. Join the Cricket Nation pre-sale at nzc.nz and secure your tickets first, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
10: Time check.
11: Time ho chuka hai din ke theek 12.
10: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
12: Good afternoon, I'm Glenn Stewart with the latest at midday. The government's moving to cap council rates increases at 4%. Rebecca Hunt has more.
13: The legislation announced this morning will also set a minimum increase of 2% to encourage council investment. Its target range will be reviewed every 6 years and updated when necessary. While water services are excluded entirely, two exemption types have been created for extraordinary circumstances. They'll be assessed by an independent regulator.
12: Humanitarians warn their fuel crisis predictions have come to fruition. 5 months ago, Child Fund New Zealand declared that the Pacific would be worst hit. Now, CEO Josie Bagani says food and water reserves are running low.
14: In Solomon Islands, a lot of the flights from Honiara to the Outer Islands have either been cancelled or massively delayed, and often they bring supplies.
12: And Wellington's Candala Pool will not be opening this summer. The council wants to do more preparation before the 101-year-old facility is refurbished in February next year. It says the pool also sustained some recent storm-related damage, so short-term repairs would be poor value for money. In sport, Rugby First and Ardie Sevier has apparently been offered an open cheque to join the NRL's latest franchise, the PNG Chiefs. Media outlets across the ditch are reporting the All Blacks skipper could play at next year's Rugby World Cup before moving to Port Moresby in 2028 to play league. NRL legend Billy Slater says the new franchise has ambitions.
15: That's $1 million tax-free and pretty much double. They want to see what their options are in November 1, so they hold all the cards Papua New Guinea with this tax-free money.
12: Rugby League with Machinery House in a league of their own. And in football, one game in the English Premier League this morning, Chelsea beating Fulham 3-2.
9: Sports News.
10: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
11: वेदर के हाल चाल, 17 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है और 11 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है. ओवरऑल दिन बहुत ही खूबसूरत है, आज भी 0% चांस है बारिश के, लेकिन ये सनसेट जो है आज होगा कल से 1 मिनट ऊपर 5:56 PM पे.